मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायवाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। आज मंगलवार है, शक्सुमत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर

0: बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुने ये देशभक्ति वंदना।

समूह स्वर में ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। वंदना में लीजिए अब सुनिए जगदीश सिंह ठाकुर के स्वर में ये भजन। रचना संत कबीर की है।

चंद्रु आत्मा और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी अख्तर इंदौरी की भक्ति रचना। आइए अब सुने हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में ये भजन।

0: एम एस सुब्बुलक्ष्मी के गाए नरसी भगत के इस भजन के साथ ही हमारी आज की वंदना अब संपन्न हुई। ये आकाशवाणी रायपुर है। आइए अब सुनें चिंतन। आलेख श्रीमती शांता शुक्ला का है।
1: समग्र विश्व सेवा का स्वरूप यही है कि धरती माता के जीवन और उसके अस्तित्व की रक्षा हर स्थिति में की जाए। मानव सभ्यता के विकास में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पेड़ों के अस्तित्व पर ही मानव जीवन और अन्य प्राणियों का जीवन आधारित है। पेड़ एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है जिसका यदि विनाश होता है तो मनुष्य और प्राणी जीवन की सुखद संभावनाओं की आशा नहीं की जा सकती। आंकड़ों के आईने में देखें तो जब से मानव सभ्यता का विकास क्रम आरंभ हुआ तब से लेकर अब तक वृक्षों की संख्या में लगभग 46% तक की कमी आई है। विश्व के सघन वनों में 24% पेड़ हैं। पृथ्वी पर उपस्थित 43% यानी लगभग 1.4 लाख करोड़ पेड़ उष्णकटिबंधीय वनों में हैं। इस संबंध में चिंताजनक पहलू यह है कि पेड़ों की घटती दर भी इन्हीं जंगलों में सबसे अधिक है। जिन वन क्षेत्रों में मानव आबादी बढ़ी है उन क्षेत्रों में पेड़ों का घनत्व भी तेजी से घटा है। वनों की कटाई, भूमि के उपयोग में बदलाव, वन प्रबंधन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण विश्व में प्रतिवर्ष लाखों पेड़ कम हो रहे हैं। अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, बड़े बड़े बांधों के निर्माण और मार्गों के निर्माण से जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं। ये चिंताजनक पहलू है कि पेड़ों को काटने के कुकृत्य में कोई कमी नहीं आई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अनुमान है कि आगामी 15 वर्षों में वृक्षों की अनेक बहुमूल्य प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इनकी विलुप्ति का प्रभाव धीमा और गहरा होता है क्योंकि प्रकृति में सहयोग और सहकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। एक पेड़ दूसरे पेड़ को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। निश्चित ही वृक्षों की विलुप्ति मानव और प्राणी जगत के जीवन के लिए अत्यंत घातक है। यदि हम पेड़ों का वरदानीय सहयोग देखें तो 50 वर्षों में एक वृक्ष लगभग 15.70 लाख रुपयों की लागत का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देता है। इतना ही नहीं, एक पेड़ लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की भूमि की नमी बनाए रखता है, 2.5 लाख रुपये मूल्य की ऑक्सीजन और 2 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रोटीन का संरक्षण करता है। वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण, जीव जंतुओं और कीट पतंगों के आश्रय स्थल को उपलब्ध कराने की अहम भूमिका का निर्वहन ये वृक्ष करते हैं। वृक्षों की इन्हीं मूल्यवान उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें देवतुल्य माना और इनके महत्व को पूजा और धर्म से जोड़कर इनके संरक्षण के अनूठे और दीर्घकालिक उपाय किए हैं। विकास के नाम पर मनुष्य के अहंकार और शुद्ध स्वार्थ ने प्रकृति और जनजीवन के गहरे आत्मीय संबंध को भी नकार दिया है। यही कारण है कि प्रकृति हमसे विक्षुब्ध हो गई सी प्रतीत होती है। वन संपदा के विनाश का घातक परिणाम वन पशुओं पर भी पड़ा है। कई वृक्षों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। चील और गिद्धों के दर्शन मानो दुर्लभ हो गए हैं। यदि प्रदूषण के दानव से इस भूमंडल को बचाना है तो प्रत्येक पृथ्वी निवासी मानवतावादियों का परम कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और वृक्षों को नष्ट होने से बचाएं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष लगाकर हम धरती माता का ऋण चुका दें। हमें अपनी धरती माता की रक्षा करके पर्यावरण प्रदूषण और वृक्षों के विनाश की घातक प्रक्रिया को रोकना होगा। यही प्रकृति और मानव की सबसे महती सेवा होगी।
0: चिंतन अभी आप सुन रहे थे। आलेख श्रीमती शांता शुक्ला का था। ये आकाशवाणी रायपुर है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये है आकाशवाणी रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। एपिसोड

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में कलाकार थे महेंद्र कपूर और मिताली सिंह। आकाशवाणी के संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। कृषि चर्चा में आज स्थानीय स्तर पर विकसित धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उनके गुणधर्म, इस विषय पर जानकारी दी है परमेश्वर साहू ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा विकसित धान की अधिक उपज देने वाली किस्में तथा छत्तीसगढ़ में प्रचलित अन्य धान की जो किस्में हैं उनके विकल्प क्या क्या हैं, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो है सन 1987 से इस राज्य के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और अभी तक लगभग धान की 50 से अधिक अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित कर चुकी हैं। तो उनमें से मैं कुछ प्रमुख किस्में जो कि अभी किसानों को लगाना चाहिए उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला किस्म है ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट। ये अभी 2 साल पहले ही विकसित की गई है। ये किस्म जो है छत्तीसगढ़ में जो किसानों के द्वारा लगाई जाने वाली किस्म स्वर्णा को किसान बहुत अधिक क्षेत्रफल में लगाते हैं, तो उस किस्म को विकल्प के तौर पे ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट को लगाया जा सकता है। जो ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट धान की किस्म है, इसकी अवधि 135 से 140 दिन की होती है। इनकी सामान्य जो उपज क्षमता होती है वो 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसमें दाना जो है मध्यम मोटा होता है, ये मध्यम अवधि की किस्म है और इसकी उपज क्षमता बहुत ही अच्छी है। किसान भाई इसको अपने खेतों में लगा करके बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कीड़े मकोड़े बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं या नहीं के बराबर लगती हैं। दूसरी किस्म है इसी प्रकार से विक्रम TCR। ये भी जो पहले हम छत्तीसगढ़ में चलती थी एक सफरी सत्रह जो ऊंची किस्म थी और लंबी अवधि की थी, उसी को ही पुनरुत्थान करके उसी में सुधार कार्य करके उनको बौना बना दिया गया है और उनकी अवधि थोड़ी कम कर दी गई है। तो विक्रम TCR सफरी 17 से ही बनी है। इसकी जो दानों की गुणवत्ता है वो सफरी 17 के जैसे ही है और यह किस्म 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज क्षमता जो है 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह मध्यम शीघ्र अवधि की किस्म है। इसमें सबसे बड़ी बात है सूखा के लिए सहनशील होती है, जो कि सफरी 17 में भी थी और छत्तीसगढ़ में इसको किसान भाई जो है MTU 1010 इस वैरायटी के, इस किस्म के विकल्प के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के किसान भाई इसको बहुत अधिक क्षेत्रफल में लगाना शुरू कर दिए हैं, तो जो किसान भाई आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस किस्म को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त करके अपने खेतों में जरूर लगाएं। साथ ही साथ यह किस्म मुरमुरा के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होती है। तीसरी किस्म है छत्तीसगढ़ धान 1919, छत्तीसगढ़ धान 1919। यह किस्म 130 से 135 दिनों पक कर के तैयार होती है और 60 से 65 क्विंटल इसकी उपज क्षमता होती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है और मध्यम भूमि हेतु बहुत ही उपयुक्त किस्म है ये। इस किस्म को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो है MTU 1001 जो धान की किस्म है उसके विकल्प के तौर पर किसानों के मध्य प्रचार प्रसार कर रही है और किसान इस किस्म को लगा करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी किस्म है जो कि छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान है। यह भी 130 से 135 दिनों पक करके तैयार होती है। इसकी उपज क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी मध्यम पतला दाना होता है इनका और मध्यम भूमि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस किस्म को भी विश्वविद्यालय MTU 1001 जो धान की किस्म है इसके विकल्प के तौर पर प्रचार प्रसार कर रही है। इसी प्रकार से एक किस्म है छत्तीसगढ़ तेजस धान जो कि 125 से 130 दिन में पककर के तैयार होती है और 50 से 55 क्विंटल इसकी उपज क्षमता होती है। इसका दाना जो है मध्यम पतला होता है और इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो बीमारी है, नेक ब्लास्ट वो भी बीमारी है और सी थ्रॉट ये भी बीमारी है, तीनों बीमारियों के लिए इसमें मध्यम प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यह किस्म भी MTU 1010 जो कि धान की एक प्रमुख किस्म है इसके विकल्प के तौर पर इसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसानों के मध्य प्रचार प्रसार कर रही है। अगर सुगंधित किस्मों की बात करें तो एक किस्म है ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट। यह किस्म जो है पुराना जो विष्णुभोग वैरायटी थी उससे सुधार कार्य करके बनाया गया है। इस किस्म की अवधि कम कर दी गई है और इनकी ऊंचाई भी कम कर दी गई है। ये सुगंधित और पतला दाना इसमें पाया जाता है। धन्यवाद।
0: स्थानीय स्तर पर विकसित धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उनके गुणधर्म, इस विषय पर जानकारी अभी आप सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर परमेश्वर साहू। कार्यक्रम था कृषि चर्चा, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। इसमें क्रम हमर संस्कृति हमर साहित्यकार में सुनिएगा श्री कुबेर सिंह साहू ले गोटपात। मोर भुइयां के संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। पारिवारिक धारावाहिक अजीत सुनिए आप सुनेंगे सुबह 9:00। लेखक श्री अरुण दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री समीर शुक्ल। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुनील कुमार सोनी और उनके साथी। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुनिएगा सुबह 10:00। दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे असमिया भाषा में समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम। गीत के रचनाकार होंगे सतीश दास। सदाबहार नगमे सुनिएगा दोपहर 11:30 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर होगा कार्यक्रम आप मन के गीत घर आंगन। महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। इसमें आज के गोठ में बातचीत का विषय होगा पहला सुख निरोगी काया। साथ ही क्रम डॉक्टर के सुझाव में सुनिएगा गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप की समस्या कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर आकांक्षा साहूले रोशनी राठौर के गोठ बात और क्रम बहिनी मन की चिट्ठी के साथ ही होंगे गीत संगीत भी। शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी आज होगा छत्तीसगढ़ी में शाम 5:10 पर। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी युवा पीढ़ी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण पर। साथ ही सुनिएगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत भी। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा फसल ला तेज धूप ले बचाए के उपाय। 7:30 पर किसानवाणी में आप सुनेंगे फोन इन क्रम हेलो किसानवाणी। विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल। संचालन लक्ष्मीकांत दुबे का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा सुनिएगा रात 9:30 पर।

0: इसमें आप सुनेंगे दाऊ से पोया और साथियों के गाए हल्बी गीत और राम से मरकाम और साथियों के स्वर में कमार गीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देस। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर, 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर भी। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् 21 दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी 2-3 दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः

0: चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, रायपुर की सुरीली परिचय धुन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

श्रोताओं, संत कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, सीस देह ले जाए। यानी प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में भी नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्रेम पाना चाहते हैं तो सिर्फ आत्म बलिदान से ही उसे पाया जा सकता है। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम को पाना कैसे संभव होगा, क्योंकि प्रेम कोई खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं, एक गहन सघन भावना है। कविवर अज्ञेय जी भी प्रेम यज्ञ के रहस्य को समझकर उसमें अपने अहम की आहुति देने को प्रस्तुत हैं। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: श्रोताओं, बचत और निवेश बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आमजनों को सुरक्षित निवेश और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के सभी डाकघरों में 25 और 26 मई 2026 को, यानी आज तक, अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी नागरिक सुरक्षित और लाभकारी सरकारी योजनाओं में निवेश का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक निवेशक अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क करके या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भी अपना निवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघरों में नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता और सामान्य बचत खाता सहित विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी अल्प बचत योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में निवेश कर भविष्य में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। श्रोताओ, आज शुरू की गई छोटी बचत कल बड़ा सहारा साबित होगी, है ना?

श्रोताओं, इस गीत से पहले चर्चा हो रही थी बचत की। बचत सिर्फ धन की ही नहीं होती, बचत संसाधनों की भी होती है। जी हाँ श्रोताओं, आज के समय में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर काफी असर डाला है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर नागरिकों से ईंधन की बचत करने और संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। बढ़ती महंगाई, प्रदूषण और सीमित प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए पेट्रोल बचत आज की बहुत जरूरी जरूरत बन चुकी है। पेट्रोल बचाने के लिए जरूरी है कि हम वाहन का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों में करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना लाभदायक होता है। जहां संभव हो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जैसे बस, मेट्रो और ट्रेन का उपयोग करने से पेट्रोल की बचत तो होती ही है, ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा वाहन पूलिंग यानी एक ही वाहन में कई लोगों का एक साथ यात्रा करना भी ईंधन बचत का अच्छा उपाय है। वाहन चलाते समय तेज गति और बार बार ब्रेक लगाने से पेट्रोल अधिक खर्च होता है, इसलिए संतुलित गति बनाए रखें। समय समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने, अनावश्यक रूप से इंजन चालू रखने से बचकर और टायरों में सही हवा रखने से भी ईंधन की खपत कम होती है। पेट्रोल की बचत से धन की बचत होती है और पर्यावरण की सुरक्षा भी। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईंधन बचाने का संकल्प ले तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। आइए बचाएं ईंधन और चलें साथ मिलकर।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: ऑनलाइन जॉब या टास्क, यदि आप टेलीग्राम, इंस्टा जैसे सोशल साइट में एक्टिव हैं तो आपको ऑनलाइन जॉब या कोई ऑनलाइन टास्क ऑफर होता है, जिसमें आपको होटल की रिव्यू देनी होती है या उसकी रेटिंग लिखनी होती है। यदि आप इस प्रकार के ऑनलाइन जॉब की तलाश कर रहे हों और इस प्रकार का टास्क आपको दिया जाता है जिसके बदले शुरुआत में आपको छोटे पैसे भी दिए जाते हैं, फिर आपको बड़े टास्क दिए जाते हैं और उनके झांसे में जैसे ही आप आएंगे, आप बड़े अमाउंट आपको टास्क के जरिए विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। फिर आप जैसे उनको अपने बड़े अमाउंट की विड्रॉल के संबंध में जानकारी मांगेंगे, आपको प्रोसेसिंग फीस, टेक्निकल एरर के नाम से आपके साथ वो ठगी करने का प्रयास करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी ऑनलाइन जॉब या टास्क के संबंध में आप कोई रिक्वेस्ट आती है तो सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, रायपुर में हम आपको नवीनतम जानकारियों से अवगत कराने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसा ही कुछ प्रयास आज भी, और ये है एड्स के बारे में। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने HIV महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक औसत से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। HIV टेस्टिंग का दायरा बढ़ने से बड़ी संख्या में रोगियों की स्थिति का समय पर पता चल जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार HIV जागरूकता 85% तक पहुंच गई है। परीक्षण और उपचार नीति के तहत लाखों मरीजों को मुफ्त एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी ART मिल रही है। इसी वजह से भारत में नए HIV संक्रमणों में 32% और एड्स से संबंधित मौतों में 69% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। भारत सरकार का लक्ष्य सन 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पूरी तरह से समाप्त करना है। वैसे तो HIV यानी एड्स का कोई पक्का इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सबसे प्रभावी और नवीनतम उपचार है। ये थेरेपी वायरस को बढ़ने से रोकती है, जिससे मरीज एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा समर्थित लेनकापाविर एक क्रांतिकारी और लंबी अवधि तक असर करने वाली एंटी रेट्रोवायरल दवा है। इसके साल में केवल 2 इंजेक्शन लगवाने होते हैं, जो प्रतिदिन गोलियां खाने से राहत दिलाते हैं। भारत में जेनरिक दवाओं के उत्पादन के कारण जो दवाएं विदेशों में बहुत महंगी है, वे यहां बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। इन दवाओं से रक्त में मौजूद HIV वायरस की मात्रा यानी वायरल लोड को कम करके अदृश्य अनडिटेक्टेबल स्तर तक लाना होता है। इन स्तरों पर पहुंचने के बाद वायरस इतना कमजोर हो जाता है कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। चिकित्सा जगत में EBT 101 जैसी नई जीन एडिटिंग थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य सीधे HIV वायरस को नष्ट करना है। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नए संक्रमणों को रोकना, स्टिग्मा यानी कलंक को समाप्त करना और संक्रमित लोगों को बेहतर इलाज देना है। इसके तहत मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल दवाएं प्रदान की जाती हैं। गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चों में HIV संक्रमण रोकने के लिए विशेष जाँच की जाती है। HIV जांच या इलाज से संबंधित प्रत्येक जानकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा एड्स और HIV से जुड़ी निशुल्क परामर्श और सहायता के लिए 1097 राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इस जानकारी परक चर्चा के बाद अब बारी है इस गीत की।

श्रोताओं, आज के समय में बेहतर रोजगार और सफल कैरियर के लिए सिर्फ डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नवीन कौशल और सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन से जोड़ने के उद्देश्य से विगत दिनों हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवाओं को एक ही जगह पर नौकरी के अवसरों के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, करियर काउंसलिंग और स्वरोजगार संबंधी जानकारियां भी दी जाएंगी। खास बात यह है कि इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की नौकरियों को शामिल किया गया है। पोर्टल पर फिलहाल 500 से अधिक रिक्त पदों पर 21 अलग अलग ट्रेड्स की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसमें कई निजी कंपनियों और शासकीय संस्थानों की नौकरियां जोड़ी गई हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। ये पोर्टल सरल और पारदर्शी है, इसलिए 8वीं पास युवाओं से लेकर उच्च शिक्षित अभ्यर्थी तक अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। हम होंगे कामयाब 2.0 वेब पोर्टल उन कंपनियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा जो उपयुक्त कर्मचारियों की तलाश में हैं। इसके जरिए औद्योगिक संस्थान और कंपनियां सीधे योग्य उम्मीदवारों से संपर्क कर सकेंगी। फर्जी जॉब ऑफर और साइबर ठगी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस पोर्टल को शासकीय विभागों और विश्वसनीय संस्थानों से जोड़ा गया है। तो पंजीयन करें इस पोर्टल पर और पाएं अपना मनपसंद काम और कामगार भी। पर अभी तो नमस्कार रायपुर में सुने ये गीत।

इस गीत से पहले श्रोताओं चर्चा हो रही थी रोजगार पोर्टल हम होंगे कामयाब 2.0 के बारे में, और अब नमस्कार रायपुर में रोजगार संबंधी एक सूचना। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 14 मई से शुरू होकर 8 जून 2026 को शाम 5 बजे तक होंगे। परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। कुल 17 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन में हुई त्रुटियों को 9 जून से 11 जून 2026 के बीच सुधारा जा सकता है। इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी निश्चित की गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जानी है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट cgvyapam.com

0: www.ipsy.in का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें और जुट जाएं तैयारी में। पर फिलहाल नमस्कार रायपुर में वक्त हो चला है इस संदेश का।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
3: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
4: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।

श्रोताओं, भारत में आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए 112 एक महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर पूरे देश में पुलिस, अग्निशमन सेवा और एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। पहले अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन अब 112 पर कॉल करके इन सभी सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। 112 112 नंबर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक आधुनिक आपातकालीन सेवा है, जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और गृह मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जाता है। जब भी कोई 112 नंबर पर कॉल करता है तो उसकी लोकेशन के आधार पर नजदीकी आपात सेवा को सूचना भेज दी जाती है, ताकि जल्द से जल्द सहायता पहुंच सके। इस सेवा की एक और विशेषता है, इसके लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, जिसे 112 इंडिया ऐप कहा जाता है। इस ऐप में पैनिक बटन जैसी सुविधाएं हैं, जिनका उपयोग खतरे की स्थिति में तुरंत मदद पाने के लिए किया जा सकता है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य है किसी दुर्घटना, अपराध, आग या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में नागरिकों को जल्दी और प्रभावी सहायता पहुंचाई जा सके। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को इस नंबर की जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसका उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही होना चाहिए। श्रोता, हेल्पलाइन नंबर 112 भारत में आपातकालीन सहायता का एक भरोसेमंद और तेज माध्यम है, जो नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए 24 घंटे कार्यरत है। तो जागरूक बनिए, सचेत रहिए और आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 112 का इस्तेमाल कीजिए।

इस गीत के साथ ही नमस्कार रायपुर को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को ही समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

0: और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया। इसमें सुनिए हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। इस क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहूले कोटपात, संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू को तिले। श्रोता साथी हो, आज के हमर क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। ये क्रम में हमन ऐसे साहित्यकार मल्ला आमंत्रित करथन और उनकर विचार जाने के प्रयास करथन कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला बकराए में और हमर जो नई पीढ़ी है एमन तक बात पहुँचाए में कितना एमन योगदान दीन है, एकर बारे में चर्चा करबो। ऐसे ही एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी आज आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप ग्राम भोड़िया जिला राजनांदगांव के रहे वाला, आपको स्वागत करत हैं आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि ये क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, साहित्यिक योगदान के बारे में हमन जाने के प्रयास करबो आपसे। एकर पहली एक छोटा सा परिचय आपके माध्यम से हमन श्रोता मल्ला देना चाहत हन।
1: हमर जन्म राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूरिया ग्राम भोड़िया जोन अर्जुंदा मार्ग में है वहाँ हो इस। मोर पिताजी श्री अमरदास साहू, मोर माता श्रीमती ग्वालिन बाई साहू, मोर बड़े पिताजी श्री उपदास साहू और बड़ी माता जी श्रीमती राजकुमार बाई, वही मन मल्ला पालिन है। और शिक्षा के बाद जहाँ तक होते तो हमारे गांव में स्कूल लिरी से प्राइमरी स्कूल पढ़े बर हरदी गेन। अब वो समय माड़ी माड़ी चिखला होए, बरसात के दिन में पानी भरे रहा है सड़क में, ओला पार करके जान। मिडिल स्कूल पढ़े बर सिंघोला गेन तो खेत खार मतलब नहाक के जान, बरसात में हो चाहे ठंड में हो। तो इस तरीके से और 9वीं 10वीं 11वीं नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में पढ़े, कॉलेज के पढ़ाई दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में। और इस तरीके से विज्ञान विषय में हम स्नातक हुए। बाद में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में हम हिंदी में स्नातकोत्तर करें
0: जी।
1: और प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में भी हमार प्रवीण सूची में शायद 4th स्थान रहे।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक समय रही से एक चलन में रही से कि सेकेंड गुड सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन।
1: जी जी जी,
0: जब कोई गुड सेकंड भी आ जाए मतलब 50% ऊपर आ जाए तो लगे कि ये लड़का बहुत होशियार है।
1: बहुत बहुत
0: है। आप तो प्राविड़ सूची में आत रहा तो समय तो देखनी हो जाती रही सोई कि कुबेर सिंह जी कैसे हैं, दिखे में कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ गए हैं। तो घर परिवार के कैसा माहौल मिले आपने पढ़ाई लिखाई में?
1: नहीं, हमारे परिवार में पूरा पूरा हम लोग पढ़ाई की कोशिश करें। और ये बात रही सी कि विज्ञान विषय लेके बायोलॉजी लेके आप लोग डॉक्टर बनना है।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन पाए। एक बात तो बताना चाहूँ, मैं अपन साहित्य में मोर नाम खाली कुबेर भर लिखता हूँ, एक पीछे राज है। हमला बचपन में हमार नाम कुबेरी रही से, हमारे दाई दादा मन सब कुबेरे कहा है, संगीत समझिया मन भी उसने कहा है। और मोर 8वीं तक के अंक सूची में केवल कुबेर लिखा है। ये जो कुबेर सिंह साहू है, जब मैं 9वीं पढ़े हूँ तो हमारे जो क्लास टीचर रही से वो बोली कि ये अकेला नाम अच्छा नहीं लगता है जी, इसमें ये जोड़ देते हैं। वो सब हम कुछ नहीं कहें, जोड़ दो सर। इस तरीके से हम कुबेर सिंह साहू बन गए।
0: अच्छा, आप शिक्षा विभाग से जुड़ गया।
1: हाँ जी।
0: तो कैसे जुड़ा हो इस आपके शिक्षा विभाग से?
1: हमारे पिता जी मन के बंटवारा हो के बाद में स्थिति डावाडोल हो गए, वही हमारे पढ़ाई भी छूट गए। तो अब रोजगार के सख्त आवश्यकता रही से हमारे बिहाव भी कर दिन। यही समय रोजगार कार्यालय से शिक्षक भर्ती के लिए आ गए तो हमारे सिलेक्शन हो गए। चल दे,
0: आप बीएससी करा।
1: हाँ जी।
0: उकर बाद में आप हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर
1: जी,
0: है ना, एमए की डिग्री आप लोग मिली से। एकर कुछ राज है हिंदी से एमए करना है फिर ऐसे लेखन में आगे बढ़ना है, कैसे आपके यात्रा शुरू हुई साहित्य की?
1: सर, हम जब हाई स्कूल के पढ़ाई करें, हमारे समय में 11वीं मैट्रिक तक हुए, वो 10+2 नहीं रही से।
0: जी जी जी।
1: तो उस समय हमार जयशंकर प्रसाद ला पढ़न, मैथिली शरण गुप्त ला पढ़न,

0: और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार मन ल पढ़ल, तो हमार मन में ये बात आए कि शायद हम इसने कहीं लिख पाते हैं हो जाती, ऐसे मन में बात रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो जब बीएससी के बाद हमार पढ़ाई छूट गए तो अब स्कूल में गए, तो स्कूल में भी बहुत सारा किताब लाइब्रेरी में मिली, उनमें रशियन साहित्यकार मन के भी किताब रही, चाहे वो दोस्तोवेस्की को हो, चाहे वो टॉलस्टॉय को हो, और चेखव और ये जो मैगजीन गोर्की वगैरह किताब बहुत सारा हम ही पढ़े हैं। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक मन की किताब भी पढ़े हैं। तो हमारे मन में है कि हमारा साहित्य में ही इस स्नातकोत्तर कर लेना चाहिए।
1: अच्छा, एक प्रेरणा के काम करी सो लाइब्रेरी है आपला, है ना, वहाँ बहुत सारा किताब पढ़े पर मिली, फिर आप लेखन शुरू करा।
0: हाँ, लेखन तो खैर वो हम ग्यारहवीं पढ़ते रहें तभी थोड़ा बहुत लिखत रहे, लेकिन मुख्य धारा में हम 1992 के बाद ही आए।
1: अच्छा, जब
0: जी, थोड़ा जी। देर से हम स्नातकोत्तर करें, ट्राइबल में हो एक बात एक के कारण से हमला होती कि अवसर नहीं मिले, वो समय मोटर गाड़ी कम है ना, हमला तो मानपुर भी जाए पर मोटर नहीं मिले, वहाँ से साइकिल से हम लोग कभी 40 किलोमीटर चले पड़े, कभी 25 किलोमीटर पर, तब हम अपन पोस्टिंग वाले स्थान में जा पान।
1: जी,
0: तो ऐसा विषम स्थिति में पढ़ाई है तो सब हो रही से।
1: शुरुआत आप करा लिखे के तो का विषय में लिखत रहा?
0: कोई भी लेखक साहित्यकार होए, लेखन की शुरुआत जहाँ तक होए मोर समझ के अनुसार कविता से ही होते, भले वो कविता बाद में ओकर कचड़म चल दे तो ही ओकर प्रकाशन नहीं हो तो ही वो बात अलग है, लेकिन शुरू में वो कविता से ही शुरू होते, तो हमारो कविता से ही शुरू हुई। अब वो जो उन कविता हम वो समय लिखे रहे वो अब नहीं है।
1: तो समय जैसे आप कविता लिखा तो आप कहीं ऐसा कोशिश कर रखिये जो मैं कविता लिखे हूँ कोई पढ़ के सुनाओ, या कोई ऐसे गुरुजी या कोई ऐसा साहित्यकार जिला मैं कविता सुनाओ तो वो सुने और कुछ अपन विचार दे, ऐसा कुछ है?
0: नहीं, जब वो कविता जब लिखत रहे तो उस समय पढ़ाई तो छूट गई से।
1: हाँ।
0: लेकिन नौकरी मांग रहे तो हमारे साथी शिक्षक मन रहा है वो मतलब सुना ना। हाँ, तो
1: चर्चा हो कविता के बारे
0: में।
1: शुरुआत हिंदी भाषा में करा कि छत्तीसगढ़ी में?
0: सर, हमार पहली कविता संग्रह है भूख मापी यंत्र, तो छत्तीसगढ़ी के मोर 6-7 किताब आ चुके हैं अभी तक। तो छत्तीसगढ़ी में गद्य में लिखता हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में मैं 3 अनुवाद भी करे हूँ। पहला जो अनुवाद की किताब है मोर 2.5 अक्षर प्रेम के, वो दुनिया के प्रसिद्ध साहित्यकार मन के कहानी मन के जो उन कोर्स में भी है।
1: हाँ।
0: जैसे ऑस्कर वाइल्ड है, वो 2 कहानी बुलबुल और गुलाब और द मॉडल मिलियनेयर, फिर ओ हेनरी के है द लास्ट लीप और द गिफ्ट ऑफ मिजाई, खुशवंत सिंह के है, और ऐसे बड़े बड़े लेखक बन के एक किताब है। दूसरा अंतोन चेखव जो रूस के महान साहित्यकार है, ओकर लगभग 16-17 कहानी मन के अनुवाद है, और एक मैगजीन गोर्की के कहानी मन के अनुवाद है। ये 3 अनुवाद के वो पूरा छत्तीसगढ़ी में है। लेकिन वो अनुवाद की विशेषता ये है कि अगर पात्र मन के और स्थान के नाम रूसी भाषा में नहीं होती थी ना, तो आप लोग नहीं लगती इसके रूसी कहानी है, वो छत्तीसगढ़ी कहानी ही है, ऐसे लगती थी, ये ओकर विशेषता है।
1: जी, तो ये आपके मन में कैसे विचार है इसके, जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं, विदेशी साहित्यकार हैं, या हमारे देश के जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं, ये मन के रचना ला छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है, कैसे मन में इस और का उद्देश्य रही से कर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे के?
0: सर, उद्देश्य भी बताऊं, लेकिन मन में कैसे है इसे पहली बता दूं।
1: जी,
0: हम हिंदी के लेक्चरर रहे हायर सेकेंडरी कन्हारपुरी में, तो वहाँ एक अंग्रेजी के लेक्चरर रही से मैडम रही से ओकर संग ऐसे ने चर्चा हुई, तो हम बोले भैया वो गिफ्ट ऑफ मिजाई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जी, और इतना भावपूर्ण है कि वो कुछ कहे नहीं जा सके, एक बार बोल के फिर से बोलो द गिफ्ट ऑफ द मिजाई, ये मिजाई क्या होता है? मिजाई मिजाई होता है भैया, मिजाई के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप अंग्रेजी के लेक्चरर हो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, मिजाई शब्द नहीं होता, वो मैजिक होगा, मैं बोला मैजिक नहीं है मिजाई है, फिर वो कोर्स में तो रही से बोला बुला के देखाऊँ, मैं बोलूँ कि ये मन मूला अंग्रेजी में अतिक हीन काबर समझते है भाई, अंग्रेजी थोड़ा बहुत मूला थे, तो मैं कह अब एक मन के मैं छत्तीसगढ़ी में ही अनुवाद करूँ, ओकर से 2 फायदा हो ही।

0: तो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा समृद्ध हुई। दूसरा, दुनिया के महान साहित्यकार मन के महान रचना हम छत्तीसगढ़ी में पढ़ पोन तो कर प्रभाव अलग पड़ी। ये उद्देश्य लेके मैं है ना ये काम कर रहे हो। भाई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अंतोन चेखव जो मुंशी प्रेमचंद भी मानते, वो सबसे बड़े साहित्यकार मानते हैं।
1: जी जी।
0: और गोर्की अपन जगह में ही है। और ओ हेनरी वो ऐसे अद्भुत कहानीकार है ना मन।
1: जी जी जी जी।
0: तो एकर मन के सब रचना मन का अनुवाद करें।
1: आप उद्देश्य बताया, बहुत अच्छा उद्देश्य है ये। और हमारे जो नई पीढ़ी के जो युवा साथी हैं, एमल्ला अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषा में पढ़ी तो उनके और ज़्यादा एक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ी और आप अपन उद्देश्य में और सफल हो पाई। बहुत अच्छा प्रयास है आपके।
0: एक सर अनुवाद करे से एक भाषा के सामर्थ्य भी सिद्ध होते।
1: जी जी जी जी।
0: हाँ, कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में एक सामर्थ्य है कि हम दूसरा भाषा के भी अनुवाद कर सकते हैं। सामर्थ्य भी साबित होते।
1: जी जी। कुछ ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह भी है आपके।
0: जी।
1: थोड़ी सी चर्चा कर बारे में भी कर लेते हैं, जैसे कि भोलापुर के कहानी, इनमें कुछ कहानी आपके शामिल है ना। तो ऐसे कुछ कहानी है, कुछ चर्चा करना चाहा था आप मन। जैसे मैं एक देखा था कि डेरहा बाबा
0: जी,
1: एक कहानी है आपके। अब है तो थोड़ी लंबी कहानी,
0: छोटी
1: कहानी है, तो थोड़ा सा कर सारांश आप सुना सका था का?
0: ये जो किताब आपके हाथ में है भोलापुर के कहानी,
1: हाँ,
0: तो एकर भूमिका में डॉक्टर जीवन यदु राही है। ये किताब ल उपन्यास के स्वाद वाला कहानी संग्रह बोले है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कहानी मन आपस में सब जुड़े हुए है। पात्र मन के नाम वही है।
1: अच्छा।
0: स्थान के नाम वही है। लेकिन कहानी के रूप में है।
1: जी जी जी।
0: वो सब ल जोड़ दू आप तो ऐसे लगी जैसे उपन्यास पढ़ा था। तो ये डेरहा बाबा जो है,
1: हाँ,
0: प्रारंभिक पहली कहानी है रे।
1: हाँ।
0: तो एकर दो उद्देश्य है, एक तो गांव गोढ़ा में जो हम रहतन तो कहानी भी सुनाया के काम तो डोकरा मन करते, डोकरा दाई, डोकरा बाबा,
1: या हाँ, डोकरा बाबा, डोकरी दाई, हाँ, ये मन।
0: तो हम सोचे ने एकरे से शुरू करे जाए।
1: हाँ, हाँ,
0: और शायद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने ज्यादा समय भी नहीं हो रही से,
1: 25 साल होगी सब तो। हाँ, आज की तारीख में,
0: आज के तारीख में बहुत दिन हो गए।
1: हाँ, हाँ,
0: ये किताब जब छपी तो 8-10 साल हो रही से।
1: हाँ, हाँ,
0: वो कहानी लिखे तो 2-3 साल हो रही से ही। तो एक ग्रामीण सियान है या गांव के रहने वाला व्यक्ति है, वो नवा राज्य बने के पीछे ओकर का अवधारणा, ओकर इच्छा या ओकर आकांक्षा का रही से, और वो कैसे ढंग के वो अपन दृष्टि से देखते, वो में कहानी में दर्शाए गए हैं। डोकरा बाबा कहते कि कल पर हम हर 20वीं सदी में रहन, आज 21वीं सदी में आ गए।
1: जी जी जी।
0: अब एक रात में का बदल के, कुछ नहीं बदली।
1: हाँ।
0: कुछ नहीं बदले है, ये सदी बदले से का हो जाते। अच्छा। बस यही होकर कथा न करे।
1: जी जी जी। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है कि है ये कहानी, लेकिन जब पूरा कहानी मिला दे वो तो एक उपन्यास के रूप
0: बिल्कुल,
1: में
0: बिल्कुल
1: है ना, एक तारतम्य है। हाँ, वो में।
0: और अभी जो मोर उपन्यास आने वाला है सर, अपूर कंथा नाम के।
1: हाँ।
0: वो एक जस्ट विपरीत है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बोला पढ़ू आप तो उपन्यास के नाम से पढ़ू, लेकिन उपन्यास में आप लोग कहानी भी बहुत सारा मिली। तो इसे लगी कि कहानी के स्वाद वाला उपन्यास है।
1: थोड़ा सा विषयांतर करत है ना, आप छत्तीसगढ़ी में कुछ कविता भी लिखे, हालांकि कम लिखे है, लेकिन कुछ कविता आप लिखे।
0: हाँ,
1: हवा
0: जी, जी,
1: और बातचीत से पता चले कि वो जो आप गीत लिखे है वो मतलब स्वरबद्ध भी कलाकार मन करे हैं।
0: हाँ,
1: है ना, तो कुछ ऐसा गीत आप ला सुरता आत है।
0: अब एक वो सर भोलापुर के कहानी में,
1: हाँ,
0: बारामासी आल्हा दे है।
1: हाँ,
0: वो यही किताब के अंश है। वो हर छत्तीसगढ़ी कथा कंथली में मोर एक ठनु कहानी से।
1: हाँ,
0: वो लोक कथा के संग्रह है रे। वो मैं 16 ठन लोक कथा के संग्रह है, अब वो भी थोड़ा अलग शैली में है। तो अंत में वो कर बारामासी आल्हा है। वो आल्हा ला हमार लोक कलाकार श्री राकेश तिवारी हर गाय है। वो बहुत अभी वायरल भी हुई सोहा, छत्तीसगढ़िया होटल करके कविता है। वो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं बने रही से।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य तो 1998 के आसपास लिखे रहे हूँ।
1: और आप अंदाज लग गए इसकी जल्दी राज्य बने वाला।
0: हाँ, हाँ, हाँ। तो छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद में

0: हमर राज के जो स्वरूप है वो कहाँ होना चाहिए, है ना। हमर राज एक तो ऐसे भी सब दुनिया भर के आदमी यहाँ आके समाविष्ट हो जाते और छत्तीसगढ़िया पर में वो रंग भी जाते, एक दूसरे के भाषा संस्कृति का आदान प्रदान होते
1: जी जी जी,
0: तो वो हमार जो मूल भाव है वो जारी रहे और हम अपन तरफ से जो बाहर से यही वो मन लगा दे सकते हैं। ये भाव लेके वो कविता है, आप कहो तो सुना।
1: हाँ, सुना दे, सुना दे।
0: छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है, चाह के बदला ग्राहक मल्ला पसिया पेज पिलाना है, सेव के बदला ठेठरी खुरमी, इडली के बदला मुठिया फरा, डोसा के बदला चीला रोटी और तंदूरी के बदला ग्राहक मल्ला अंग आकर रोटी खवाना है।
1: क्या बात, क्या बात है।
0: मंझनिया तात पेज संग में अमारी भाजी, रात में दार भात संग में इढ़र कढ़ी, बिहनिया नाश्ता में आमा के अथान संग, दही बरा के बदला दही बासी खवाना है। छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है
1: जी जी।
0: और आखिर में है, कुर्सी के बदला मचोली, टेबल के बदला पीढ़ा, प्लेट के बदला बटकी, कप के बदला कटोरी, बेरा मल्ला बस्तर ले लाके बस्तरिया पगड़ी पहनाना है। छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है
1: जी जी जी।
0: ना कोई कपाट मेड़ी, ना कोई छेका रोका, छकत ले खाओ संगी और छकत ले खवाओ, जनता के होटल जनता के द्वारा जनता बर, होटल के आगू इसने साइन बोर्ड लगाना है, छत्तीसगढ़ राज में छत्तीसगढ़िया होटल।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता आपके। एक आध और कविता है आपके?
0: आप छत्तीसगढ़ी में एक ठन है।
1: हाँ,
0: ये
1: आप इतना बढ़िया कविता सुनाया कि एक और सुनने के मन करत है।
0: अच्छा
1: जी, ओकरे वो मैं आपसे फरमाइश कर
0: दे। एक माया गीत है
1: जी जी, ये भी जरूरी है जीवन में माया के भी
0: के बीज के, जब माया होते
1: जी
0: तो ओकर मन के बीच में का संवाद होते।
1: हाँ,
0: ये गीत ला आपके आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग भी हो चुके है, महादेव हिरवानी और खापरडे मैडम है वो गाय है।
1: अच्छा,
0: आत्माराम कोसा एकर संगीत दे है। हाँ, वो मन कुछ में फिर बदल भी करे है, लेकिन जो मैं मूल रूप से लिखे हैं वो मैं सुनाता हूँ।

तेना मयाम जग उजरावै मयाम जग दुलरावै बिन मया मया रुक जल बिन जैसे मछरी हो तेना मया के गोट बड़ लम्हरी हो तेना मया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाते मया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाते।

0: आखरी होते ना, ऐसे है सर, एक एक बार दाऊ है वाला
1: जी, बहुत
0: रात।
1: बहुत बढ़िया गीत आप सुनाया। बात ला आगे बढ़ात हन कुबेर जी, और आप छत्तीसगढ़ बने के बाद में
0: जी
1: जो हमारा पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ी भाषा के भी अब शुरुआत हो गए है, और बच्चा मतलब सिखाए के भी प्रयास चलत है, तो ये पाठ्यक्रम जो तैयार करे में आपके भी कुछ योगदान हावे?
0: नहीं, हम रिटायर हो पहले, अब वो सरकारी काम में तो अब सरकारी सेवक रहे तब हमारा योगदान हो
1: जी
0: सकते हैं।
1: जी जी
0: तो खैरागढ़ पीटीआई में कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी विषय के किताब मन से 5 पाठ हिंदी के हटाना रहिस है, और वो में छत्तीसगढ़ी के 5 पाठ जोड़ना रहिस है। वो में हम शामिल रहें समिति में, और डॉक्टर जीवन यदु, डॉक्टर पीसी लाल यादव और मैं, ये तीनों मिल के बहुत प्रयास करके 5 पाठ जोड़े रहें। बाद में हम SCERT से भी जुड़े हैं, रायपुर से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान
1: जी
0: एवं प्रशिक्षण परिषद से, और वहाँ भी हिंदी विषय के मास्टर ट्रेनर।

0: के रूप में काम करें, तो जब नौवीं के पाठ्यक्रम बदली हायर सेकेंडरी स्कूल के, पहली नौवीं के बदली, फिर दसवीं के, फिर ग्यारहवीं बारहवीं के, तो ग्यारहवीं बारहवीं और दसवीं में तो सीधा सीधा वो केंद्र लेवल के है, वो एडॉप्ट कर लें। बाकी नवी के पाठ्यक्रम जब बनाए तो विषय समिति में रहे हो, लेकिन वो विषय समिति में ज्यादा दिन तक के नहीं रहे हो। अब सर ये काम जो है एक बैठक में भी नहीं हो,
1: हाँ।
0: तीन तीन चार चार दिन के, पांच पांच दिन के बैठक होते और दसों बैठक करे के बाद में ये सब काम होते। तो इस तरीके से ये जिसे कि आजकल चला थे कि पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लाया जाए, तो मोरो मानना है कि प्राथमिक स्तर में कम से कम तीसरी चौथी पांचवी तक के बच्चे मतलब मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा एक बात हुई सर, हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया जाए अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में शामिल करे जाए, बहुत हो अल्लाह करत हैं, लेकिन हमर जो कमी है वो हम नहीं देखत हैं भाई। हम अधिक साहित्य लिखत हैं, कविता कहानी उपन्यास सब लिखत हैं, लेकिन हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम मन है एक ओठन विषय है छत्तीसगढ़ी में का विज्ञान के विषय हो, इतिहास के विषय हो, अर्थशास्त्र के विषय, कोनो भी विषय हमारे एक ओठन है हम लिखे पाएं छत्तीसगढ़ी में, ओकर बिना नहीं हो सके ना।
1: ये सब बहुत सारी बात है जेकर ऊपर अभी काम करना है, तभी जाके मोह लगते कि छत्तीसगढ़ ही जो भाषा है वो ज़्यादा समृद्ध हो पाएगी।
0: जी जी
1: कुबेर जी, आप तो काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हैं साहित्य लेखन से, जो मैं आपके दोनों भाषा पे समान अधिकार के साथ आप लिखा था, चाहे हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है, आप कहानी भी लिखे हैं, कविता आप ज़्यादातर हिंदी में लिखे हैं, और बाकी तो योगदान आपके है ही। इतना सारा समय आप निकाले शिक्षा जगत के साथ साथ साहित्य जगत में भी, इतना सारा कुछ करे के बाद में लगते कि कुछ सम्मान भी आप कई जगह मिली सो ही आप, तो उकर बारे में बतावा।
0: तो सर 2012 में अपन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, डॉक्टर रमन सिंह जी है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के सब शुरू हो चुके रही से, तो हमारे नांदगांव जिला में एक आदेश दिन हुई कि नांदगांव जिला में जो साहित्यकार है और कलाकार है, तीन आदमी के चयन करो और वोला शिक्षक दिवस के दिन हम सम्मानित करबोन। तो ओकर लिए प्रविष्टि मंगाएगी और विद्वान मन चयन समिति में बैठे, डॉक्टर गोरेलाल भी रिसो में, डॉक्टर जीवन यदु भी रिस है, ऐसे मन है, और तीन व्यक्ति के नाम में, तीन महान पुरुष के नाम में, एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम में, एक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम में, तो मूला गजानन माधव मुक्ति बहुत सम्मान से सम्मानित करेगी से। ये 2012 की बात है और डॉक्टर रमन सिंह है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में ये शिक्षक दिवस के दिन
1: जी।
0: उकर पहली साहित्य समिति वाले मन तो करते रहते हैं, अभी 25 के शायद 25 या 24 के बात है, यह रायपुर में एशियन न्यूज वाले हैं, वो मन है अनुवाद के क्षेत्र में काम करे पर मुला अनुवाद के लिए वो मन पुरस्कृत कर रही है, और छत्तीसगढ़ राजभाषा वाले भी दिसंबर 25 में मुला सम्मानित करी है साहित्य के क्षेत्र में, और कोई बड़े पुरस्कार नहीं मिले बस यही।
1: जी ये है कि जो काम आप समर्पित होके छत्तीसगढ़ ही भाषा और छत्तीसगढ़ की सेवा आप करा था, आप लोग कुछ सम्मान भी मिली, कुछ आप अपन आत्मसंतुष्टि के लिए भी आप रचना करा था, कुछ गीत आप लिखे जिला कलाकार मन स्वरबद्ध भी करीन है ना
0: जी।
1: अब जो आए वाला समय खातिर आप का सोचे और का करना है, आपला सम्मान पाना पुरस्कार नहीं, पाना नहीं, वो अलग चीज है,
0: अलग
1: लेकिन चीज़ आप अपन इच्छा से और का कुछ लेखन
0: तो
1: करना चाहते
0: सर, वो जो लिखा था तो लिखे कर बोन, अब छत्तीसगढ़ी में ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं लिखे पढ़े के, अबर की हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा ला समृद्ध करना है ये हम मान के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप ला, मोर शैली जो है व्यंगात्मक है, ये कहानी मन ला कविता मन ला पढ़ू ना तो व्यंगात्मक शैली ही मिली, व्यंग के मोर दो किताब आ चुके है हिंदी में, वो भी चर्चित, वो मन चर्चित हो चुके हैं, एक तो माइक्रो कविता और दसवा रस, और दूसरा व्यंग संग्रह है कुत्तों के भूत, ये दोनों व्यंग संग्रह है मोर, और ये जिसे ये भोलापुर की कहानी रखे हो ये ला पढ़ू तो मैं व्यंग के ही एहसास हो ही आप ला।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: एक तो व्यंग के क्षेत्र में हम काम करत रहोन, दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं एक बाल उपन्यास लिखना चाहता हूँ, छोटे से लेका मन के लिए, वो हर शिक्षण के भी काम करे, वो में गणित भी हो, वो में इतिहास भी हो, और वो में नैतिक शिक्षक बात भी हो, उपदेशात्मक, आजकल उपदेशात्मक चीज नहीं चल रही, तो मैं हर एक ध्यान रखूं कि वो उपदेशात्मक ना हो, बच्चा मन खेल खेल में सीख जाए
1: जी, जी।
0: ऐसे एक बाल उपन्यास लिखे के मोर योजना है, और तो लिखते रहो
1: जी जी। आप तो इतना लंबा समय बिताया है साहित्य के क्षेत्र में, आपसे कहना चाहिए कि नई पीढ़ी के साहित्यकार मन भी जुड़त जात है मैं, तो ऐसे साहित्यकार मन खातिर आप मन के कुछ मार्गदर्शन, जैसे जगह जगह में गोष्ठी आयोजित होते थे हर जिला में हर मौके में, ऐसे आपके राजनांदगांव जिले में भी काफी सक्रिय है आपके साथी मन, तो जो नई पीढ़ी के साहित्यकार हो मतलब अभी मांझे के प्रयास करता आप मन।
0: हाँ, हमार संगवारी मन कुछ लिखते कहानी संग्रह या कविता संग्रह या कुछ भी लिखते तो मूर्ति जरूर लाते दिखाए बार तो मैं बोलता हूँ यार मैं कुछ मैं सुधार कर दूँ तो बने कि नहीं तो बोले हाँ एक बार तो लाए हैं सर ऐसे तो मैं हर मूर्ति मैं कंप्यूटर चलाए बार जानता हूँ, ये सब मैं कंप्यूटर में खुद ही टाइप करता हूँ
1: जी, जी जी
0: तो मैं हर उकर संपादन के काम भी कर देता हूँ। और हमारे साकेत साहित्य परिषद सुरगी में हम लगातार साल में स्मारिका निकालते हैं, तो स्मारिका में हमारे संगवारी मन के सब रचना मर रहे थे। मोर कहना यह है कि देखो जी हम छत्तीसगढ़िया आदमी और छत्तीसगढ़ी में लिंग के बड़ा प्रॉब्लम होते कि कते शब्द हम स्त्रीलिंग मानन कते शब्द पुल्लिंग मानन तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो यही में बड़ा गलती होते है, और दूसरा लिखा समय जो हमारे वर्तनी है वो बड़ा गलती होते है, तो हिंदी ले छोड़ो तुम छत्तीसगढ़ी में लिखो ना, हमारे मातृभाषा है बड़ा सहज रूप से लिखो, तो ये मोर प्रयास रहते तो संगवारी मन बात ल मानते भी।
1: बहुत अच्छा प्रयास है आपके कुबेर सिंह साहू जी, और हम तो ये उम्मीद करबो कि नई पीढ़ी ला आपका मार्गदर्शन मिलत रहे साहित्य सेवा के क्षेत्र में, और आप लंबा समय अपन बिता हुआ साहित्य में, आज आप स्टूडियो में आया और एक साहित्यिक यात्रा आपके बारे में चर्चा हुई सकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता ना आपला, आप स्वस्थ रहा और साहित्य सेवा में जुड़े रहा। श्रोता साथी हो, आज हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में हमन ग्राम भोड़िया पोस्ट ढोंढिया जिला राजनांदगांव के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी से चर्चा करत रहे, और ये चर्चा के साथ ही मोर भुइया कार्यक्रम से यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी में ये समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें क्रम हमर संस्कृति हमर साहित्यकार में आज आपने सुनी वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहूले कोटबाद। मोर भुइयां के संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। आलेख श्री अरुण दुबे का है और प्रस्तुति है श्री समीर शुक्ल की।

0: अजी सुनती हो? रंजना, रंजना,
1: अरे कहाँ चली गई? किचन में भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं। अरे ये आंगन के पीछे का दरवाजा क्यों खुला है? अरे रंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
2: अब कुछ काम होगा तभी तो यहाँ आई हूँ ना। सुबह सुबह बिना काम के यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए तो नहीं आ सकती?
1: अरे अरे भाई, नाराज मत हो रंजना। दरअसल आंगन के पीछे का दरवाजा तुम बहुत कम ही खोलती हो ना भाई, इसीलिए पूछ लिया, माफ कर देना।
2: ये दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए देखो यहाँ कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। इसे आज भी साफ नहीं करती तो न जाने कितनी गंदगी जमा हो जाती। अब देखते ही रह जाओगे या मेरा हाथ भी बटाओगे?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम्हारा साथ तो मुझे हर हाल में देना है, फिर चाहे वो किचन हो या कचरा।
2: हंसो मत। मुझे तो ये पीछे वाली सिन्हा जी लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अपने घर का सारा कचरा यहाँ फेंक रहे हैं और हम हैं कि साफ किए जा रहे हैं।
1: ठीक है रंजना, हम दोनों मिलकर ये कचरा अभी साफ किए देते हैं और सोसाइटी की अगली बैठक में सिन्हा जी से बात करके इस समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे।
2: नहीं नहीं, तुम्हें आज ही बात करनी पड़ेगी। सिन्हा जी को स्पष्ट बताना होगा कि उनकी पत्नी हमारे पिछवाड़े अपने घर का कचरा ना फेंके।
1: अरे रंजना भाई, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने से क्या होगा भाई, आपसी कटुता बढ़ेगी। हमें पड़ोस के लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए जिससे भाईचारा बना रहे और मन मुटाव और वैमनस्य का प्रदूषण न फैल सके।
2: ठीक है रंजन जी, ठीक है, आपने इस सफाई में मेरा साथ देकर मेरे गुस्से को तो शांत कर दिया, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल भी ढूंढना होगा, तभी बात बनेगी।
1: बिल्कुल सही कहा रंजना। खैर, कचरा तो साफ हो गया, अब इसे मैं नगर निगम के कचरा डिब्बे में डालूंगा।
2: अरे हाँ, तुम आज वॉक से लौटकर मुझे जोर जोर से आवाज क्यों दे रहे थे?
1: अरे मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताना भाई। दरअसल मैं आज वॉक पर जब गार्डन पहुंचा तो वहाँ अच्छा खासा मजमा लगा हुआ था।
2: कैसा मजमा? ठीक ठीक बताओ रंजन
1: भाई। आज गार्डन में बहुत लोग थे, बच्चे और महिलाएं भी।
2: अच्छा,
1: पर्यावरण संरक्षण पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, कुछ विशेषज्ञ भी आए थे।
2: क्या कार्यक्रम था? क्या भाषणबाजी हो रही थी कि ये करो ये ना करो?
1: हाँ हाँ, विशेषज्ञ बता रहे थे कि अपने वातावरण और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
2: बच्चे और महिलाओं का वहाँ क्या काम था रंजन जी?
1: भाई बच्चों के लिए एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन था और महिलाओं के लिए पर्यावरण संबंधी क्विज प्रतियोगिता थी। अरे तुम्हें भी चलना था भाई, बहुत मजा आता रंजना।
2: पता नहीं रंजन जी, मुझे तो ऐसे कार्यक्रमों की सफलता पर हमेशा शक रहता है।
1: वैसे तुम्हारा कहना गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से जागरूकता तो आती है। अब देखो ना, आज ही मैंने तुम्हारा साथ दिया कि नहीं, अब दोनों ने मिलकर कचरा साफ किया और पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में अपनी आहुति दी।
2: रहने दो, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक दो दिन का जोश मुझे नहीं चाहिए, ये जज्बा साल भर रहना चाहिए, तब तो कोई बात बने।
1: हाँ रंजना, बात तो उस कार्यक्रम में भी नहीं बनी।
2: क्यों, महिलाओं के बीच लड़ाई होगी क्या?
1: अरे नहीं भाई, कार्यक्रम में हुई बड़ी बड़ी बातें और उसके बाद सब फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो गए और चारों तरफ चाय नाश्ते की खाली डिस्पोजेबल प्लेट और गिलासों का कचरा फैला था, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था,
2: इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाती।
1: लेकिन श्रीमती जी, मैंने अपने कुछ साथियों के साथ जिसमें बच्चे भी थे
2: जी?
1: सारे मैदान की सफाई करनी शुरू की।
2: अच्छा,
1: ये देखकर कुछ और लोग आ गए हमारा साथ देने और देखते ही देखते सारा मैदान साफ हो गया।
2: अच्छा जी, तभी आप आज इतने खुश हैं और चाय भी नहीं मांग रहे हैं।

0: हो और रमेश ना आए, भैया ऐसा नहीं हो सकता।
1: सच है, चाय की बात से ही रमेश भाई को खुशबू आ जाती है।
0: भैया रमेश क्या हाल है?
2: नमस्कार रंजन, क्या बात है, बड़े चहक रहे हो, सब ठीक तो है ना?
0: हाँ यार, सब कुशल मंगल है। भाई अभी अभी रंजना और मैं तुम्हें याद कर रहे थे।
2: अच्छा, तब तो मुझे आना ही था, क्योंकि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर।
1: रमेश भाई नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: बैठिए बैठिए, मैं चाय बनाने जा रही थी इसलिए आपको याद किया।
2: क्या बात है भाभी, एक आप ही तो हैं जो इस गरीब को चाय पर याद करती हैं, वरना मेरा ये दोस्त तो मुझे कभी नहीं पूछता।
0: यार रमेश भाई ये तो ज्यादती है, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ चाहे दुख हो या सुख।
1: हाँ रमेश भाई, आज भी रंजन एक बड़ा काम करके आ रहे हैं इसीलिए आपकी याद आई।
2: बड़ा काम? क्या कर दिया यार?
0: यार आज मैं पर्यावरण मित्र का पुरस्कार जीत कर आ रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा, वो गार्डन में सुबह सुबह जो कार्यक्रम था कहीं उसी में तो नहीं?
1: हाँ उसी में, और रंजन ने साफ सफाई के महत्व का पाठ भी पढ़ लिया। घर आते ही पीछे पड़े कचरे की सफाई में मेरा हाथ भी बटाया।
0: समझे रमेश, साफ सफाई का सीधा संबंध हमारे वातावरण से होता है, और हम सोचते हैं कि एक मेरे से ही क्या होता है।
2: समझ गए भैया, लेकिन ये बात सबकी समझ में आना चाहिए तब कोई बात है।
1: इसके लिए क्या ऐसे कार्यक्रम हमारी सहायता करते हैं? मुझे तो शक है, क्योंकि लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और अपने अपने पुराने धर्रे पर लौट जाते हैं।
2: सच कहा भाभी, वास्तव में पर्यावरण का सीधा संबंध हम सबसे है, इसीलिए पर्यावरण के अच्छे या खराब होने का प्रभाव भी हम पर एक सा पड़ता है। इसीलिए जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, वैसे ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना आवश्यक है। क्यों रंजन?
0: भाई मुझे तो लगता है कि जिस तरह हम समूह में सामाजिक प्राणी की तरह रहते हैं, उसी तरह ये संदेश भी सामूहिक रूप में समाज तक पहुंचाना होगा, और इसके लिए सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन का अपना महत्व है।
1: लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, इसके लिए व्यक्तिगत चेतना का होना बहुत जरूरी है। मैं साफ रहूंगी, सफाई रखूंगी और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपने साथ लोगों को आने को कहूंगी, ये सोच भी रखनी होगी।
2: भाभी जी, अच्छे कामों की शुरुआत अपने घर से ही होती है, तभी तो हम आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं।
1: सच कहा रमेश भाई, इसी सोच के साथ मैं अगली सोसाइटी की मीटिंग में जाऊंगी
0: और वहां जाकर सबसे लड़ूंगी। यही ना, तुम तो रहने दो रंजना, मैं ही अकेला मीटिंग में जाऊंगा।
1: देखो रमेश भाई, एक पर्यावरण मित्र का इनाम क्या मिल गया है, ये अपने आप को पर्यावरण विद समझने लगे, इनकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती।
2: शांत हो जाइए भाभी, रंजन ये गलत बात है। अच्छा बताओ, पर्यावरण या हमारे वातावरण का सीधा संबंध किससे है?
0: व्यक्तिगत आरोग्य और साफ सफाई से।
2: ठीक, और वातावरण की शुद्धता के लिए क्या आवश्यक है?
0: हरियाली और पेड़ पौधे।
2: ये भी ठीक, और हरियाली साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारे घरों में कौन लेता है?
0: घर की गृहलक्ष्मी यानी कि महिलाएं।
2: तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए बात करने का अधिकार किसे है?
0: रंजना को।
1: ये बात हुई ना रमेश भाई, मान गए आपको, आखिर निरुत्तर कर दिया रंजन को।
0: सच है यार भाई, रंजना ही मीटिंग में जाएंगी।
2: नहीं, आप दोनों जाएंगे, क्योंकि वहां से आकर जो कार्य करना है उसमें रंजना भाभी का साथ तुम ही दोगे।
1: ये ठीक है रमेश भाई, यही ठीक है। रंजन जी तैयार हो जाइए कमर कस के।
0: लेकिन करना क्या होगा?
2: रंजन, ये माह वैसे भी मौसम के बदलाव का संदेश लेकर आता है, तपती गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत देने, आसमान से काले काले बादलों का संदेश, ठंडी ठंडी बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है और सारी सृष्टि धन्य हो जाती है।
0: और आज की इस गर्मी और उमस भरी सुबह

0: हमें धन्य करने के लिए भी कुछ होना चाहिए।
1: यार उसके लिए तो हमारी रंजना भाभी का एक संदेश ही काफी है। लेकिन रंजना भाभी, आज एक कप चाय से काम नहीं चलेगा। एक तो ये गर्मी, दूसरा आसमान से वर्षा का इंतजार, साथ ही रंजन जी की जीत का आनंद, सब मिलाकर एक छोटा मोटा जश्न तो बनता ही है। आज कुछ ऐसा करिए कि पर्यावरण संरक्षण का ये संकल्प और पक्का हो जाए। अब बताइए आपका संकेत क्या कहता है?
2: क्यों नहीं रमेश भाई, मौसमी फलों का सलाद मैंने बना रखा है, साथ ही लेकर आती हूँ दही की नमकीन वाली ठंडी लस्सी।
1: ये हुई ना बात।

पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए अभी आप सुन रहे थे। आलेख श्री अरुण दुबे का था, कलाकार थे संजय पांडे, सुमिता राय बर्मन और श्याम वर्मा, प्रस्तुति श्री समीर शुक्ल की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों का प्रसारण। 9:15 हुए हैं, समय है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुने कुणाल कांजावाला और साथियों की आवाजों में सुब्रत सिन्हा का लिखा गीत। संगीत संदेश शांडिल्य का है, फिल्म का नाम है रूल्स।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थान बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में नीलेश मिश्रा का लिखा गीत। संगीत है मैम क्रीम का है, फिल्म का नाम है रोग।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: लीजिए अब सुनिए फिल्म राज का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत कुमार ने लिखा है, संगीत है राजू सिंह का।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लीजिए अब सुनिए वन नाइट स्टैंड। इस फिल्म का गीत मीत ब्रदर्स और अरिजीत सिंह की आवाजों में, गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत मीत ब्रदर्स का है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुनील कुमार सोनी और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए सुनील कुमार सोनी और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए

0: आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुनील कुमार सोनी और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे सुनील कुमार सोनी और उनके साथी। सुनील कुमार सोनी और साथियों के स्वर में कुछ और लोकगीत आप सुनेंगे लोक संगीत के ही कार्यक्रम में हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में आज रात 8:15 पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी युवा पीढ़ी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण पर, साथ ही सुनिएगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत भी। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन होगा 1:30 पर। इसमें आज के गोठ में बातचीत का विषय होगा पहला सुख निरोगी काया। साथ ही क्रम डॉक्टर के सुझाव में सुनिएगा गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप की समस्या कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर आकांक्षा साहू ले रोशनी राठौर के गोठपात। और बहिनी मन की चिट्ठी के साथ ही होगा गीत संगीत भी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा फसल ला तेज धूप ले बचाए के उपाय। 7:30 पर किसानवाणी में आप सुनेंगे फोन इन क्रम हेलो किसानवाणी। विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल, संचालन लक्ष्मीकांत दुबे का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को ही थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकतानुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हो। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जेरिकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है, जिससे खरीफ कार्य प्रभावित ना हो। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिवसीय हज यात्रा के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया कि 1 जून से प्रतिदिन वर्षा की स्थिति और संभावित क्षति की रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ शासन इन दिनों पूरे प्रदेश में मना रहा है सुशासन तिहार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है सुशासन। सुशासन यानी जनता और सरकार का सीधा संवाद। संवाद समस्याओं के निराकरण के लिए, संवाद खुशहाली और तरक्की के लिए। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर छत्तीसगढ़ सरकार 1 मई से 10 जून तक मना रही है सुशासन तिहार। इसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है जो किसी न किसी रूप में अभावग्रस्त है। अब सुशासन तिहार बन गया है गुड गवर्नेंस फेस्टिवल। ये त्योहार राज्य में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संवाद से संपूर्ण समाधान ही सुशासन तिहार का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत गांवों और शहरों में शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रमुख शासकीय सेवाओं को सबके लिए मुहैया कराया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं कबीरधाम जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सुश्री रीना ठाकुर।
1: कबीरधाम जिले में सुशासन शिविर आयोजन किया जा रहा है जिसमें हितग्राहियों की विभिन्न प्रकार की जो मांग है या शिकायतें हैं उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। यह राज्य स्तर से संचालित एक अभियान है जिसमें सभी विभागों को एक ही क्षेत्र में एक ही छत के नीचे जो हमारे हितग्राही हैं उन्हें किसी प्रकार की योजनाओं की जानकारी चाहिए या उनका कोई समस्या है, कोई मांग है, कोई शिकायत है, उसके त्वरित निराकरण के लिए इसका आयोजन 10 जून तक किया जा रहा है। इसमें कबीरधाम जिले में भी जो 4 ब्लॉक हैं सभी में विभिन्न तिथियों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर जिला स्तर अधिकारी, विभाग के अन्य कर्मचारी, साथ ही विकासखंड के जो प्रमुख हैं अधिकारी कर्मचारी वे सभी भी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी सुशासन शिविर में उपस्थित हैं, उनका स्टॉल लगाया जा रहा है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी जा रही है, उनके द्वारा कोई मांग की जा रही है या कोई शिकायत है या किसी प्रकार की समस्या होने पर उपस्थित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनके समस्या का निराकरण किया जा रहा है। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिन्न ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के माध्यम से आवेदन भी प्राप्त किए गए थे उसका निराकरण भी आयोजित शिविर के दिन से पूर्व तक किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में आज दिनांक तक लगभग 263 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं या जो ऑफलाइन प्राप्त हुए थे विभिन्न शिविरों के माध्यम से उसे ऑनलाइन किया गया है और लगातार इसका निराकरण भी किया जा रहा है। यदि वो संबंधित विभाग से संबंधित न होकर किसी और से है तो तत्काल दूसरे विभाग फॉरवर्ड किया जा रहा है। यदि कोई छोटी मांग है तत्काल निवारण वाली समस्या कोई आ रही है तो तत्काल निवारण कर रहे हैं। यदि कोई मांग है जो बजट संबंधित हो, ऐसी कोई नई मांग जो राज्य स्तर से संभावित सुलझाने के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहे हैं उसमें विभागीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें रेडी टू ईट के बने व्यंजनों साथ ही हमारे जो छत्तीसगढ़ी

हिदराही हैं, वहां तक इस पर पहुंच सके। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका 6 माह पूर्ण हो गया है, वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अन्न प्राशन कराया जा रहा है, गर्भवती माताओं की गोद भराई की जा रही है और उन्हें पोषण और स्वास्थ्य के संबंधित जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया जा रहा है, साथ ही उसे इन सब क्षेत्रों के इन सब विषयों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें और स्वस्थ रहें। इस प्रकार एक ही छत के नीचे सभी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ मिल रहा है और विभाग की भी ओर से जितनी भी अन्य योजनाएं हैं या कोई हितग्राही आ रहे हैं उनसे पूरा ही जानकारी दी जा रही है और जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं या वहाँ तत्काल शिविर में आ रहे हैं उनका भी निराकरण तुरंत किया जा रहा है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार के माध्यम से आम जन तक अपनी पहुंच बना ली है। इससे समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो रहा है और शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंच रही है। सुशासन तिहार में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है और विकास कार्यों में गति लाने के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है और ये सब हो रहा है समाज की खुशहाली और विकास के लिए।
1: मैं नगर पालिका अध्यक्ष अहिवारा विद्यानंद कुशवाहा। हम लोग अभी सुशासन त्योहार में अभी हम लोग जन जागरूकता अभियान छेड़े हैं। 1 से लेकर 15 वार्ड पड़ते हैं हमारे वार्ड में। हम लोग एक नुक्कड़ माध्यम से लोगों को मसोक्ता पीठ के बारे में बता रहे हैं कि आप नालियां में कचरा नहीं फेंके, ये सब चीज के बारे में बता रहे हैं। पहले 1 से लेकर 8 वार्ड तक के हम लोग शिविर जो लगाए थे वो मतलब अहिवारा के लिए लगाए थे, मंगल भवन 3 में लगाए थे। और अभी हमारी जो शिविर इधर और लोगों का ज्यादातर जो आवेदन आ रहा है ना, पट्टे के लिए आ रहा है और आवास के लिए आ रहा है। कोई इतना ज्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग मतलब मतारी वंदन के बारे में कि जैसे कुछ कुछ महिलाएं छूट गई थी उनके बारे में बता रहे, और ऐसे कोई ज्यादा विशेष कि मात्र पट्टा का है, आवास का है और ये मतलब मतारी वंदन का है। नहीं, नाली ओग्रा में नालियों की ज्यादा कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं आजकल क्या होता है कि लोग जो डिस्पोजल ओग्रा फेंकते हैं ना, उसी के चलते क्या नालियां कहीं कहीं चोक होती है, लेकिन उसको हम लोग ना पूरी तरह साफ करवा दिए हैं। आज अगर आप प्रदेश में अगर पूरे जगह की नगर पालिकाओं में अगर देखें और हमारी नगर पालिकाओं को देखें, आपको रोड रूट किनारे कहीं कहीं ही बड़ा मुश्किल से डिस्पोजल चाहे झिल्ली मिलेगा। हम लोग बिल्कुल झिल्ली पन्नी बिल्कुल मतलब मुक्त कर दिए हैं। समझिए कि 90% हमारे यहाँ से झिल्ली खत्म हो गया। साल भर से मैं उसी अभियान में भिड़ा हुआ। हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगा मतलब उतना ज्यादा देखने के। और मंगल भवन है उसमें भी हम लोग डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोई मंगल भवन अगर किसी को चाहिए, अगर आप डिस्पोजल का उपयोग करेंगे तो आपको मतलब हम लोग नहीं मतलब नहीं देंगे मंगल भवन। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग अगर पहले नहीं करेंगे तो उनको भी मकान का निर्माण करने नहीं दे रहे अभी। सभी विभाग के कर्मचारी बैठ रहे हैं और बिल्कुल मतलब बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग। हम लोग जो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं ये वार्ड 1 से लेकर 15 वार्ड तक के कर रहे हैं। और इसमें मतलब जैसी जैसी जो परिस्थितियां निर्मित होती है, जिस टाइप के लोग हैं मतलब वार्ड में,

उसके अनुसार मतलब नुक्कड़ नाटक का हम लोग उसके माध्यम से बता रहे हैं, स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, झिल्ली नहीं फेंके उसके बारे में बता रहे हैं, और स्वच्छता पीठ के बारे में बता रहे हैं कि भाई इसे आप अगर अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो ये मान के चलिए कि आप ही स्वस्थ रहेंगे, नालियों में कचरा नहीं फेंकेंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होगा और अन्य प्रकार की बीमारियां नहीं होगा, चाहे कहीं पर जो पाइपलाइन है उसमें आप अवैध नल कनेक्शन नहीं ले, उस चीज को भी बता रहे हैं हम लोग सभी प्रकार का, क्योंकि अगर हम सरकार का नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, ये सब चीज के बारे में भी मतलब बताया जा रहा है।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: सुशासन तिहार के पहले चरण में शहरों के वार्डों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आम जनों से आवेदन प्राप्त किए गए। इसके बाद 1 मई से प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 जून तक जारी रहेगा। इन शिविरों में प्राथमिकता के आधार पर आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही जनता को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक योजनाओं का लाभ ले सकें।
2: मैं नगर पंचायत क्षेत्रांश से मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुजीत चा बोल रहा हूँ। और अभी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना छाया सरकार की सुशासन तिहार, जो कि मेरे यहाँ मेरे निकाय में 2 दिन आयोजित हुआ, 8 तारीख और 15 तारीख, सभी में अधिकांश आवेदन पट्टे का आया है। लोगों को पट्टा नहीं होने के कारण से उनका आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और पट्टा देने में भी मतलब उच्च अधिकारियों से जो बात हुई, तो ये छिद्रांग जो शहर है वो 95% नजूल भूमि, इस कारण से उसमें पट्टा दिया जाना संभव नहीं है ऐसा। और मुख्यतः यहाँ समस्या मतलब केवल पट्टे का है, और पट्टा नहीं होने के कारण से बहुत से लोग आवास से वंचित। नॉर्मली ऐसे आवेदन है सफाई और पेयजल वगैरह को लेकर, तो उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। छिद्रांग का थोड़ा ऊपर बसावट होने के कारण से कुछ कुछ

ये ड्राई एरिया हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग बसंत तिहार के पहले ही यहाँ पर 7 बोर का हुआ है और बोर के माध्यम से ही यहाँ सप्लाई होता है ताकि भविष्य में जल संकट बच सके। यहाँ पास में 6 किलोमीटर आगे छिदारी डैम है जो कि बहुत अच्छा मतलब पर्यटन स्थल भी है, और उससे यदि श्री किसान को पानी मिल जाती है तो यहाँ की पेयजल की मांग के लिए आप कम से कम 99% समस्या खत्म हो जाएगी।

0: सुशासन तिहार आयोजित कर सरकार ये चाहती है कि आम नागरिक इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं और शासन की योजनाओं का लाभ लें। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समस्याओं और योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा है कि सुशासन और विश्वास का उत्सव है सुशासन तिहार। वास्तव में यही नजारा आज पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। सरकार हर द्वार पर दस्तक दे रही है।
1: मेरा नाम पारस मलिक साहू जी, ग्राम पंचायत कंजी से सरपंच प्रतिनिधि एवं पंच। हमारे एरिया में सुशासन त्योहार ग्राम पंचायत सक्रिय में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन का त्योहार है, समझ लो एक प्रकार से, जो त्वरित हितग्राहियों का समाधान हो रहा है। हर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और विभागों द्वारा कई ऐसे विलम्ब जो केसेस है, समझ लो जो बहुत पहले से कई प्रकार के उलझे हुए हैं अपने ग्रामीण एरिया के, जितने भी जैसे राजस्व विभाग में बंदोबस्त टूटी है हमारे गांव के कम 20 से 25 लोगों की, उसका आवेदन यहां स्वीकृत किया गया है और माननीय तहसीलदार महोदय को बोला गया है कि इसका गांव में समाधान शिविर लगा करके इन लोगों का समस्या हल करें। और ऐसे ये पेंशन, जैसे पेंशन है और अपना कई फॉर्म आए हैं, सब दिए हैं और समाधान हो रहा है। और जैसे हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार जो सुशासन

गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, उससे क्षेत्र में बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रहे हैं। जो समस्या है खाद को लेकर, हम लोगों द्वारा समझाया भी जा रहा है कि रासायनिक खाद को, रासायनिक जो कृषि है उसे कम करके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ाने की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हमारे खाद बाहर से जो आते हैं, पब्लिकों को समझाया जा रहा है, उनकी शिकायत यही है। और सबसे ज्यादा शिकायत राजस्व विभाग में है, जो पट्टा अपना पट्टा का निराकरण है, ग्रामीणों का एक दूसरे में नामनीकरण है, जो वो हो चुका है, एक दूसरे के नाम पर जमीन जा चुका है, उसमें परेशान है। और जल जीवन मिशन के तहत कुछ समस्याएं हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत गंजी में टंकी बन चुका है, सभी घरों में नलकूप पहुंच चुका है, लेकिन पानी की समस्या है। हमारे यहाँ बोर में पानी ही नहीं है, तो हमारे ग्राम पंचायत गंजी में यही समस्या है, जो बाहर से पानी लाना पड़ेगा। इसमें कम से कम 20 से 30 बोर हो चुका है अलग अलग विभाग से, अलग अलग मद से, लेकिन पानी टंकी चला सके, जैसे गांव में पानी पेयजल की व्यवस्था कर सके, उस टाइप का पानी नहीं है। हाफ इंची पाइप, हाफ इंची कहीं पर एक दूसरे जगह निकला हुआ है, जिसमें समस्या का निराकरण होता है, कुआं में डाल करके पानी का समस्या निपटाते हैं।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके हों या शहरी क्षेत्र, सभी जगह बड़े पैमाने पर जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की आधारशिला है। आम जन को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना ही राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रकरण राजस्व के हों या मनरेगा की लंबित मजदूरी के, समस्या बिजली पानी की हो या फिर आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की, सुशासन तिहार में ये सब हो रहा है बिल्कुल आसानी से।

छत्तीसगढ़ में जो भी समाधान शिविर लगाए गए हैं, वे सब एक निर्धारित प्रक्रिया का कुशलता के साथ पालन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह में शिविर लगाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में वार्ड क्लस्टर आधारित शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य है मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर लाभ का वितरण करना। अन्य आवेदनों के निराकरण की समय सीमा 1 माह रखी गई है। इन शिविरों में शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

सुशासन तिहार अब बन गया है जन आंदोलन। इसकी एक वजह ये भी है कि सुशासन तिहार को पूरा का पूरा समाज एक साथ मिलकर मना रहा है। समस्या निवारण शिविरों में पहुंचकर लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी बात सरकार सुन रही है और उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई भी कर रही है। इन दिनों लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। सरकार पहुंच जो गई है उनके द्वार तक। अब दूरियां मिट गई है, समाप्त हो रहा है शोषण और बढ़ रहा है सम्मान।

छत्तीसगढ़ का सुशासन त्योहार पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। इस त्योहार में पूरी हो रही है जन अपेक्षाएं। जनता बिना किसी भय और दबाव के सीधे तौर पर कर रही है सरकार से बात। लोकतंत्र में यही तो है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज। छत्तीसगढ़ की ये राज प्रणाली सुशासन त्योहार के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। अपने द्वार सरकार के आने की बाट जोहती जनता को अब मिल रहा है योजनाओं का लाभ, समस्याओं का समाधान और पूरा पूरा सम्मान। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलने वाले इस सुशासन त्योहार को समूचा राजतंत्र और सभी नागरिक मिलकर मना रहे हैं। सुशासन त्योहार पूरी पारदर्शिता, स्वाभिमान और शक्तिशाली व्यवस्था के साथ बढ़ रहा है उजाले की।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म रफ्ता रफ्ता द स्पीड से। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं। गीत लिखा है नवाब आरजू ने, संगीत सेन ब्रदर्स का है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फॉर वॉइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।

0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए।

चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनें सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में नितिन रायकवार का लिखा गीत। संगीत संदीप चौटा का है, फिल्म का नाम है प्यार तूने क्या किया।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म प्यार तूने क्या किया का ये गीत। अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आज यानी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय है खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव और संबंधित योजनाएं। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज यानी 26 मई को ही दिन में 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद आइए सुनिए ऋचा शर्मा और शंकर महादेवन की आवाजों में अरुण भैरव का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म का नाम है रुद्राक्ष।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: लीजिए अब सुनिए फिल्म कयामत का गीत कुमार सानू और महालक्ष्मी की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।
1: तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से, आवाज़ें हरिहरन जानकी और साथियों की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत बीजू शाह का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्ध और विकास के खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगे और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी।

0: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो में से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से बात की और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इस बीच मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम। पहले ये संदेश।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: साझा करें, तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: समूहगान शिक्षा के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए असमिया भाषा में समूहगान शिक्षा। गीत के बोल हैं ए माटी रे, गीत के रचनाकार हैं सतीश दास। तो लीजिए सुनिए असमिया भाषा में समूहगान शिक्षा।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: एई मा

0: tire moro mote.
1: Moro mote.
0: Mati ke.
1: Mati ke.
0: Sumilo. माती के सुमिलो, माती के सुमिलो हो गया ना यहाँ तक। आगे लिखो, एई माती ते, एई माती ते जीवन, एई माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना, ये एई माती ते जीवन सोबी, जीवन जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीबॉन सोबी आकी आकी दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद, दूर आका हार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहाँ ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा,
1: आहा आहा,
0: फिर मातिर बुकुत,
1: मातिर बुकुत,
0: हाँ मातिर बुकुत, मोनोर मालोती,
1: मालोती
0: बूटोलो,
1: बूटोलो
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी
0: इतना हो गया ना
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार, थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना
1: जी,
0: हुंदोर हुदिनोर, खुदी नौर नहीं ख नहीं ख, खुदी नौर,
1: खुदी नौर
0: नौतून,
1: नौतून
0: दृष्टि,
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ। आगे ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

ऐसे कोनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना, खून दौर से लो, एक दो तीन चार।

अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना, एक दो तीन चार।

असमिया भाषा में समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। गीत के रचनाकार थे सतीश दास। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत बराई से। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का।

दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, संगीत था शंकर जयकिशन का। आइए अब सुनिए दिल देके देखो। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत उषा खन्ना का है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। अगला गीत फिल्म बम्बई का बाबू से। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। लीजिए अब सुनिए आदमी और इंसान, इस फिल्म का गीत आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है, संगीत रवि का है।

0: फिल्म आदमी और इंसान के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्री परिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इबोला को लेकर जारी एसओपी के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की ओर से भी इबोला संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे, जिसके बाद शाम को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को 9,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ने कनेक्शन लगाने के नाम पर प्रार्थी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। वहीं बेमित्रा में एसीबी ने जमीन के बटांकन और खाता विभाजन कर ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को गिरफ्तार किया है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कोलकाता हरियाणा में दबिश देकर आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के पास से 17 लाख नकदी, 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। अकलतरा पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर खाताधारकों के खातों में फर्जी तरीके से रकम निकालकर 19,00,000 रुपये, 21,000 रुपये के गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। गौरतलब है कि पीड़ित खाताधारकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,80,000 रुपये जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर अलग अलग अमाउंट की राशि कुल 30,00,000 रुपये जमा है, जिसे होल्ड करवाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्री परिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: डंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ

0: साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
0: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
0: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
0: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय!
6: वीर जोरावर की
7: जय!
6: जय जेरापुर, जय भारत!
7: जय जेरापुर, जय भारत!
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं। लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
10: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
9: जी।
10: वहां के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
9: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
10: बिल्कुल।
9: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
10: जी मंत्री जी।
9: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
6: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
11: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
4: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
10: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
4: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
10: देखिए निजाम साहब।
4: जी फरमाइए।
10: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
4: जी।
10: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
4: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
10: जी।
4: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
12: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
13: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
12: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
11: बिल्कुल।
12: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
11: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
12: लेकिन जरा होशियारी से।
11: जो हुकुम सरकार।

0: John Allen! What ho? Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko aadhi raat mein aise kaayron ki tarah giraftar karte ho? Sharm nahi aati tumhe? Himmat hai to humse lad kar dikhao. Aao samne.
0: Bout ho gayi tumhari bahaduri. Fauzia!
2: Huzoor!
0: बांटो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी
3: हाँ। छोड़ो मुझे।
0: पकड़ के
3: हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियाओ, ले चलो इसको।
3: चलो मुझे, चलो हाथ उठाओ, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
7: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा।
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: एक्चुअली यू आर अ फूल।
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
5: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
6: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम आप मन के गीत सुनैया जम्मो संगवारी मन के स्वागत करत हन। आज के कार्यक्रम में स्वीकार करो प्रवीणा त्रिपाठी के राम राम। संगी हो अतेक गर्मी ए साल पड़त है ता आप मन ले यही कहथन कि घर के भीतर छाया में रहाओ और बने पानी वाला फल खरबूज तरबूज खीरा खाओ और लींबू पानी पियो ताकि शरीर में पानी के कमी झिन होवे। त यही गोट बात के संगे आवो शुरू करन कार्यक्रम आप मन के गीत। और कार्यक्रम के पहले गीतला स्वर दे है झुमुक लाल देवांगन और मंजू चतुर्वेदी। और गीतला सुने बर हमला ईमेल और पाती भेजो आप मन भाटापारा ले दान सिंह रावत पद्मिनी नीरज शुभम सौरभ रावत नांदघाट कातलबोड़ ले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा कुमारी लोचन विद्यार्थी चंद्रिका जमुना महेश्वरी निर्मलकर हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र पायल साहू पार्वती टिकेश्वरी नागेश्वरी साहू कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी राहुल सिंह आशीष टेमरे हिमांशु सिंघा गीतू बंटी उन्द्रा अवखिलेश पुटियागला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता शशांक सीमा साहू जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश ले दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक पुनेश्वर रजक राम कुमार सेन विक्की सेन फानेश्वर रजक और उमेश रजक रोहासी ले डगेशर राम साहू नूतन गौरव घनश्याम साहू और लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। और पाती भेजो आप मन बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौद सरगांव ले सुजान वर्मा सुहद्रा वर्मा आयुषी कृत वर्मा मुंगेली गोलबाजार ले

संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, दानिश, पीहू, दीक्षा, छोटी, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे और भाषण सोनी। बुड़गहन ले रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। कटोरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी, पहंदा कोरबा ले सम्मेलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे। सरक बुंदिया ले गब्बर साहू, निर्मला देवी साहू और बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। ता आओ सुने जाए आप मन के पसंद माँ झुमुकलाल देवांगन और मंजू चतुर्वेदी के गाये ए लोकी।

अगले गीतला सुने बर ईमेल भेजे हो ठिठवार पारा कनेरी ले सनत कुमार यादव रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा शिवाजी चौक कटनी ले अनिल ताम्रकार अमर दिलीप संजय अरुण पवन संजीव सुनील रजन लालू

मोना सोना हनी अउ यश, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा ले मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति राधे, दीपक, अंकु राघव गुप्ता, कोरांसी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज सुष्मिता, दीपिका साहू, कोई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम ध्रवे, जामुनबाई, फिरत राम, मालती ध्रवे, भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी, राहुल पूजा मरावी, नागर कोहरा, राजनाथ गांव ले बबलू साहू, जामुन देवी, समीक्षा बेबी आराध्या साहू, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, रवेली फिंगेश्वर ले राम अवतार यादव, शुभम सौरभ, चंचल यादव, डोडरी घोटिया मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद, रंभा रानी, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद, अमलीपदर देवभोग ले निकुंज तिवारी, लाची तिवारी, ममता तिवारी, धनंजय मिश्रा, अर्चना मिश्रा, चंद्रकांति मिश्रा, उगेंद्र लाल मिश्रा, धवलपुर गरियाबंद ले भाटापारा ले नारायण यदु, पुनिया राकेश, आरती यदु, मोपका भाटापारा ले दयालु वर्मा, तेजराम वर्मा, सहदेव राम, चिरंजीवी, हिंगोली महाराष्ट्र ले शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, पावर हाउस भिलाई ले विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ संजय प्रधान, पूजा प्रधान, कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा, रुचि खुशी, ओजल वर्मा, अरुण वर्मा, अनिल ईश्वर और दिनेश सेन। ताओ सुनो जाए आप सब मन के पसंद माँ गया सिंह राज और उखर संगवारी मन के गाए ये गीत।

अगले गीत ला सुने भर ईमेल पठोए आप मन बिनोरी फिंगेश्वर ले टीकम राम साहू योगेश्वर साहू हेमलता साहू देंदू भाठा मगर लोड ले उमेंद कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर सहया मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया कमार मुड़ा ले शिवायगिरी गोस्वामी एकांशी गोस्वामी गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतिनबाई मोतिमबाई मानिकपुरी गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज चिंटू तरुण यादव कन्हैया निर्मला चुवाराम आशीष यादव सोंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी गजेंद्र कुमार चंदन मोहित देविका हेयांश चंदन कन्या भालाघाट ले अखिलेश कुमार यादव ज्योति अंकित श्रद्धा सौरभ यादव और लोरमी चचेड़ी ले मोहन सिंह मरावी सविता रिंझा तनु राही मरावी इहीं ले जगदीश सिंह सावित्री चमन अमन और सुमित मरावी और पोस्टकार्ड भेजो आप मन रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे पूजा अंबादे शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा मोहाली चंडीगढ़ ले टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल मन्हा बाजार पारा बेमित्रा ले भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा पटपर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता औजयंती ध्रुव महासमुंद खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी ओंकार गरिमा अर्जुन भारती मोती अवहेम लता तिवारी मन्हा औ सिर्री गातापार ले धनेश्वरी साहू ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी चमेली भूमिका मोनिका औ पूनम साहू ता आवो सुने जाए आप सब मन के पसंद माँ बिंदु देवांगन औ खुशीदास मानिकपुरी के गाए ए छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत ला सुने बर ईमेल पठोयो आप मन पहंदा पलारी ले नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखन लाल सावित्री बाई देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग टेलर पूना राम कृष्णा देवांगन अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयशा सबीहा अनस औरिहान गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन श्रीमती कचरीबाई दीपक कुमार जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भ्रगु विनय कुमार ठाकुर मेचका सोंढूर ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा लिखिल तरुणदीप नाग भुरसुदा ले भगवानी सेन संतोषी सेन सरसेनी ले तेजराम सेन जानकी सेन दुष्यंत कुमार और जागृति सेन पुरेना खपरी ले केशव प्रसाद साहू अनीता अनुष्का उषा साहू दत्रेंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा बिलाईगढ़ ले कौशल्या देवांगन रोशन लाल हेमलता डिंपल देवांगन कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर पूर्णेन्द्र मुकुंद साहिल चंद्राकर सौगा धमतरी ले कोमल सेन तोषण सेन औ विनायक सेन औ पातिपठ्यो बेमित्रा ले सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता भाई कमलकांत ब्रजेंद्र बृदकांत सारथी मुलमुला बेमित्रा ले सेखन राम साहू अमिका बाई साहू रोशनी चहक नेत्राम मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिंपल रमेश्वर साहू अमोरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल औलावी श्रीवास्तव रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी और रूही श्रीवास्तव दत्रेंगी भाटापारा ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा औ झावेंद्र कुमार वर्मा औ गातापार ले लावण्या साहू उपासना साहू देवराज ओम कुमार पुष्पराज साहू औ प्रभुराम साहू ता आप सबके फरमाइश मा आवो सुनथन दुखिया बाई औ भरतलाल हरिंद्र के गाए ए लोकगीत

कार्यक्रम के आखिरी गीत ल सुने बर एमेल पठोयो आप मन धरसीमा ले छेदुलार यादव श्रीमती सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव रानू खुशी प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नू लाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था अनुराग अभिषेक डुग्गू कान्हा यादव हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस दास शांति ऋचा गायत्री वैष्णव खैरागढ़ राजलालपुर ले मोतीलाल भीमटे सुशीला मेघा नेहा येशु भीमटे गेंदाटोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता गजेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गुप्ता नरगोड़ा ले कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी लगान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती बघेल चरडुंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू अजय कुमार इंद्राणी कुमारी माया जयकिशन योगेश वासु हेमा राधिका साहू बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन सिंगारपुर ले चिंताराम धुर्वे कामिन चंद्रध्वज सानू धुर्वे बाजार वार्ड महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष्यदास औ दतरेंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता औ रुद्र वर्मा औ पाती पठोए आपमन शिवाजी चौक राजिम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार औ कृष्ण श्रीवास्तव ग्राम कोरदा ले कलीराम यादव छतराम यादव शेषराम यादव शीतलानगर दुर्ग ले शिवचंद्राकर औ भगवान चंद्राकर बेलरगांव सिहावा ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु औ अंकित देवांगन रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना जैन सैया श्रेया सौरभ शौर्य औ शुभम जैन औ सिमगा ले श्रीमती सविता जैन प्रदीप जैन औ उखर संघवारी मन ता आवा सुने जाए आप मन के फरमाइश मा कार्यक्रम के ये आखिरी गीत मंसूर सिंह औ सत्यभामा सिंह के आवाज़ मा।

तो संगी हो यही गीत के संगे आज के आप मन के गीत कार्यक्रम ही सिरावत है। आज के कार्यक्रम में गीतला जोरे रहिन बीरभान साहू मनहा ता अब देवो विदा प्रवीणा त्रिपाठीला राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू

0: कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएमएंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में। रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अगले गीत को हमने लिया है फिल्म छाया से। तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म का नाम था उजाला। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र का प्रसारण। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओ, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी 1:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज के गोठ का विषय होगा पहला सुख निरोगी काया। क्रम डॉक्टर के सुझाव में सुनिएगा गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप की समस्या, कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर आकांक्षा साहूले, रोशनी राठौर के गोठ बात। साथ ही सुनिएगा क्रम बहिनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनिएगा शाम 6:30 पर। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। इसमें अपन गोठ में सुनिए चर्चा युवा पीढ़ी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण विषय पर। सुनिएगा प्रश्नोत्तरी क्रम सवाल जवाब और होंगे माटी के गीत।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा फसल ला तेज धूप ले बचाए के उपाय। शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाणी में आज सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन करेंगे लक्ष्मीकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। लोक संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुनील कुमार सोनी और साथी। जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में रात 9:30 पर सुनिएगा दाऊ सिंह पोया और साथियों के स्वर में हल्बी गीत और राम सिंह मरकाम और साथियों के स्वर में कमार गीत।

पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देश सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर। रात 10 बजे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2 बजे 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा, फसल ला तेज धूप ले बचाए के उपाय। शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी में आज सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव और संबंधित योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन करेंगे लक्ष्मीकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

तन स्वस्थ त मन हसे, माया बरसे द्वार, निरोगी काया संग रहे, सुख शांति अपार, सुख शांति अपार। मोर इही शुभ भाव संग जेठ के लकलकावत मझनिया के आज के घर आंगन में झोंकाऊँ अपन बहनी रोशनी राठौर के राम राम। बहनी हो घाम हा अंगराकस बरसत ही, थोकुन भी घर ले बाहर निकले के मन नहीं करे। फिर भाई हमला तो आकाशवाणी आना रहीस आप मन ले गोट बात करे भर। फिर आवत आवत मैं रद्दा भर एक बात विचार करत आयो, लाख टका के नोट ले नींद न आवे रात, निरोगी काया सुख के नींद, यही आए सही बात, यही आए सही बात। बहनी हूँ मोर पड़ोसी के हालत ल देख के मैं ये बात ल कहे बर मजबूर हो गए। मोर पड़ोसी है बढ़िया कारोबारी आवे, कतकुन जगह ओकर व्यवसाय बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब हावे। फिर काम बुता में अतका मगन रहे कि न खाए पिए के होश न सुते उठे के, तन ल बीपी और शुगर तको घेरे रहीस। ओकर गोसाइन कहत रहे बेरा में खाना ल खा लो, और बेरा बेरा में बीपी शुगर ला डॉक्टर करा जाके जांच करा ले। फिर वो कहाँ माने रात दिन अपन बूता में लगे रहे, पैसा तो बड़ कमाईस बहनी हो, फिर दिनों दिन शरीर है गिरत गईस। और एक दिन ऐसे आईस कि बीपी है एकदम ले बाढ़ गई और वो है लकवाग्रस्त हो गई। शरीर है स्वस्थ नहीं है तब पैसा कौड़ी के का मोल, एकरे सेती तो कई थे पहला सुख निरोगी काया। बहनी हूँ हमला अपन परिवार के संग अपनों सेहत के ध्यान रखना है। अपन खाना में हरियर हरियर साग भाजी सलाद अंकुरित अनार ये मल्ल जरूर शामिल करें। मौसम के हिसाब ले फल फलहरी मल्ल खावन। काम बुता तो दिन भर रही थे, चाहे हमन ह गृहिणी होवन चाहे काम काजी होवन, समय में नाश्ता और खाना ल जरूर खावन। कसरत व्यायाम योगा ला अपन जिंदगी के हिस्सा बनावन, और तन के संगे सन मन ल घलो शांत राखन। तनाव ले दूरिया रहन, काबर तनाव हा दिया रसन तो आवे, कब शरीर ल खोखला बना दे ही पता नहीं चले। बहनी हो हमेशा हंसत रहो मुस्कुरावत रहो, और संग में गीत ल घलो सुनो। काकर स्वर में त राजकुमार अग्रवाल अमचीरी बाई ओकर संगवारी के स्वर में।

0: हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
1: बहनी हूँ, ये गीत ले सुने के पहली हम गोट करत रहें पहला सुख निरोगी काया के बारे में। तब बात जब सेहत के बारे में हुआ थी ता आओ अब डॉक्टर के सुझाव में गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप के समस्या कारण और निवारण एकरो बारे में भी जानकारी ले लेवन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा साहू जी ले और संग महाओ आप मन के रेडियो संगवारी रोशनी राठौर। नारी जाति के पूर्णता मातृत्व सुख मही हवय काबर की शादी के बाद हर महिला के एक सपना होते कि वो माँ बने फिर अपन वो सपना ला पूरा करे खातिर उला गर्भावस्था के दौरान बहुत अकन शारीरिक और मानसिक माने दोनों प्रकार के समस्या ले जूझे बर लागथे और वर्तमान में जौन समस्या सबले ज़्यादा उभर के आवा थे तो वो है कि महिला मन के गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप जिला ब्लड प्रेशर कहथन त एकर बाढ़े के का कारण है ओकर निदान कैसे हो सकत है यही सब बात ल ध्यान में रखत आज गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप संबंधी समस्या ये विषय में जानकारी देहे बर हमार स्टूडियो में आमंत्रित करे हवन एम्स रायपुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा साहू जी ल। डॉक्टर साहिबा हमारे ये कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आकांक्षा जी सबले पहले हम ये जानना चाहबोन कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य रूप ले कौन कौन से समस्या के सामना करे बर पड़ते हम महिला मल्ला एकर बारे में थोकुन विस्तार से बताते हो।
2: सबले जो कॉमन होते जो गर्भावस्था के दौरान महिला मल्ला होते वो होते उल्टी उल्टी लगना मन हा जो एकदम मचलाथे ठीक है आओ ओकर साथ साथ में भूख नहीं लगे पेट एकदम भरे भरे रखते कई मतलब लेटरिंग करे के शिकायत होते ए साथ साथ में कमजोरी आना आगे प्रेगनेंसी आओ थोड़ा बढ़ते तो फिर शुगर होते जेका हम अपन भाषा में GDM बोलथन फिर BP बढ़े के रक्तचाप बढ़े के जेका हम प्रीक्लैम्पशिया बोलथन खून के कमी होए के ज्यादा असर होते संभावना रहते और मान लो पहली कोई बीमारी हवे तो वो बीमारी आउ एमा बढ़े के होए के चांस होते जैसे कि कोनोला थोड़ा बहुत हार्ट के बीमारी है वो एमा आउ बढ़ जाही तो इसे प्रेगनेंसी हा पूरा एक तरीके से ऐसे फेज हावे जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होए के संभावना रहते ता ये सब मैं वही आप मतलब आगे मैं बताऊँ कि ये सब चीज़ में कामा का चीज करे रखते जेकर से हमार जो प्रेगनेंसी की जो अवस्था है बहुत आसानी से निकले काहे कि हर महिला के लिए जो ये जो प्रेगनेंसी के जो 9 महीना जो दौरान होते वो बहुत ही अमूल्य होते और हर कोई ये चीज के इंतजार में रहते कि हर कोई मालूम है कि कब मैं जन्मत हूँ वो मोला नहीं पता है कब मैं मरत हूँ नहीं पता है लेकिन हाँ मैं जब माँ बना था मैं जन्म देता हूँ वो बहुत अमूल्य है ता एकर बारे में हम आगे मैं जरूर आप मतलब बताता हूँ।
1: ये तो आप सही कहे हो और अभी के समय में ज्यादातर एहू देखे बर मिला थे कि ये दौरान पूरा 9 महीना में कभू रक्तचाप जो है कम हो जाते तब कभू बाढ़ घल हो जाते माने घटत बढ़त रही थे तो ये जो रक्तचाप के उतार चढ़ाव है तेकर कारण और लक्षण का होते।
2: अगर हम पानी कम पीबो कोई महिला है वह गर्भावस्था में पानी कम पीते ओकर खाना में सोडियम जो होते सोडियम कहाँ से मिलते नमक में मिलते वो ओकर कमी हुआ थे ता फिर BP है या इलेक्ट्रोलाइट होते जेमा मिनरल्स होते अगर वो कम मात्रा में मिला थे पानी भी कम पिया थे तब BP है कम हो ही।
1: तो नमक की मात्रा का होना चाहिए ऐसे कुछ
2: नमक की मात्रा हमर हिसाब से जो नॉर्मल हम खाते
1: भोजन
2: में खाते दाल
1: रोटी हाँ, चावल में जो
2: वो सफिशियंट हवे वो ठीक हवे लेकिन ओकर ले ज्यादा नमक अगर हम अलग से सलाद के ऊपर जो डालथन ऊपर से डाले वाले नमक हानिकारक है लेकिन अगर आप सब्जी के साथ खाना के साथ जो बना था नॉर्मल दाल के साथ उतना सफिशियंट है। दूसरी बात प्रेगनेंसी में BP जो रक्तचाप है बहुत बढ़े के चांसेस होते। काहे के होते, काहे की हम बच्चा लग जो खून जाते वो कहाँ से जाते, एक फूल होते एक नाल होते, फूल में पूरा खून बन के फिर नाल के थ्रू बच्चे के शरीर में जाते।
3: अच्छा।
2: अगर वही जो फूल है जेका हम अपन भाषा में प्लेसेंटा बोलते हैं, ओमा अगर गड़बड़ी हो जाते, और ये जनरली गड़बड़ी जो होते वो कब होते, 20वां हफ्ता के बाद होते। अगर ये गड़बड़ी होते तो आगे बीपी बढ़े के, जो रक्तचाप बढ़े के बहुत संभावना होते, जेका हम प्री क्लैम्पशिया बोलते हैं। और ये इतना भयानक हो जाते कि एमा बच्चा बहुत कमजोर हो सका थे, बच्चा का खून कम जा सका थे, बच्चा हो सका थे पेट में खत्म हो जाए, बच्चा पैदा होने के बाद खत्म हो जाए। ये तो बच्चा के कॉम्प्लिकेशन। माँ के साथ ये होते कि बीपी इतना बढ़े के माँ ला झटका आए के आशंका है, दिमाग जो नस है वो फटे के, लीवर के जो कलेजा के नस फटे के, पेट के नस फटे के आशंका रहती,
3: ज्यादा संभावना रहती।
2: हाँ, ये सब बहुत संभावना रहती। तो ये सब चीज है जो माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत भयानक रहते। तो यही प्री क्लैम्पशिया से ही क्लैम्पशिया की स्थिति, मतलब बीपी बढ़ के झटका तक आना की स्थिति हो जाते। और एक जनरली
3: रक्तचाप बढ़ते तब,
2: जी जब रक्तचाप बढ़ते तब। अब एक बात अपन के मन में जरूर सवाल आते हुई कि ऐसे कौन है जेकर बहुत ज्यादा ये संभावना होते, जे रिस्क होए, जो रिस्क ग्रुप आवे।
3: हाँ,
2: वो ये है कि कई महिलाएं मन बहुत जल्दी, जैसे कि 18 वर्ष में ही शादी होके प्रेगनेंसी हो जाना जल्दी से, लेट में भी अगर 35 वर्ष में प्रेगनेंसी हुआ थे तब, वो प्रेगनेंसी जेमा बच्चा ट्वींस आवे ट्रिपलेट्स आवे, ट्वींस मतलब डबल बच्चा या ट्रिपलेट्स मतलब तीन बच्चा एक साथ गर्भ में आवे, या वो जेकर यहाँ पहली से फैमिली में हिस्ट्री आवे मम्मी पापा ला बीपी होए के, ओकर साथ साथ और रिस्क फैक्टर वो होते कि जेका शुगर है पहली से, ता पहली प्रेगनेंसी में भी बीपी है, तो ये मन बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप है कि ए दारी प्री क्लैम्पशिया होए के। तो ऐसा हा रिस्क ग्रुप पर फिर हमार काम होते डॉक्टर मन के होते कि हम ऐसा हा ग्रुप ला पहली पहचानन। आप मन देखत भी होहा गाँव में जाहा तो कार्ड रहते प्रेगनेंसी में, वो कार्ड का येलो कार्ड होते, पीला कार्ड, हरा कार्ड, लाल कार्ड।
3: अच्छा।
2: लाल कार्ड मतलब ये रिस्क वाला प्रेगनेंसी है, एक अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, और एक अच्छे जगह ही डिलीवरी कराना है। तो वो यही ट्रायज हम करते हैं कि कौन सा हाई रिस्क है, प्री एक्लेम्शिया हाई रिस्क कंडीशन।
3: अच्छा, ये कार्ड कब बनवाते, शुरू में ही कि
2: शुरुआत में ही रजिस्ट्रेशन होते।
3: अच्छा।
2: रजिस्ट्रेशन होते फिर हम देखा तरथन, फिर अगर लगते कि ये ग्रुप ए है नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो सका थे, बच्चा माला रिस्क है, तो फिर ओकर हाई रिस्क ग्रुप लाल वाले में जाते। फिर एकर बाद मैं ये सब तो बता दिया कि रिस्क फैक्टर का है।
3: अच्छा आकांक्षा जी, समान रूप ले यदि रक्तचाप कम हो गए और अचानक कभू बाढ़ घल हो जाते, तो एकर कारण ना तो हम समझ गए है ना, लेकिन ओकर लक्षण का होते, ओकर उपाय का होते, ओला संतुलित कैसे करे जा सके थे, एकर बारे में थोड़ा सा बताते हो।
2: जी, मैं लक्षण ये होते कि महिला ला पैरों में सूजन आना चालू हो जाते प्रेगनेंसी में। अब आपके क्वेश्चन ये जरूर हुई कि मैडम प्रेगनेंसी में तो ऐसे भी सूजन आते, लेकिन ये जो सूजन होते वो आराम करे से नहीं जावे। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सूजन होते वो अगर हम आराम करबो तो सुबह कम रही सूजन।
3: ये सूजन मैडम कौन से समय में होती, कौन महीने चालू हो जाती?
2: ये जनरली जो सूजन होते वो 5 महीने के बाद होते। अच्छा। प्रेगनेंसी के फिर वहाँ पे सूजन आना चालू हो जाते, सूजन चालू हो जाते और वो सूजन हमेशा रहते, वो सूजन, हाँ वो सूजन पैर से चालू हो के पूरे शरीर में भी हो सका थे, पूरे शरीर भी सूज सका थे, हर जगह पानी भरना चालू हो जाते। ठीक है, ये एक लक्षण है। दूसरा है कमजोरी लगना, तीसरा है कि बीपी बढ़ना, चौथा है सर में दर्द बने रहना, पांचवा है कि पेट में दर्द होना, छठवा कि धुंधलापन आना। तो ये सब एक लक्षण है। जब भी कोई प्रेगनेंसी में अगर ऐसे होते कि बार बार उसका सर में दर्द होते, बीपी बढ़े है, धुंधलापन लगा थे, मतलब यह प्री एक्लेम्पशिया के ही शिकार हवे।
3: अच्छा, तो वो स्थिति में क्या करना चाहिए?
2: वो स्थिति में ये करना है कि हम डॉक्टर्स हम उनका देखबो, उकर बीपी के कंट्रोल करना है हमला, कि ओकर बीपी का कंट्रोल करे के फिर हम दवाई चालू करथन, वो दवाई देबो साथ साथ में खून पतला करे के दवाई हम देथन, कि आगे थक्का बने के बीपी जहाँ बढ़ते उनका ज़्यादा रिस्क होते खून के थक्का बने के, जहाँ खून के थक्का बने मतलब अटैक जो हम आम भाषा में बोलते हैं, तो वो हम अल्लाह रोकना है।
3: शिकायत मिलते
2: जी, तो वो हम अल्लाह रोकना है। साथ में ऐसे प्रेगनेंसी में बार बार हम अल्लाह किडनी के जांच करना है, काहे कि प्री एक्लेम्पशिया में किडनी खराब हो जाते हैं, खराब होए के बहुत ज़्यादा संभावना है। किडनी के जांच होना, पेशाब के पेशाब में प्रोटीन के जांच करना, प्रोटीन है शरीर के जितना प्रोटीन है पेशाब द्वारा बाहर निकलते।
3: तो ये जांच कब होते, कौन महीना ले चालू हो जाते?
2: ये जांच है जनरली 20 हफ्ता के बाद हम चालू कर देथन। एक तो जहां प्रेगनेंसी रुकी तो एक बेसिक जांच हम पूरा सब कराथन, खून पेशाब के जांच सोनोग्राफी कराथन। जो रिस्क हावे उंखर में हमन एक सोनोग्राफी करथन जेमा पता चलते कि खून के बहाव कैसे हावे, तो वो खून के बहाव में कमी होते तो हम अल्लाह समझ आ जाते कि नहीं ये आगे प्रेगनेंसी में जाके प्री एक्लेम्पशिया बन जाही। तो ऐसे प्रेगनेंसी में फिर हमन वही है कि मैं बताया आप मतलब एक एस्पिरिन नाम के दवाई होते वो हम चालू करथन, कैल्शियम के दवाई देथन ताकि आगे बीपी भी ना बढ़े, खून के थक्का भी ना बढ़े, खून पतला बने रहे,
3: सब सामान्य रहे,
2: सब सामान्य रहे।
3: अच्छा डॉक्टर आकांक्षा जी, अब हम ये जानना चाहथन कि गर्भधारण करे के सही उम्र का होना चाहिए, काबर की आजकल महिला मन भी कामकाजी हो गए है, माने घर और बाहर दोनों जगह के काम ने संभाला थे, तो ये दोहरी जिम्मेदारी के चलते आजकल देरी में माँ बने के बारे में सोचते, तो ये बाढ़त अवस्था में रक्तचाप का गर्भधारण करे में बाधक हो सकत है?
2: जो अभी हमर जे हिसाब से हमर जनरेशन हावे चलत है हमर लाइफस्टाइल, ओ हिसाब से तो हमन ला 24 से 30 वर्ष के बीच में शादी करके बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। मैं एकलिए बोला तो जहाँ 30 वर्ष से ऊपर होते ता ये जरूर बात है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि रक्तचाप के बढ़ना, रक्तचाप के बढ़ने के साथ साथ और भी कई सारे जो कॉम्प्लिकेशन जितना भी कॉम्प्लिकेशन है सारे बढ़त जाते। अच्छा। उतने में ही एक आपन सुने हो हा डाउन सिंड्रोम करके, जेमा अनुवांशिक रूप से कमजोर बच्चा मन रहते, दिमाग के ग्रोथ नहीं हो पाए, जिसे अभी सितारे जमीन पर पिक्चर भी आ रही से हाँ, तब ये संभावना तब ज्यादा रहते जब महिला के जितना लेट उम्र मा जितना ज्यादा उम्र मा वो शादी बच्चा करते था हाँ, तो जितना ज्यादा अवस्था इतनी उम्र बढ़ते उतना ज्यादा प्रेगनेंसी है कॉम्प्लिकेशन हो के संभावना ज़्यादा होते। तो हमन के जो मीन एज हावे 24 से 30 वर्ष में आराम से शादी बच्चा पूरा प्लान कर लेना चाहिए।
3: अब ये बताते हो कि आजकल सामान्य जज की बहुत कम देखे सुने पर मिला थे, माने देखन तो अधिकांश ऑपरेशन ले ही जज की ज्यादा हुआ थे, तो एक का कारण है?
2: मेन कारण ये है कि देखा दो चीज मेन कारण है, एक तो अब हम महिलाओं मन में पहली के कंपेरिजन उतना हमारे सो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो दर्द सह सकन, एक सहन शक्ति काफ़ी कम हो गए हमन के ऊपर। दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लिकेशन अब बहुत बढ़ गए, कॉम्प्लिकेशन एकलिए बढ़ गए काहे कि हमार दिनचर्या ही खराब हो चुके हैं।
3: अच्छा, जीवन शैली हाँ, पूरा बिगाड़
2: जीवन शैली ना हमला शुद्ध खाना मिल पाए ना हमला इतना तनाव रहते काम के या ये सब चीज़ों के, तो ये दो मुख्य कारण है कि एकर कारण नॉर्मल नहीं हो पाए, लोग बाल में नहीं होते कि नहीं नहीं मैं अब एकर से ज़्यादा दर्द नहीं सह सकूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बताता हूँ महिला मन दर्द सहे पर रेडी ही नहीं हो है। अच्छा। कि आप मन कितना भी समझा ले है, कुछ ही जो महिला रहते जो एकदम दर्द सहे के रेडी होते बाकी नहीं रहे।
3: तो आपकी भाषा में सामान्य जज की ज़्यादा अच्छा है ऑपरेशन
2: हाँ, मोर लिए तो मैं हमेशा हर जगह यही बोलता हूँ और सब ले यही काउंसिल करता हूँ, अगर सब कुछ अच्छा है नॉर्मल हो सकत है जज की तो मैं उमन ला वही बोलता हूँ कि यही नॉर्मल ही करावा।
3: अच्छा डॉक्टर साहिबा, जावत जावत आप हमारे श्रोता मन ला का संदेश देना चाहो?
2: मैं श्रोता मन ला यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी है जिसे सब कोई समझते कि नॉर्मल है चलत फिरत चीज है, ऐसे नहीं है। प्रेगनेंसी बहुत बड़े अवस्था हावे जेमा माँ और बच्चा दो जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते एक फैमिली पर, तो माँ के भी प्रॉपर ध्यान रखना है ओकर काहे कि ओकर अंदर ही गर्भ में ही बच्चा पलत है, ता खान पान से लेकर एक इमोशनल सपोर्ट से लेकर मानसिक रूप से हर तरीके से एक सपोर्ट रखना एक पूरे फैमिली के जिम्मेदारी और एक महिला के भी जिम्मेदारी है कि ओकर पास एक बच्चा हवे तो अपन खान पान बहुत अच्छे से रखे, प्रॉपर गोली खावे, जांच कराए, टीका लगावे।
3: ये बहुत अच्छा बताओ डॉक्टर आकांक्षा जी, आप अपन कीमती बेरा निकाल के हमर स्टूडियो में आओ, श्रोता बहनी मल्ला अतिक अच्छा जानकारी दियो, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। बहनी हो, जानकारी कभू बिरथा नहीं जावे, कब कहाँ मेरे काम आ जाही कहे नहीं जा सके। अभी आप मन हा डॉक्टर के सुझाव में गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप के समस्या कारण और निवारण ये विषय में सुनत रहो भेंटवार्ता, जेकर बारे में जानकारी देवत रहीन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा साहू और ओकर संग गोट बात करत रहे मैं आप मन के संगवारी रोशनी राठौर है। फिर बहनी हो, सेहत के बारे में जानकारी रखना तो बने बात आवे, लेकिन जानकारी के साथ यदि गीत संगीत ला शामिल कर देबोन तब तो फिर कहना का। त आओ, अब मौसम के ध्यान रखत आप मन ला सुनवावत हन विदुषी ममता चंद्राकर के गाये मधुर गीतला।

बहनी हो, ये गीत ल सुने के बाद फिर हमन अपन क्रम कोती आगू बढ़त हन। क्रम है बहनी मन के चिट्ठी। ये ईमेल आए हवाए 2 मई के कार्यक्रम पर। बहनी मन है गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ ले। सिलोचनी मसिया, तुषारणी, शीला, पायल, गरिमा, दीपिका, रोहिणी, काजल, मेघा, वर्षा, झुनियाबाई मसिया, ये मन लिखे है 2 मई के कार्यक्रम ला ले के आए रहीन संध्या दीदी है। अपन गोठ में कहीन जिंदगी है नदिया कस होते, कभू शांत त कभू विकराल, छोटे छोटे जिनिस ला ले खुशियाँ तलाशो। यही दिन फरमाइशी लोकगीत सुने बर मिलिस। कार्यक्रम के सुग्घर प्रस्तुति पर संध्या दीदी ला अंतसले धन्यवाद। यही दिन भर पोस्ट कार्ड पठोए हवाए हमार ये श्रोता बहनी मन। अमरपुर पेंड्रा ले रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा आरोही और लबी श्रीवास्तव मन ये मन लिखे हवाए 2 मई के घर आंगन कार्यक्रम हमल बेहद पसंद आईस। साथ ही सुर सरिता में सुंदर सुंदर गीत मन ल मोह लीस। हालांकि हमार खत शामिल नहीं हुईस तो थोकुन निराशा लगीस। आगे हमार खत ल जरूर शामिल करूँ। संध्या जी के साथे साथ आकाशवाणी केंद्र ला बहुत अकन बधाई है। बहनी हूँ, हो सकत है समय की कमी के वजह से आप मन के पत्र शामिल नहीं हो पाईस। अब तो पत्र शामिल हो गए माने शिकायत दूर हो गए है ना भाई। पाती पठो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोस्ट कार्ड आए हवाए नर्मदा धाम सुरसुरी ले बिंदु यादव, सरस्वती यादव, कविता यादव, ममता यादव मन के। बहनी मन लिखे है मंगलवार 5 मई के घर आंगन कार्यक्रम ल सुनेन, जिला प्रस्तुत करीन रोशनी दीदी है, जेमे दिन दुखिया के सेवा करे के बारे में जानकारी सुनेन। श्रीमती सुधा वर्मा ले कहानी सुनेन अपन घर। वास्तव में कहानी हमला बड़ प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और उपयोगी लगीस। सही बात आए दूर के ढोल सुहावना होते, एकर बहकावों में हमला नहीं आना चाहिए। श्रीमती सुधा वर्मा और घर आंगन अनुभाग ल कोरी अकन बधाई। इही दिन भर हमार इहू बहनी मन ईमेल भेजे हवे। रानीगांव नगरी ले चित्ररेखा साहू, उर्वशी साहू, राधाबाई साहू, चंदा वीणा साहू और कुमारी सेजल साहू। देवरी भाटापारा ले हवे श्रीमती शगुन भाई रजक, आशा, सविता, सतरूपा, संतोषी और लक्ष्मी रजक। शारदा रेडियो श्रोता संघ ग्राम सासाहोली फुरसुता ले संतोषी, ज्योति, भारती, खेमलता सेन। ये ईमेल आए हवे गांव तेंदुभाटा मगरलोड, जिला धमतरी ले श्रीमती मोहेश्वरी निषाद, देविका, नूतन, लक्ष्मी निषाद मन के। बहनी मन है लिखे है 9 मई दिन शनिचर के और 12 मई के घर आंगन कार्यक्रम ला हमार मायारू दीदी करुणा वर्मा धर के लाए रही और चिड़ई चुरगुन बर दाना पानी देहे के और ओकर देख रेख संरक्षण करे के गोट करत कार्यक्रम शुरू करी। श्रीमती संध्या ताम्रकर और पर्यावरण संरक्षण विषय में डॉक्टर वीणा साहू ले वार्ता सुने पर मिली। एक ही कलाकार माया वैद्य के गाय छत्तीसगढ़ी गीत सुने बड़ मन भावन लगी। ये दोनों दिन के रोचक प्रस्तुति पर करुणा दीदी ला कोरी अकन धन्यवाद। यही दिन के कार्यक्रम हमार इहू बहनी मल बने लागी। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, रिंझा मरावी, तनु राही मरावी। सिमगा ले हावे भारती सेन, विजया सेन, ललिता सेन, रामेश्वरी सेन, मीरा सेन। बहनी हूँ, सबले पहले तो आप मन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन अपन कीमती बेरा निकाल के कार्यक्रम में सुनता और अपन प्रतिक्रिया बकायदा पोस्ट कार्ड और ई मेल के माध्यम ले लिख के पठो था। देखे जाए तो आज के समय पैसा तो सब करा हवे, फिर कमी है तो ओहे समय की कमी। बहनी हो, जन जन के वाणी है आकाशवाणी और ये साल आकाशवाणी है अपन 90वां स्थापना दिवस बड़ धूमधाम ले मनावत है। ये बड़ गर्व के बात आवे कि आज भी डिजिटल युग में आकाशवाणी अपन अलग पहचान बनाए हुए हैं और ये आप जैसे श्रोता के कारण संभव हो सकत है। आप मल्ला कार्यक्रम ले ऐसे जुड़े ही रहो, पुनः धन्यवाद आप मल्ला। बहनी हो, अब हमरो जाए के बेरा हुआ थे और काली ले नौतप्पा लग गए ही। गर्मी है अपन चरम सीमा में है, ऐसन समय में खुद के और परिवार के खास ख्याल रख के स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कार्यक्रम ले अपन संगवारी रोशनी राठौर ला दौ विदा। राम राम।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, नीरज के बोल हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है गैम्बलर।

ആകാശവാണി എറ്റ് 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य

0: जैसे इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य

0: पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि यह पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: काली टोपी लाल रुमाल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।

0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
1: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
2: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए।

0: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म बॉम्बे टू गोवा का गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।
1: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

0: हनुमान।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और अनिति के स्वर में गुलशन बाबरा का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब सम्पन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी।
5: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जा के 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलफा में के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज भीषण लू की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations, in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
6: Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability, he said, as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations share the responsibility towards a free and open Indo-Pacific. In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this, saying that Quad nations share strong values and have aligned interests. Secretary Rubio said the U.S. is deeply committed to the Quad partnership. India and the U.S. today signed a key bilateral framework aimed at securing the supply, mining and processing of critical minerals and rare earth elements. The landmark agreement was exchanged between External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio in Delhi. The External Affairs Minister said the framework will strengthen resilient and diversified supply chains.
7: This particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. So I think it's a very important initiative. I'm very glad, Secretary, that during your visit we could finalize it and sign it.
6: The Khadi and Village Industries Commission, KVIC, has achieved a historic milestone in the financial year 2025-26, recording a turnover of 1,87,000 crore rupees. Addressing a press conference in New Delhi today, KVIC Chairman Manoj Kumar said this milestone has been achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the hard work of millions of rural artisans. He said KVIC is providing employment to more than 2 crore people, in which 80% are women. Mr. Kumar highlighted that 12 years ago, the turnover of the khadi industry stood at only 30 to 32,000 crore rupees. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, today said the first World Yoga Sun Championship to be held in Ahmedabad marks an important step in positioning India's traditional wellness practice as a global sporting discipline. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said Yoga Sun reflects India's soft power and has emerged as a medium for promoting physical fitness, mental well-being and healthy living across the world. The playoffs in IPL cricket are beginning today, with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in

0: नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर, जहाँ ये समय है आकाशवाणी के संग यादों के रंग का। आप सब तो जानते हैं कि आपका हमारा आकाशवाणी इस वर्ष 90 स्वर्णिम साल पूरे कर रहा है। इसी उपलक्ष में हम अपनी श्रृंखला में विशिष्ट अतिथियों के साथ बातचीत लेकर आते हैं, उनके साथ उनके जो अनुभव हैं वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में साझा करते हैं और ये दिलचस्प बातें हम आप तक लाइव पहुंचाते हैं इस समय पर, जैसे कि आज हम आपके साथ करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। आप जाने माने पत्रकार भी हैं और शिक्षा संस्कृति राष्ट्रीयता के अध्येता के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार के प्रमुख संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के आप लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। एक यशस्वी मीडिया शिक्षक के रूप में भी आप जाने जाते हैं। सर, आपके लिए बताने को बहुत कुछ है, मैं कुछ सम्मानों का उल्लेख भी करना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ एफएम गोल्ड के स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: माननीय राष्ट्रपति द्वारा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान दिया जा चुका है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का माणिकचंद वाजपेयी पत्रकारिता सम्मान और ऐसे ही विभिन्न सम्मानों से प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा अलंकृत हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप अपनी यादों के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप लगभग 4 दशकों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता कि आप अपने अनुभव तो हमारे साथ साझा करेंगे ही, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो बहुत सारी बातें आपसे जानने को होंगी। सर, आपका एक बार और मैं यहाँ स्वागत करती हूँ आकाशवाणी के संग यादों के रंग में।
1: धन्यवाद।
0: शुरुआत सर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि आकाशवाणी के साथ आप कब और कैसे जुड़े?
1: अपराजिता जी, मैं तो गांव में रहता था, बचपन मेरा वहीं बीता, मथुरा के पास पटलोनी गांव है मेरा। तो मुझे याद है मैं 9-10 साल का रहा हूँगा
0: जी,
1: तो जो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम आता है
0: जी
1: आकाशवाणी पर,
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय था। और उसके समय पर गांव के बहुत सारे लोग, तब ज़्यादा बहुत ट्रांजिस्टर नहीं होते थे, तो हमारे पड़ोस में ही एक दुकानदार थे, उनके यहाँ एक ट्रांजिस्टर रहता था, तो वहाँ सब इकट्ठे होते थे। और ब्रजमाधुरी में विशेषकर जो राजा नल की कथा ढोला के रूप में आती है, सारंगी ढोलक और मजीरे के साथ, बड़ा अद्भुत आनंद है वो ब्रज के लोगों के लिए।
0: क्या बात।
1: तो उस ढोला को सुनने के लिए हम सारे लोग ब्रजमाधुरी की प्रतीक्षा करते थे। और दूसरे लोक कथाएं भी ब्रज की आती थी उसमें, वो सब भी सुनते थे, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण राजा नल का ढोला होता था।
0: अच्छा।
1: तो 9-10 वर्ष की आयु से मैं आकाशवाणी से परिचित हुआ और ये जुड़ाव फिर आगे बढ़ता चला गया। जब मैं

0: पढ़ने लगा या पत्रकारिता में आया
1: जी,
0: तो सीधा संबंध मेरा लगभग 1983 में ग्वालियर में आकाशवाणी के साथ जुड़कर कुछ काम करने का आया। वहाँ श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी
1: जी जी
0: उस समय पैक्स हुआ करते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव,
1: अच्छा,
0: ग्वालियर में
1: जी,
0: और वो भी बहुत अच्छे साहित्यिक हैं,
1: बिल्कुल,
0: और मेरी भी रुचि साहित्य में थी, तो उनसे परिचय हो गया और फिर उनके माध्यम से आकाशवाणी के लिए कई वार्ताएं मैंने प्रस्तुत भी की, लिखी भी
1: जी।
0: और बाद में वो क्रम जुड़ता चला गया, फिर दिल्ली में आया तो यहाँ भी मैंने आकाशवाणी के साथ बहुत काम किया, वार्ताएं बहुत सारी लिखी, कई संगोष्ठियों में मैं शामिल हुआ
1: जी।
0: और विशेषकर वीरेंद्र गोहिल
1: जी जी
0: और सोमदत्त शर्मा जो बाद में डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं
1: जी,
0: तो फीचर का काम ये देखते थे, तो मुझे स्वतंत्र पत्रकार के रूप में और फीचर का काम मिलता रहा
1: जी।
0: और मैंने दो तीन तो बहुत अच्छे फीचर बनाए। आज तो देश में आप जानती हैं कि मुक्त विश्वविद्यालयों का बहुत चलन हो गया है
1: जी सर जी,
0: लेकिन उस समय देश में केवल 5 मुक्त विश्वविद्यालय थे, ओपन यूनिवर्सिटी,
1: अच्छा,
0: उस पर एक फीचर बनाने के लिए गोहिल जी ने मुझे दिया
1: जी।
0: सोमदत्त जी का वो एक तरह से ब्रेन चाइल्ड था,
1: अच्छा,
0: विषय
1: जी,
0: तो मैं फिर कोटा गया, वहाँ ओपन यूनिवर्सिटी थी, हैदराबाद गया, नासिक गया और एक दिल्ली में थी, तो ये सब एक बहुत बढ़िया फीचर हमने उस पर दिया। दूसरा एक बड़ा रोचक विषय उस समय फीचर का था
1: जी,
0: दिल्ली में आज भी जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बड़ा सिरदर्द हैं और हर बार कहा जाता है कि हम इनको खत्म कर देंगे,
1: बिल्कुल,
0: तो उस समय इस पर एक फीचर बनाने का कार्यक्रम बना कि जहां जहां कूड़े के ढेर हैं उसके कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं, और एक उसमें से बड़ा रोचक तथ्य सामने आया कि एक स्थान पर मैं गया, उधर उत्तम नगर के आसपास कोई क्षेत्र था
1: जी जी,
0: वहां बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था और पास में झुकी झोंपड़ियों में लोग रहते थे, तो मैंने देखा कि कूड़े के ढेर में से एक पतला सा पाइप डाल के और ईंटों का चूल्हा बना के,
1: अच्छा,
0: उस पर खाना बन रहा था,
1: क्या बात,
0: और एक भगोनिया में शायद दाल या सब्जी कुछ बन रही थी, रोटी सिगरेट, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था, एक दिन वहां बीड़े पीते पीते जो माचिस की तीली, अच्छा, मैंने डालती तो उसमें आग लग गई, तो समझ में आया कि कुछ है यहाँ, फिर हम लोगों ने खोज खबर ली तो उसमें से कोई गैस, मिथेन गैस या कुछ निकलती होगी कूड़े में से, उसमें से फिर उन लोगों ने उसका उपयोग शुरू कर दिया,
1: क्या बात है, तो आविष्कारक बन गए।
0: इस पर एक बहुत बढ़िया फीचर हम लोगों ने बनाया, एक वेस्ट प्लास्टिक पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया फीचर बनाया
1: जी।
0: इधर बहुत बड़ी पश्चिम बिहार के आगे प्लास्टिक खरीदी की मंडी टाइप है
1: जी,
0: उसमें मैं गया और वहां झगड़ा भी हो गया, कई लोगों को लगा कि ये हमारे लिए कोई समस्या खड़ी करेगा व्यक्ति,
1: अच्छा,
0: तो मुझे मारने भी दौड़े वो लोग और बाद में मैंने उनको समझाया कि देखो ये तुम्हारे लिए समस्या नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इसका कोई समाधान निकलेगा, हो सकता है इसको कार्यक्रम को सुनकर सरकार कोई तुम लोगों के भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाए, ऐसे कई फीचर मैंने उसमें बनाए, बहुत आनंद आया।
1: बिल्कुल सर, ऐसी ही रोचक बातें आपके साथ आज हम यहाँ करते रहेंगे और ये बातों का सिलसिला जो है आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आप तक पहुंच रहा है FM गोल्ड के माध्यम से। फिलहाल हम सर की ही पसंद का एक बहुत ही सुंदर गाना सुजाता फिल्म से सुन रहे हैं और जल्दी से गाना सुनकर वापस आएंगे और ऐसी ही रोचक बातें यहाँ हम करते रहेंगे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी के संग यादों के रंग, जहां हम आकाशवाणी के 90 साल जो पूरे हो रहे हैं उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी उपलक्ष में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। जाने माने शिक्षाविद हैं आप और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और बहुत सारे जो उपलब्धियां हैं वो आपके नाम के साथ जुड़ी हैं। सर, हमें अपनी यादों के बारे में, आकाशवाणी के साथ लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो कोई ऐसा वाक्या जो आपको याद आता हो, या फिर कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसे सुनने के लिए आप आकाशवाणी के बिना, या ये यूं कहें कि रेडियो के बिना नहीं रह पाते थे और खींचे चले आते थे, या फिर आप कहीं बिजी होते थे, आपको लगता था कि अब समय हो गया है, अब चलना चाहिए, ये सुनना है जाकर?
1: आकाशवाणी के साथ जुड़ाव तो अपराजिता जी मेरा, जैसा मैंने बताया, बचपन से रहा
0: जी।
1: लेकिन उस समय जीवन बहुत संयमित होता था, लोगों पास उतने साधन नहीं थे,
0: बिल्कुल
1: ट्रांजिस्टर भी नहीं था
0: जी।
1: मुझे याद है गांव में जो शादियां होती थी और किसी को ससुराल से ट्रांजिस्टर मिल गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी।
0: क्या बात है।
1: तो फिर उसके ट्रांजिस्टर को सारे लोग घेर लेते थे
0: जी जी।
1: और
0: जी।
1: मैं जब थोड़ा सा कुछ करने धरने लायक हुआ तो एक 500 रुपए का छोटा सा ट्रांजिस्टर मैंने लिया।
0: अच्छा।
1: और वो मुख्य रूप से इसलिए लिया कि मैं प्रतिदिन आकाशवाणी के साथ उससे जुड़ा रह सकता हूँ।
0: क्या बात है।
1: और कई कार्यक्रम मैंने स्वयं लिखे, उनमें सहभागी बना, लेकिन कई कार्यक्रम ऐसे आते थे जिनको सुनने से जीवन की सजगता बढ़ती थी।
0: बिल्कुल सही।
1: और मैं बाद में पत्रकारिता में आया तो एक गुण मैंने इन कार्यक्रमों के माध्यम से सीखा कि चूक की कोई गुंजाइश नहीं है
0: जी।
1: रेडियो में चूक को सुधारने का कोई साधन नहीं है। पत्रकारिता में तो रिपोर्ट लिखते समय सुधारा जा सकता है
0: जी, जी।
1: तो वो एक सजगता मेरे अंदर हमेशा बनी रही, और आज भी मैं एक बार जो लिख देता हूँ, लोग कहते हैं कि आप दो दो तीन तीन पेज का भी कुछ लिखते हो तो उसमें एक भी कट नहीं लगता है।
0: क्या बात है।
1: ये गुण मैंने आकाशवाणी से सीखा।
0: बहुत खूब।
1: और अभी जैसे ब्रजमाधुरी की मैंने बात कही
0: जी,
1: तो अभी पिछले वर्ष भी मैंने एक कार्यक्रम यहाँ ब्रजमाधुरी के लिए किया था, और ब्रज मेरी आत्मा में समाया हुआ है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो उस कार्यक्रम में था कि ब्रज के लोक जीवन में ग्रीष्म ऋतु के में बचाव के उपाय।
0: अच्छा।
1: इस पर बड़ा रोचक और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ,
0: तो इसकी तो हमें आज भी जरूरत है।
1: हाँ, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ,
0: बचाव के उपाय।
1: और बाद में एफएम गोल्ड ने एक कार्यक्रम शुरू किया था फोन पर, वो पसंद
0: जी जी जी
1: पूछी जाती थी, लोग फोन करते थे,
0: हेलो एफएम गोल्ड की बात कर रहे हैं,
1: इस तरह कुछ था। तो मैंने भी उसमें एक दो बार बहुत प्रयास करके, क्योंकि उसमें फोन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता
0: सही
1: है।
0: सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल नहीं लगता।
1: तो एक गाना मैं बहुत सुनता था
0: जी।
1: और बार बार, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा है फिल्म का गाना, लेकिन बड़ा आध्यात्मिक गाना है, वो जीवन का दर्शन है उस पूरे गाने में
0: जी।
1: और वास्तव में देखें आप, मेरे मन पर इस बात का बहुत असर पड़ा कि आकाशवाणी ने इस देश की कला, संस्कृति और साहित्य, इसको बहुत समृद्ध किया है
0: जी।
1: और अब तो कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, एफएम के बहुत सारे चैनल चलते हैं, लेकिन आज जो ये एफएम गोल्ड है, ये उस अपने पूरे क्रियाकलाप में, विशेषकर गानों में, उस भाव को बचाकर रखता है कि उसमें अध्यात्म भी हो, संस्कृति भी हो, साहित्य भी हो, इसलिए ये ज्यादा रुचिकर है और दूसरे चैनलों के मुकाबले इसकी एक अलग प्रतिष्ठा है और एक अलग श्रोता समूह इसका है। तो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे,
0: क्या बात है।
1: ये फिल्म का गाना भी है लेकिन इसमें बड़ी आध्यात्मिकता है। सीमा फिल्म आती थी
0: जी
1: पहले, बाद में मैंने देखी वो नेट पर, तो वो अद्भुत फिल्म है, बलराज साहनी उसमें है, और बहुत अद्भुत वो गीत है, वो पूरे जीवन दर्शन को व्यक्त करता है
0: जी। तो चलिए सर की पसंद का ही गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना दिल ही तो है फिल्म से मन्ना डे की आवाज में। फिलहाल मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी और जल्द वापस आएंगे, बातचीत जारी रखेंगे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ आकाशवाणी के संग यादों के रंग में।

0: तो आकाशवाणी के संग यादों के रंग में बहुत सारी यादें हम प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा की यहाँ सुन रहे हैं। वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं अपने अनुभव। और जब हम सब गीत सुन रहे थे तो मेरी उनके साथ बातचीत यहाँ स्टूडियो में चल रही थी और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई बड़ी ही दिलचस्प, जो मैं चाहती हूँ आपके साथ भी वो ज़रूर साझा करें। महापुरुषों के भाषण जो हैं सर, आपने बताया कि वो आकाशवाणी के आर्काइव्स में जो हैं वो जो हैं रखे जाते हैं संजो के, तो इनके ऊपर आप कह रहे हैं कि जब आप नेशनल बुक ट्रस्ट में थे तो बड़ा काम हुआ उन पर और वो वर्ल्ड बुक फेयर में भी उन्हें रखा गया, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: देखिए, आकाशवाणी का भारत की विचार संपदा को बचाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है
0: जी।
1: और यहाँ उस दौर में जब देश स्वाधीन हुआ और उसके बाद देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की, तो बहुत सारे जो प्रमुख लोग हुए, महापुरुष हुए, सरदार पटेल और दूसरे लोग, तो उन सब ने जो भाषण दिए
0: जी,
1: शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ऐसे अनेक प्रमुख लोगों के साक्षात्कार यहाँ आर्काइव में सुरक्षित हैं
0: जी।
1: लेकिन वो नई पीढ़ी तक पहुँचें
0: जी,
1: ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो वहाँ बंद पड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ उस समय जब मैं नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था तो हमारा काम ही पुस्तकों का प्रकाशन था, तो मेरा ध्यान इस बात पर गया
0: जी।
1: तो यहाँ सोमदर्श शर्मा जी थे, उनके साथ मैंने इस विषय की चर्चा की। तो फिर शहरयार साहब जो उस समय महानिदेशक थे
0: जी,
1: उनके पास हम लोग गए, ये विषय उनके सामने रखा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये तो भविष्य के लिए एक स्थायी काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और NBT अगर इस काम को अपने हाथ में लेता है तो हमको इससे बहुत बड़ा संबल मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि NBT पुस्तकों का प्रकाशन करता है
0: जी।
1: तो हम लोगों ने शहरयार साहब के साथ और NBT और आकाशवाणी इसका एक MOU
0: जी जी
1: तैयार कराया, अनुबंध किया, और उसमें साहित्य संपदा के नाम से
0: जी
1: हम उन ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे। तो शुरुआती दौर में हमने ऐसे 4 खंडों का प्रकाशन किया, और उस समय जो विश्व पुस्तक मेला NBT लगाता है प्रति मैदान में, उसमें हमने उनका बहुत भव्य लोकार्पण किया और बहुत सारे साहित्यकार और लेखक, पत्रकार, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उसमें आमंत्रित किए
0: जी।
1: और आकाशवाणी से भी शहरयार साहब गए, सोमदत्त जी आए और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी आए। तो वो एक अद्भुत काम भविष्य के लिए, विशेषकर जो नई पीढ़ी है उसको भारत की वैचारिक विरासत से साक्षात्कार हो, परिचय हो, इसके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई ये।
0: बिल्कुल।
1: और बाद में तो मैं नेशनल बुक ट्रस्ट से अलग हो गया
0: जी।
1: तो मेरी जानकारी में नहीं बाद में कितना काम उस पर हुआ, लेकिन उस समय हमने पहले प्रयास में 4 खंडों का प्रकाशन किया और लोगों ने बड़ी प्रशंसा की उसकी। ये एक बहुत अच्छा काम, क्योंकि आकाशवाणी ने जो काम किया है उसको स्थायित्व इससे मिलता है। तो ये मुझे भी मन में बहुत संतोष है कि एक काम करने का अवसर हमें आकाशवाणी के लिए, और आकाशवाणी ने जो विरासत सहेजी है उसको लोगों के सामने लाने का अवसर हमको मिला।
0: बहुत खूब। और सर, इस यात्रा में जो आप यात्रा हमारे साथ आज यहाँ साझा कर रहे हैं, इसमें सुरीले गीतों का भी साथ है जो आपने प्लेलिस्ट हमारे साथ साझा की है। कुछ गाने सर की पसंद के आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसी कड़ी में अगला गाना अनामिका फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जी, आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ। आप लंबे समय से आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं और जाने माने शिक्षाविद भी हैं और भारत सरकार के प्रमुख संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ आप लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे। आपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ अब तक यहाँ साझा किए हैं और बहुत सी बातें हैं सर के पास हमारे साथ बांटने के लिए। तो सर, आप कुलपति भी रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बड़ा जिम्मेदारी वाला ये काम होता है और भारी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधों पर, इसके साथ भी क्या आकाशवाणी को आप निरंतर सुनते रहे, अपने दिल के करीब आपने पाया?
5: बिल्कुल, और जैसे कहते हैं ना कि आदमी का पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता
4: जी।
5: तो वास्तव में बचपन की जो बड़ी सुकोमल भावनाएं होती हैं, और मैं तो गांव में ही जन्मा, वहीं बड़ा हुआ, तो बहुत अनगढ़ जीवन
4: जी।
5: गांव का रहता है, लेकिन उसमें भी जो मानवीय संवेदनाएं हैं
4: जी,
5: मेरी मानवीय संवेदनाओं को जगाया आकाशवाणी ने
4: जी।
5: राजा नल के ढोला के माध्यम से
4: जी, जी,
5: राजा नल बड़े तेजस्वी राजा हुए, धर्मनिष्ठ राजा थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर जो बड़े बड़े पक्षी थे वो भी उनके रथ के ऊपर छांव करते हुए चलते थे।
4: क्या बात,
5: करत पखेरु छांह,
4: क्या बात।
5: ऐसा तो मानवीय संवेदनाओं को आकाशवाणी ने बहुत समृद्ध किया, और उस नाते अभी भी मेरे पास एक बहुत छोटा सा ट्रांजिस्टर है और
4: अच्छा।
5: मैं बराबर आकाशवाणी के और FM को तो मैं ज़्यादातर सुनता हूँ
4: जी, जी।
5: FM गोल्ड को
4: जी।
5: लेकिन जो दूसरे शॉर्ट वेव और उसके भी मीडियम वेव के
4: बिल्कुल
5: स्टेशन है
4: जी।
5: उनको भी बीच में सुनता हूँ, समाचार भी सुनता हूँ। तो मेरे यहाँ कई लोग आते हैं और वो देखते हैं तो बोले आप आज भी ट्रांजिस्टर सुनते हैं तो उनको भले ही आश्चर्य लगता है
4: जी, जी।
5: लेकिन मेरे जीवन में गहरा जुड़ाव रहा है, और वहाँ भी रायपुर में मैं कुलपति रहा, तो आपने सही कहा, बहुत सारी प्रशासनिक शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ कुलपति के ऊपर होती हैं विश्वविद्यालय की, उन सब में व्यस्तता रहती है, लेकिन क्योंकि हमारा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है तो वहाँ हमने एक जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी वहाँ है, और उसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्यक्रम कराते थे।
4: बहुत बढ़िया।
5: और आकाशवाणी का जो मेरा अनुभव था
4: जी,
5: उस नाते हमने उसमें लोक जीवन को और लोक भाषा को जोड़ने का प्रयास किया।
4: अच्छा।
5: और अपने विद्यार्थियों को भी मैं बराबर प्रेरित करता था कि अपनी बुद्धिमत्ता को जन सामान्य के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम रेडियो है।
4: बहुत
5: तो वहाँ भी घर में भी मैं बराबर जब भी समय मिलता था तो आकाशवाणी की चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं
4: जी,
5: और मेरे ऊपर गहरा प्रभाव उन वार्ताओं का है
4: जी।
5: तो उस नाते भी मैं हमेशा आकाशवाणी के संपर्क में रहा हूँ
4: जी,
5: और जब दिल्ली में था तब तो मेरा बहुत जुड़ाव बहुत सारी संगोष्ठियों में, बहुत सारी वार्ताओं में, बहुत सारे दूसरे कार्यक्रमों में बराबर मेरा जुड़ाव रहता था, लेकिन बाहर रहने पर उतना जुड़ाव नहीं रहा यहाँ पर। मैं जब भी दिल्ली आता था किसी काम से या अवकाश में
4: जी, जी।
5: तो आकाशवाणी के बहुत सारे लोगों से मेरा बड़ा निकट संबंध है, बहुत आत्मीय संबंध है वर्षों का।
4: बिल्कुल।
5: तो कहीं ना कहीं वो याद करते थे कि आप जब भी दिल्ली आएंगे तो हम अमुक कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करेंगे। तो ऐसे कई कार्यक्रमों में दिल्ली से बाहर रहने पर भी मेरा बराबर जुड़ाव रहा।
4: बिल्कुल।
5: और एक तरह से मेरे जीवन का अहम हिस्सा आकाशवाणी है।
4: क्या बात है। एक और सर की ही पसंद का गाना, खूबसूरत ये गीत, मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मुकेश साहब की आवाज में, पूरब और पश्चिम फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी, एक खूबसूरत सफर हमारा आज यहाँ चल रहा है आकाशवाणी के संग यादों के रंग में, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ। कैसे यहाँ लगभग 45 मिनट हमारे गुजर गए हमें पता नहीं चला, और मुझे लगता है ये आखिरी पड़ाव है सर इस प्रोग्राम का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्रांतिकारियों पर आपने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं आकाशवाणी के लिए, उसके बारे में हमारी जो श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें कुछ बताएं।
2: देखिए, आकाशवाणी के साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहकर जो कुछ भी मैंने काम में सहभाग किया उसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है क्रांतिकारियों पर बहुत सारी वार्ताएं लिखकर यहाँ मैंने प्रसारित कराई हैं, और क्रांतिकारियों पर मेरा बचपन से जुड़ाव होने के कारण और मैंने बहुत पढ़ा और बहुत सारी पुस्तकें अभी भी मेरे घर में, शचीनंद सैनलाल की बंदी जीवन जो क्रांतिकारियों की गीता मानी जाती है
1: जी।
2: वो अब लगभग दुर्लभ पुस्तक है लेकिन वो भी मेरे पास है। तो विशेषकर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और सोमदत्त जी, जब भी कोई आकाशवाणी में किसी क्रांतिकारी की जयंती या पुण्यतिथि आती थी तो उसके लिए एक वार्ता प्रसारित करने की बात आती थी तो मुझे याद किया जाता था, भले ही मैं दिल्ली में नहीं
1: हूँ, बात है,
2: मैं कहीं दूर दूर भी रहा।
1: जी जी।
2: इवन जब वाजपेयी जी बीकानेर या अल्मोड़ा में भी रहे आकाशवाणी केंद्रों में, और वहाँ भी इनको कुछ प्रसारित करना होता था तो मुझे वो बताते थे कि इस पर हमको कार्यक्रम देना है, आप कुछ लिख के भेजिए। और कई बार तो ऐसा हो जाता, जैसे यहीं आकाशवाणी दिल्ली में ही जब वो थे तो राजगुरु जो महान क्रांतिकारी हुए हैं और शहीद आजम भगत सिंह के मित्र हुए हैं,
1: बिल्कुल,
2: उनके साथ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई, तो राजगुरु की जयंती पर कुछ कार्यक्रम प्रसारित होना था पर कहीं इन्हें सामग्री नहीं मिल रही थी। तो मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि परसों ही ये प्रकाशित होना है, आप कुछ लिखिए इस पर। संयोग से मेरे पास भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर मैंने अगले दिन पूरा दिन प्रयास करके उनके संबंध में जानकारी उठाई और पूरा राइटअप लिख के दिया। तो क्रांतिकारियों का जो जीवन है वो केवल स्वाधीनता आंदोलन में बलिदान की महान परंपरा भर नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र का किस प्रकार निर्माण किया जाता है इसकी एक बहुत बड़ी पहचान हमारे भारत के क्रांतिकारी रहे हैं। और विशेषकर आप देखिए, जब आज के समय में हर नौजवान अपने कैरियर की चिंता करता है तो चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, अशफाक उल्ला खां रहे हों, भगत सिंह रहे हों, इन सबने तो 25 और 30 वर्ष की अवस्था के बीच में
1: बहुत
2: पूरा जीवन बलिदान कर दिया और कभी ये नहीं सोचा कि हमारा भविष्य क्या होगा।
1: बिल्कुल,
2: देश का भविष्य संवरेगा तो हमारा भविष्य रहेगा, देशवासियों का भविष्य रहेगा। तो नौजवानों के सामने एक आदर्श है क्रांतिकारियों का जीवन, और मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं क्रांतिकारियों के जीवन का अध्ययन करके और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए काम कर सका। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग भगत सिंह के संबंध में एक राइटअप में मैंने लिखा था। भगत सिंह ने एक जगह कहा है, हमारी याद बनाए रखना।
1: जी,
2: बहुत मार्मिक प्रसंग।
1: जी जी।
2: तो ये जो क्रांतिकारियों का जीवन है, हमारे विद्यार्थियों के सामने, नौजवानों के सामने, और एक सुखद स्मृति और प्रेरणा के रूप में हमेशा रहे
1: जी,
2: ये बहुत आवश्यक है, और आकाशवाणी ने इसमें बहुत योगदान दिया है। और मुझे याद है जब जापान ने अपने परमाणु विध्वंस के 50 वर्ष पूर्ण किए जिसमें उसको बहुत विनाश झेलना पड़ा, तो उन्होंने एक किताब निकाली थी इनक्रेडिबल जापान।
1: अच्छा।
2: और उसमें जो संपादकीय है उसमें लिखा हुआ है कि जापान अगर विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में आज गिना जाता है तो केवल इसीलिए नहीं कि उसने आर्थिक तरक्की कर ली है, बल्कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो देश के प्रति किस प्रकार का समर्पण रखते हैं उसके कारण जापान दुनिया में आगे बढ़ सका। तो हमारे देश का निर्माण करने में, स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने हुतात्माओं ने जीवन झोंक दिया, उनकी स्मृतियां हमारे युवाओं की प्रेरणा बने, वो उनसे समर्पण का भाव लेकर देश और समाज के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है ये आकाशवाणी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के भविष्य निर्माण में रहेगी। जैसे विकसित भारत 2047 का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, तो उसके निर्माण में भी इसकी बड़ी भूमिका रहेगी।
1: जी, हमारा सौभाग्य है सर कि आज आप FM गोल्ड के स्टूडियो में यहाँ आए और आपने अपने इतने सारे अनुभव हमारे साथ यहाँ साझा किए आकाशवाणी के संग यादों के रंग के अंतर्गत। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अब से कुछ ही देर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्पिक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने उन्हें बधाई दी। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए श्री सामंतराय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण से वे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि वे उड़ीसा में पार्टी को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से काम करेंगे। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबा हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में ये स्थिति कल तक बनी रहने की आशंका है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज भीषण लू की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi, has invited applications for one position of Project Technical Support 3 in the Division of Genetics under an ICMR immediate grant scheme. The position carries monthly emoluments of 28,000 plus HRA and is initially for 1 year, extendable up to 2 years based on performance and project continuation. Interested candidates should apply before 30th May 2026. Detailed information is available on the official website, that is at www.iari.res.in. Division of Plant Pathology has announced a walk-in interview for the contractual post of Project Assistant under a DBT-funded research project titled Leveraging Genetic Resources from Accelerated Genetic Improvement of Linseed Using Comprehensive Genomics and Phenotyping Approaches. The position offers a remuneration of Rs 20,000 plus 27 HRA per month. Candidates with BSc graduation in biological sciences, agriculture or related subjects are eligible to apply. Interested applicants should submit their applications with supporting documents before the interview schedule on 29th May 2026. Complete details are available on the Institute's website, that is at www.iari.res.in. The Engineering Department Chandigarh Administration has invited applications on deputation basis for the post of Superintending Engineer Civil. The vacancy is open to officers working in central, state governments, PSUs, autonomous bodies and statutory organizations. The post carries level 13 pay scale. Eligible officers must send their applications through proper channel along with APARS, vigilance clearance and supporting documents. The last date for submission is 16th June 2026. Detailed eligibility conditions and application format is available on the official website. Kindly visit www.chandigarh.gov.in. Regional Institute of Medical Sciences and Autonomous Institute under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications for two posts of administrative officer on deputation basis in pay level 8 as per the 7th CPC. Eligible officers from central or state governments, union territories, autonomous organizations, universities, statutory bodies, public sector undertakings or recognized research institutions may apply. The maximum age limit is 56 years as on the closing date of the application. The application must reach through proper channel to the director, RIMS Imphal, or be submitted via email by 31st May 2026. Complete details and the prescribed format and the updates available on the Institute's website. Do refer to www.rims.edu.in. The Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi in 1920, has invited online applications for the post of a finance officer on a 5-year tenure basis. The post carries pay level 14. The university is seeking experienced and institution-oriented professionals with strong administrative and financial management expertise. The printed application form must reach the registrar, Gujarat Vidyapeeth, Ashram Marg, Ahmedabad, by 29th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application guidelines available on the university's website. Do refer to www.gujaratvidyapeeth.org.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की योजना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर पद संख्या 1, डॉक्टरल अध्येता पद संख्या 2। योग्यता और अन्य शर्तों तथा वेतन आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट jnujaipur.ac.in। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निदेशक के निजी सचिव, मानव संसाधन अधिकारी, शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी, सहायक सिस्टम विश्लेषक सह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव संसाधन एवं प्रशासन, लेखा सहायक और सहायक मानव संसाधन। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद नाम है अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक विद्युत अभियंता और पुस्तकालय सहायक। इन सभी पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदन 15 मई 2026 से खुल चुका है और अंतिम तिथि रहेगी 8 जून 2026। योग्यता और अनुभव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है www.igidr.ac.in/careers। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में जूनियर कंसल्टेंट NHSL में 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। आयु सीमा 55 वर्ष, वेतन रहेगा 40,000 से 70,000 रुपए मासिक के बीच। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण तथा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org और www.devnetjobsindia.org। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2026। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक अनुसूचित ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता में है। ये विश्व का एकल सबसे बड़ा कोयला उत्पादक संस्थान है, जिसमें लगभग 2,12,000 कर्मी कार्यरत हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 75% उत्पादित होता है। कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले वर्षों में एकल उत्पाद से बहुआयामी व्यवसाय के क्षेत्र में रूपांतरित हो रहा है, और इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, जो समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है, 9 परिक्षेत्रों अर्थात सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ENT, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हिंदी एवं कंपनी सचिव पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को तलाश कर रहा है। ये कोल इंडिया लिमिटेड के रूपांतरण की यात्रा में योगदान करने का अनोखा मौका है, जिसके साथ साथ आप विश्व के ख्याति प्राप्त संस्थान में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों, ऑनलाइन आवेदन और पात्रता मानदंड, रिक्तियों की संख्या, ऊपरी आयु की सीमा, आवेदन शुल्क, आरक्षण एवं छूट, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.kolindia.in। वेबसाइट पर जाकर आप करियर विद CIL लिंक के तहत प्रकाशित विज्ञापन को विस्तार से देख सकते हैं। यदि आपके मन में अन्य कोई जिज्ञासा है तो लिखिए इस पते पर mtrecruitment.cil@kolindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार,

0: तो स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती। दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा में आज आपके साथ हूं मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
1: हेलो मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इन टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुनीश। एंड वेल लिसनर्स, ही रीडिफाइंड द वेस्टर्न जॉनरा एंड बिकेम द फेस ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। Secondly, he was the embodiment of American ideals. He evolved from a movie star into a cultural symbol of rugged individualism, self-reliance and courage. And lastly, he had unrivaled on-screen longevity, appearing in over 170 movies. He successfully commanded the attention of audiences for 5 decades. Yes, he's none other than John Wayne, the strong, taciturn cowboy or soldier who in many ways personified the idealized American values. We will talk about him later in our program, but first we begin with the news headlines at this hour. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets.
0: भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches vibrant villages program 2 in border regions of the state.
0: Saudi Arab mein lakhon zayreen aaj haj ki mukhya rasm ada kar rahe hain.
1: And in IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharmashala this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Vibrant Villages Program 2.

0: Yes, today we are talking about a very important initiative by the Government of India, the Vibrant Villages Programme. Union Home Minister Amit Shah would have visited the Sanchu border outpost along the India-Pakistan international border in Rajasthan. He interacted with the Border Security Force personnel deployed in the area and lauded their dedication in safeguarding the nation's borders.
1: अपनी यात्रा के दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 समर्पित किया। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों में शिक्षा, सड़कों, बिजली और रोजगार के अवसरों समेत बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के गांवों को शामिल किया गया है।
0: Chief Minister Bhajan Lal Sharma and Union Law Minister Arjun Ram Meghwal were also present on the occasion. Senior officials including Union Home Secretary Govind Mohan, BSF Director General Praveen Kumar, Intelligence Bureau Chief Tapan Deka and Rajasthan Chief Secretary V. Srinivas attended the program.
1: Kendra Sarkar ne 2 April 2025 ko Vibrant Villages Program 2, VVP 2 ko ek kendriya kshetra yojana ke roop mein manzoori di. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कुल 6,839 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य उन चुनिंदा रणनीतिक गांवों का व्यापक विकास करना है जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉक्स में स्थित हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हालांकि उत्तरी सीमा क्षेत्र को इस योजना से बाहर रखा गया है क्योंकि वो पहले से ही वीवीपी 1 के तहत कवर किया जा चुका है।
0: That sounds interesting. So what exactly is Vibrant Villages Program all about?
1: Vibrant Villages Program दरअसल केंद्र प्रायोजित एक ऐसी योजना है जिसका मकसद चुनिंदा गांवों, खासतौर से दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों का समग्र विकास करना है।
0: So the focus is not just on infrastructure, but on overall village development.
1: बिल्कुल, इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और फिर कुछ ऐसे अवसर पैदा करना है ताकि लोग शहरों की तरफ पलायन करने की बजाय वहीं रहना जारी रखें।
0: Yes, and that's a very important goal. Many remote villages face challenges due to lack of facilities and employment opportunities, and that's why this program focuses on creating sustainable livelihoods.
1: दरअसल ये कार्यक्रम इन बातों को प्रोत्साहित करता है, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, कौशल विकास और उद्यमिता तथा सहकारी समितियों का गठन।
0: Agriculture and horticulture activities and even cultivation of medicinal plants and herbs.
1: दरअसल इसका मतलब है कि स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक जानकारी और संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर आजीविका कमा सकते हैं।
0: Absolutely, and alongside livelihoods, the program also focuses on improving essential infrastructure.
1: जी हाँ, इस योजना में शामिल हैं उन गांवों के लिए सड़क संपर्क जहां तक सड़क नहीं पहुंची हैं, आवास और ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुविधाएं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है।
0: टेलीविजन कनेक्टिविटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज।
1: बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। बेहतर कनेक्टिविटी दूर दराज के गांवों में जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है।
0: वेरी ट्रू, व्हेन विलेजेस हैव रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। And tourism promotion can also help preserve local culture and traditions.
1: बिल्कुल, ये कार्यक्रम न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि इन गांवों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी उत्सव मनाता है। तो एक तरह से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का मकसद गांवों को आत्मनिर्भर, आपस में जुड़ा हुआ और अवसरों से भरपूर बनाना है।
0: And talking about the government of India's ambitious vibrant villages program too. A major step towards building safe, secure and vibrant land borders.
1: और खास बात यह है अभिषेक कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसमें 100% फंडिंग केंद्र की ओर से है और वित्त वर्ष 2028-29 तक इसके लिए 6,839 करोड़ रुपए का भारी भरकम परिव्यय निर्धारित किया गया है।
0: That's huge, Munish. But let's put the spotlight on what exactly is the purpose of Vibrant Villages Program 2.
1: दरअसल ये विचार सरल फिर भी सशक्त है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय थल सीमाओं के नजदीक मौजूद गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, सिवाय उन उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के जो पहले से ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वन के अंतर्गत आते हैं.
0: Villages and states in Indian territories like Arunachal Pradesh, Assam, Rajasthan, Punjab, Ladakh, Jammu and Kashmir, Gujarat, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal and many more will benefit.
1: वही तो, ये तो देश का लगभग पूरा सीमावर्ती इलाका है और इसका मकसद सिर्फ विकास नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी है. समृद्ध सीमावर्ती गांव सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकने में मदद करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाते हैं.
0: In fact, the program encourages villagers to become the eyes and the ears of border guarding forces, and that's a very strong message of people's participation.
1: बिल्कुल. और श्रोताओ, VVP 2 बुनियादी ढांचे और आजीविका दोनों पर केंद्रित है.
0: Precisely, Munish. And there's another interesting aspect. The program is village-specific and border-specific, meaning every village will have its own village action plan prepared collaboratively according to local needs, and that's smart planning. One size fits all never works in diverse regions, isn't it?
1: बिल्कुल सही. इसके अलावा हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही मौजूदा योजनाओं के साथ तालमेल बैठाकर दूर संचार, टेलीविजन कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण का भी विस्तार किया जाएगा.
0: So these villages won't remain isolated anymore. In fact, the government also wants to make these villages culturally vibrant.
1: हाँ, ऐसा कैसे?
0: By organizing fairs, festivals, awareness camps, celebrations of national days, and even encouraging ministers and senior officials to visit and stay overnight in these villages.
1: Oh, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है. इससे निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय संस्कृति और विरासत प्रदर्शित होगी.
0: And technology will play a major role too, Munish. Platforms like PM Gati Shakti will help in planning and monitoring projects effectively.
1: तो कह सकते हैं अभिषेक कि कुल मिलाकर Vibrant Villages Program 2 सिर्फ एक विकास कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, आपस में जुड़ा हुआ, सुरक्षित और जीवंत बनाने का एक मिशन है.
0: Well said, Munish. Together, Vibrant Villages Program 1 and Vibrant Villages Program 2 are helping shape the vision of Viksit Bharat at 2047.
1: एक मजबूत सीमा का अर्थ है एक मजबूत भारत, और सशक्त ग्रामीण का अर्थ है एक सशक्त राष्ट्र.
0: So, in conclusion, the Vibrant Villages Program 2 is a transformative initiative that will bring development, connectivity, security and prosperity to India's border villages. And by improving infrastructure, education, tourism, communication and livelihood opportunities, the scheme will help reduce migration from border areas and create self-reliant communities.
1: और इसके साथ ही ज्यादा मजबूत और जीवंत सीमावर्ती गांव, स्थानीय भागीदारी को बढ़ाकर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों की मौजूदगी को मजबूत करके राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. इस कार्यक्रम के जरिए सरकार न सिर्फ गांवों का विकास कर रही है बल्कि विकसित भारत 2047 के तहत एक सुरक्षित, समावेशी और विकसित भारत के विजन को भी मजबूत कर रही है.

0: 60 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही। लक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्रियों में वो शुमार रही। उनकी खास फिल्मों को याद करें तो बरबस यादव आती है, आजादी, देशभक्त, चार आंखें और श्रीमान फंटूश। आज ही पुण्यतिथि है कंवर पाल सिंह गिल की, केपीएस गिल के नाम से मशहूर। पंजाब के दो बार पुलिस महानिदेशक, उन्हें पंजाब के आतंकवाद और उग्रवादी विद्रोह को नियंत्रित करने का श्रेय दिया जाता है। केपीएस गिल को आतंकवाद की कमर तोड़ने वाला सुपर कॉप कहा जाता है। भारतीय पुलिस सेवा से साल 1995 में सेवानिवृत्त हुए और फिर गिल इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके बेहतरीन काम को ध्यान में रखते हुए 1989 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: Yes, and like we were mentioning in the beginning of our program, John Wayne was born on this day in 1997. John Wayne was an iconic American actor and filmmaker known by his nickname Duke. He epitomized rugged masculinity and became the enduring symbol of the classic Western hero, an American patriot. Born Marion Robert Morrison in Iowa, Wayne rose to stardom during Hollywood's golden age. He starred in over 170 films, leaving a massive cultural footprint through a career that spanned more than 50 years.
0: और आज ही है जयंती अभिनेत्री मनोरमा की, दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका, जिन्होंने बहुत सी यादगार हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार बटोरा और थांगावेलु, थेंगाई, श्रीनिवासन, छो और नागेश सरीखे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। 1000 फिल्में पूरी होने के साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। आइए सुनते हैं उन्हीं की एक यादगार फिल्म सीता और गीता से उनका ये यादगार संवाद।
2: क्या हो गया मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? क्या कर डाला उस चुड़ैल ने? बोल तो सही, बता बच्चे।
3: उसने मुझे मारा
2: है, मैं उसके हाथ तोड़ देती हूँ। चल,
3: उसने मुझे लात मारी।
2: क्या लात मारी? चल, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। आ मेरे बच्चे। चोरी चुड़ैल, तेरी ये वजह कि मेरी फूल से बच्ची को हाथ लगाए।
4: अरे ओह, काय को इतना भंकस करती है?
2: भंकस की बच्ची, बहुत बाहर की हवा लग गई है तुझे। दिमाग खराब हो गया आजकल मूवी का। जरा उठ तो सही, उठ मैं बताती हूँ तुझे। चल बाहर।
1: Yes, and Miles Davis was born on this day in 1926. He was an American jazz trumpeter, band leader, and composer who stands as one of the most influential and acclaimed figures in the history of the 20th century music. Over a career spanning 5 decades, Davis was at the bleeding edge of almost every major stylistic development in jazz, fundamentally shifting the direction of modern music multiple times. He is globally revered for his intimate, soulful trumpet tone, his use of space and silence, and his uncanny ability to anticipate the future of soundless listening to a hit composition of his.

0: और दोस्तों आज जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं दिलीप जोशी और उनके चाहने वालों के लिए। एक भारतीय अभिनेता हैं जो कई अपनी फिल्मों में यादगार काम के अलावा जाने जाते हैं, खास तौर पर टीवी धारावाहिक के लिए जो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
1: प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है।
2: तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे

हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पूर्णिपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडीह, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 135 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल

0: मामले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देस। शाम 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में, जिसमें अपन गोठ में बातें होंगी युवा पीढ़ी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण इस विषय पर, और होगा क्रम सवाल जवाब। 6:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात में चर्चा का विषय होगा फसल ला तेज धूप ले बचाव के उपाय। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे, जिसमें आप सुनेंगे खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रख रखाव और संबंधित योजनाएं। इस विषय पर डॉक्टर विनय कुमार नायक द्वारा दी गई जानकारी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे लक्ष्मीकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। लोक संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुनील कुमार सोनी और उनके साथ ही। आदिवासी जनजाति संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा में आप सुनेंगे हल्बी गीत आज रात 9:30 पर, जिसमें कलाकार होंगे दाऊसी पोया और उनके साथ ही और राम सिंह मरकाम और उनके साथ ही। रात 10:00 सुनेगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थी जानकारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको बता देते हैं हमारे केंद्र से कल की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम सुनेगा कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम श्रोताओं हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अहिर भैरव। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे चंद्रमोहन वर्मा। 12:30 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगी बेगम अख्तर। और इसी कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर कलाकार होंगे छाया चंद्राकर और उनके साथ ही। दिन में 12:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और कल शाम 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। दिन में 1:30 पर सुनेगा रूपक छत्तीसगढ़ी लोक गीतों में पर्यावरण चेतना। आलेख डॉक्टर PC लाल यादव का होगा और प्रस्तुति नेमी चंद साहू की। कल शाम 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा टाल मटोल की आदत को छोड़ें और होगा क्रम पत्र मिला और सुनेगा युगल गीत। कल शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात आधारित होगी फूलों की सब्जियां स्वाद पोषण और सेहत का त्रिकोण इस विषय पर, और होगा क्रम पत्रोत्तर जिस चिट्ठी मिली। आज की सलाह में सुनेगा कद्दू वर्गीय फसलों में कीट और रोग प्रबंधन इस विषय पर डॉक्टर SM अली हुमायूं द्वारा दी गई जानकारी। दिन में 11:05 पर सुनेगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल की सभा से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।

0: दिन भर के आगे से ही लू ले दुरियावत संझौती बेरा के कुनकुना घाम संग अपन बोली भाखा ले ठंडे पियावर आगे मैं तुहर दुलरवा सुमित तिवारी और एक संग स्वीकारो मोर सुघर जय जोहार
1: और मही उही माँ संघेरे आमा के पाना कस रस भरे बर आ गयो तुहर संगवारी दुर्गा साहो मोर ढाले झोका स्वीकारो राम राम।
0: दुर्गा भाई भारी गर्मी लागत ना बाढ़ गई गर्मी है
1: ले बता भाई गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लागी तो कैसे ठंड लागी।
0: हाँ तब हो लेकिन अभी गर्मी और ज्यादा बाढ़ गई ना इसे कहा था।
1: हाँ, माने के एक मतलब ये है नौटप्पा आ गए है ना माने सुमित नौटप्पा है तो ऐसे तिपत है कि बोलना ही कुछ मुंह डाले कहीं नहीं निकले।
0: बिल्कुल भैया वो नौटप्पा है तभी नहीं कौन तभी
1: कहीं मेर जाए के मन नहीं लागे घरे में बस पंखा कूलर चलत रहा है मज बढ़िया घरे में रहा।
0: बिल्कुल भैया वे दे संगी मन तेरा गोठियाना है तोड़ तेरा गोठियाना है हैं और संगी मन के कतका माया प्रेम है कि मैं यहाँ आया हूँ।
1: हाँ महू ही माया में झोंकाए महू बंधाक आ गए
0: बंधाक आ गए फिर ना आवत रहे तो मुड़ी माँ ऐसा कंचप्पी बांधे रहे हो कि एक को निक ना बाहरी हवा अंदर नहीं जावत रही से
1: ऐसे का बने करे संगवारी
0: के बरबर हो गई।
1: सुमित आजकल के मौसम ला देख के अपन सेहत के विशेष ध्यान रखना जरूर एकदम ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल भाई दुर्गा हमार पुरखा मन ना सियान मन हा हर मौसम ला सोच समझ के खाए पिए की व्यवस्था करे नहीं भाई जाड़ के दिन में गर्मी वाला भोजन बरसात में बने पौष्टिक भोजन और घाम के दिन में बने ठंडा जिनिस के भोजन रही से और हर मौसम के इसने हिसाब लेना खाए पिए के बड़ा बड़ जिनिस समझला हमर सियान मन सिखाए हवे।
1: माने मौसम के हिसाब ले खाए पिए के भरपूर व्यवस्था सियान मन करे अब यही तो संस्कृति है संगवारी और यही हमार पहचान जिला युवा पीढ़ी मल्ला जाने के जरूरत है कि सियान के जेन भी गोट होते ओहा कुछ न कुछ सीख ले भरे रही थे कुछ न कुछ सीख छिपे होते हर जिनिस रूढ़ीवादी नहीं हो संगवारी हो कुछ कुछ अनुभव घलो होते जिन हमारे बार सार्थक होते।
0: बिल्कुल भाई सिरतोन के फिर आजकल के युवा मन हा ये देखा मोबाइल धर ले हवा और बड़का बड़का ज्ञानी बनत रहते
1: आधुनिक बेरा संग चलना बने बात है संगवारी हो फिर एकरे सेती अपन एकर बर अपन संस्कृति ला बिसारना कहाँ तक सही है सोचे के जरूरत है।
0: बिल्कुल भाई बड़ सोचे के जरूरत है अब देख ना पहली गांव में संझा हुआ तो लोगन मन हा चौपाल में बैठत रहीन हवे और गपियावत रहीन
1: और अब संझा होते ता सबो जन अपन अपन मोबाइल में घुसर जाते तीर में कौन बैठे है कौन होल पता नहीं चले।
0: बिल्कुल भाई संगी हो हमला अपन संस्कृति के बारे में जाने के बड़ जरूरत हवे काबर संस्कृति ला जब अपन जानू तभे अपन ओखर महत्व ला पहचान पाहू और सफलता के रद्दा मा चढ़े बर अपन नींव ला मजबूत करे बर लगते और संस्कृति ले बड़का नींव कोनो नहीं हुआ है।
1: सिर्फ तुम संगी संस्कृति सिर्फ किताब के एक शब्द नो है संगवारी हो भलुक संस्कृति वो है जेला हमर रोज जीथन संस्कृति वो है जब दाई बहिनिया गए थे उठ जा रे सूरज हम माथम चढ़ गए हवे कतका बेले सूते रही
0: और तहां लहो की हमन हा एक घों सूत जथन है नहीं संगी हो मन के अपन संस्कृति ला छोड़ के कैसे टिक सकते हैं भाई एकर कोनो दूसरा रद्दा नहीं है संगी हो जिसे जिंदगी जिए बार खाए पिए ला पड़ते ना उसने आगू बढ़े बार संस्कृति रूपी जड़ के सहारा हमला ले बार पड़ते।
1: संगी हो युवा मल्ला अब ख्याल रखे के ये विषय है और ये विषय मा ध्यान देना हम युवा मन के जिम्मेदारी होते कि आधुनिकता के संग अपन परंपरा ला जोड़ के नवा नवा कारज ला कैसे करना है।
0: बिल्कुल भाई और संगी हो आज के पीढ़ी ला अंग्रेजी माँ जिंजी की थे हैं फिर जब कोनो पाना हा डारा ले टूट जाते ना तो वो पाना हा कोनो काम की नहीं रहे देखे सती हमला अपन संस्कृति अपन सभ्यता ले जुड़ के रहना चाहिए और आगू बढ़त रहना चाहिए।
1: संगी हो पुरखा के ज्ञान हा वैज्ञानिक पारंपरिक और अनुभव ले बनथे जेखर गलत हो के गोट ही नहीं रहा बस उला समझ के आगू बढ़े के होते।
0: तो चलो अपन जड़ संग जुड़न और अपन भागला जगावन।

0: भाग जागे रे संगवारी हो। अभी अपन सुनत रहे सुघर अकन गीत ला जेला अपन सुर में सजाए रहिस ओम ठाकुर और साथी मन
1: और सुने बर चाह रही हमारे संगवारी मन धुर्रा बांधा भाटा पारा ले प्रमोद कुमार साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार युवराज साहू बेमे तरले सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी बेमे तरले सरंगी मन है कमलकांत सारथी वीरेंद्र ब्रिजकांत सुरेश सारथी मन हा सिमगले रमेश कुमार यादव माया रिंकू सन्नी कोमल यादव धरसीमले छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ यादव रानू खुशी प्रवीण साहू सी एल यादव मनहा।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: Oh lovely, well done.
3: Business loan approved.
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: RBI कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: सुमित तोला कछु सुरता आत है
0: काजिनेस के भाई?
1: ले बता अभी हाल ही मा का चलत है, का होवत है, कैसे चलत है, गर्मी मा कतका तापमान है, कैसे जीवन जीना चाहिए।
0: जान रहे माने तहे समसायिक विषय के बारे में बात करत है। माने मैं एक हाथ हूँ सवाल जवाब के बारे में बात करत है।
1: सवाल जवाब तो करहुच में हाँ, काबर दीने हरे सवाल जवाब के।
0: बिल्कुल भाई, आज हरे मंगलवार और दिन रहते क्रम
1: सवाल जवाब के।
0: संगवारी मन हा गोरा करत होही।
1: संगी मन हा गोरा करत है कि पाछू दरी सवाल पूछेरी से हमन जवाब ला भेज घलो डरे हन। अब संगी मन हमन ला सवाल के उत्तर ला बताही। माने हमर ज्ञान में कतका बढ़ोतरी हो है ओला जाने के अवसर मिली।
0: और संगे संग हमार कौन कौन संगवारी मन हा ओखर सही जवाब पठो है देखो मन के नाम सुने मिली।
1: संगी हो, अब आपके जोन बेरा है ओला दुरिहावा थन और शुरू करत हन कर आज के क्रम सवाल जवाब अंक 231 के पाछू अंक में माने 231 में पूछे गए सवाल और ओकर सही जवाब। ता आप मन सवाल के जवाब ला जो पठोए हो वो सवाल के जवाब ला आप मन मिला हो हमन बताए बर जावा थन। संगी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 231 के पहले यह सवाल रही से बछर 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बर कौन ला चुने गए हैं?
0: अविकर सही जवाब रही से कैलाश सत्यार्थी है।
1: संगी हो, यही क्रम माने 231 के क्रम में पूछे गए हमारे दूसरे या सवाल रही से बेठिया प्रथा छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हवा?
0: अविकर सही जवाब है संगी हो, बस्तर क्षेत्र में।
1: संगवारी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 231 के तीसरे या सवाल रही से मई 2026 में कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी है मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरा करके इंटरनेशनल मास्टर के खिताब जीते हैं?
0: और एकर सही जवाब है संगवारी हो, अपार सक्सेना।
1: संगवारी हो, चौथे यह सवाल रही से भारत के पहला कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित करेंगे है?
0: एकर सही जवाब है संगी हो, भोपाल मध्य प्रदेश में।
1: क्रम सवाल जवाब अंक 231 के पांचवैया सवाल रही से संगी हो, जनगणना 2027 बर कौन से हेल्पलाइन नंबर पूरा देश में शुरू हुए है?
0: और इसका सही जवाब है हेल्पलाइन के नंबर है 1855।
1: संगवारी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 231 के आखिरी माने छठवैया सवाल रही से भारत में पहली बार लॉन्च करेंगे डोनेन मेब चिकित्सा दवा के संबंध में कौन से रोग है?
0: एकर सही जवाब है संगवारी हो, अल्जाइमर।
1: तसंगी हो, ये तो रहिस क्रम सवाल जवाब अंक 231 में पूछे गए रही सवाल और ओकर सही जवाब। अब आप मन हाँ
0: अब जान लेथन संगी हो, जेन जेन संगवारी मन हा अपन सही जवाब पठोए हे तेखे मन के नाम मल्ला।
1: त संगी हो, सबले पहली जान लेथन पांच सही जवाब पठोए हमर संगवारी मन के नाम।
0: बिल्कुल भाई,
1: पांच सही जवाब पठे हमर संगी मन है पुरैना शहीद नगर छुई कदान ले पूजा जंगेल धारनी रेखा ध्रुव जंगेल मन हा तेंदु भाटा मगरलो धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र भास्कर किशन दिव्यांश भूपेश शिवा निषाद मन हा यही क्रम सम छह सही जवाब पठे हमर संगी मन हावे। लता देवी चौहान टिकरापारा ले पथरिया भरेवा ले चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा वानिया सिंगरौल पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी

0: अनुप्रिया दिवाकर, योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, धसीमा बसिष्ठनेले, छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरैशी, चरौदा बार नवापारा ले संगी मन है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर मन, बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ ले मेघा भीमटे, नेहा भीमटे, यशु भीमटे मन, दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नगरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जागेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी मना, परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारनी खुमेंद्र मसिया मना, सिंगारबाड़ी गुटकुले भगतराम पटेल, किशन सोनम मानवी पटेल, सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश सहयामालगी, जिला कबीरधाम ले कृष्ण कुमार सिंगरौल, शीतला सिंगरौल, हंसिका लावण्या सिंगरौल मनहा, सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कमरधा ले है संगी मनहा, गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत, अमलीडी कमरधा ले संतोष राजपूत, हेमा प्रभा पूर्वी गौरव राजपूत, लोहारीडी जिला कवर्धा ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लिलिमा, खुशान साहू, निशान साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू मनहा।
1: और संगी मन हावे जेमन अपन छह से ही जवाब उठो है तिख मन है, नवगढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा मयंक वर्मा मन, रानी गांव नगरी धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू मन, कुमरदा राजनांदगांव ले संगवारी है ताराचंद साहू, ओम माही धर्मेंद्र साहू मन, और बठेना पाटन दुर्ग ले हावे बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, प्रहलाद, राजेश, उमेश, प्रमिला बंछोर मन, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी मन, पुतकी कला कमरधा ले है राधेश्याम पांडे, वीणा विनय, नयन शंकर, नयन पांडे, सुमांशु पांडे मन, जवाहर नगर दुर्ग ले संगवारी हावे आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े मन, भड़गा कोदवा गोड़ान ले हावे श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल, पूजा मरावी मन, और कुई भंगी टोला ले हावे संगवारी मन, ननका राम धुर्वे, जामुनबाई, फिरत राम, मालती धुर्वे मन, गेंदा टोला बाजार चौक राजनांदगांव ले बीरेंद्र कुमार, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता मन, पुरैना छुई खदान ले हावे धर्मेंद्र जंगहेल, संतराम नागेश्वर, साहूकार लोधी मन, कुरासी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुस्मिता, दीपिका साहू मन, चिनमिरी कुरासिया कलारी ले इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कलिंद्री लहरे मन, कोयलारी कमरधा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पुणेंद्र साहिल चंद्राकर मन, अड़ा नानघाट ले माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा मन, बागबहारा भदरसी ले पन्ना लाल सेन, खुशबू, तारा कौशल सेन मन, और साले भाटा महासमुंद ले जितू ध्रुव, केवल किरण, देवियांशी, खेमू ध्रुव मन, फुलझर घटारानी ले संगवारी मनहावा योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामनी, मुस्कान, हर्षिता साहू मन, भीमखोस तरपोंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश, सोमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता मन, बाघामुड़ा कुमार खान ले है प्रज्ञानंद, देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी, देवांगन मन, भाटापारा ले बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर प्रसंत, भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, अब्दुल मजीद कुरैसी, रेहाना बेगम, और देवरी भाटापारा ले गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मन, और पिपरिया ले संगवारी है कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता मन।
0: यही क्रम में हमार छह सही जवाब पठुआ संगी मन के नाम हवा बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, भवरपुर बसना ले चंपा देवांगन, राधेश्याम, राजू जगदीश, नेहा देवांगन, भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमेश्वर मनेश्वर, लाक्षी तुलसी यादव, लुकावपाली छतवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह, पंकज सिंह सूर्यवंशी, बूढ़ा देवपारा लुकावपाली छतवन ले नीतू जीतू रिया जया राहुल युवराज सिंह सूर्यवंशी, बाग बहारा भदरसी ले पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन मनहा, पटेल नगर मलोट ले रमेश कुमार जाजोरिया, गीता जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया मनहा, बहरा अहिवारा ले पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर, आर्यनगर गोंका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष, नंदनी जंघेल, रूपापाली बसना ले हीरालाल जगत, चंद्रिका जगत, देवेश ब्रिजेश, एकता कश्यप, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खरसे, विनोद खरसे, पलारी ले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन, रोहासी से डगेश्वर राम साहू, नूतन गौरव घनश्याम साहू, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये मनहा, लघान पंडरिया ले संगी मन है उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी साहिल भारती बघेल, श्यामनगर दुर्ग ले प्रदीप खंडेलवाल, नीता खंडेलवाल, पलारी ले प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, भदरसी ले पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, पहांदा पलारी ले नीतीश कुमार, ईशान देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, तनुजा बाई देवांगन, महासमुंद ले भीष्म दास, नर्मदा हिरमनी, दीपक लक्ष्यदास, खल्लारी भीम खोज ले जी एल साहू, सरोज साहू, छोटी पिंकी, बनभगेरा जिला राजनांदगांव ले योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश अंजलि, रोशनी सारवा मनहा, रोहासी पलारी ले श्यामलाल साहू, युवराज साहू, लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू मनहा।
1: तो संगी हो ये तरही समर सवाल के सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम हा। तो आपन जिन भी अपन सही जवाब पठो है जम्मो संगवारी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई हवे। दुर्गा अब संगवारी मन हा तो जवाब ला भेजे रही से जेकरा मन नाम ला पढ़ रहे हन, संगवारी मन अगोरा करत है कि सुमित हा, दुर्गा हा, कब बताई हमार नवा सवाल लकी के।
0: तो संगी हो आपके बेरा ला तो जरूर दुरहाबो, फिर ओकर ले पहले सुनथन मनोरंजन खातिर घरकन माटी के गीत ला।

0: संगवारी हो अभी अपन सुनत रहिए सुघर अकन गीत ला जिला पंसूर मा पिरो रहिस गोरे लाल वर्मन और साथी मन
1: और सुने बरचारी हमार संगी मन हा सिरी गाता पारा ले लावण्या साहू उपासना साहू देवरा साहू ओम कुमार साहू पुष्परा साहू प्रभु राम साहू अरमरी खुर्द दुर्गरे चुरामल लार वार्डे जैनी वार्डे शिक्षक नगर दुर्गरे राकेश कुमार वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा शीतला नगर दुर्गले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर बेमेतरले सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता सारथी कमलकांत वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी भाटापारले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद मनहा।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आँखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर।
4: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
0: संगी हो आप मन अगोरा करत हो कि अब हमला अगला हमर सवाल बता दी करके दुर्गा मैं हाँ सवाल बतावत हूँ और तय होला दोहरावत भी ठीक है। तो संगी हो आप मन हाँ पेन और कागज ला धर के तैयार हो बेच करू। तो चलो लिखथन क्रम सवाल जवाब अंक 232 के पहले यह सवाल ला जिन्हें सबले जहरीला पदार्थ के नाव बतावो।
1: संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 232 के पहले यह सवाल आप मन लिखो। सबले जहरीला पदार्थ के नाव बतावाओ।
0: ये अंक खातिर हमारे दूसरिया सवाल है संगी हो भारत के सबले बड़े राज्य जनसंख्या के क्षेत्र में कौन है नाव बतावाओ।
1: संगी हो इस सवाल में दोहराया बर जाता हूँ आप मन उमिला हो भारत के सबले बड़े राज्य जनसंख्या के क्षेत्र में कौन है नाव बतावा।
0: संगी हो यंग खातिर हमार तीसरिया सवाल हवा है कौन देश हा पर्यावरण संरक्षण बर ग्रीन आर्मी के शुरुआत करीन।
1: संगवारी हो ए अंक खातिर हमार तीसरिया सवाल आप मन मिला हो कौन देश हा पर्यावरण संरक्षण बर ग्रीन आर्मी के शुरुआत करीन।
0: संगी हो क्रम सवाल जो आप अंक 232 के चौथैया सवाल है हाल ही मा निस्वार्थ चिकित्सा औ मानव सेवा बर कौन ला पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित करेगी।
1: संगवारी हो ये अंक खातिर हमारे चौथैया सवाल आप मन लिखो हाल ही मा निस्वार्थ चिकित्सा औ मानव सेवा बर कौन ला पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित करेगिन।
0: और संगी हो ये अंक खातिर हमारे पांचवैया सवाल है क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन राष्ट्र ला माने जाते।
1: संगवारी हो ए अंक खातिर हमारे पांचवैया सवाल क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन राष्ट्र ला माने जाते।
0: और संगी हो क्रम सवाल जवाब अंक 232 के छठवैया व आखिरी सवाल हवा है जिन्हें छत्तीसगढ़ी जनौला। और सवाल इसे है मारूं तो रो देबे धरूं ता चुप हो जाबे।
1: संगवारी हो ए अंक खातिर हमार आखिरी सवाल माने छठवैया सवाल क्रम सवाल जवाब अंक 232 के छठवैया सवाल छत्तीसगढ़ी जनौला मारूं ता रो देबे धरूं ता चुप हो जाबे।
0: तो संगी हो ये तरीस क्रम सवाल जवाब अंक 232 के सबो सवाल मन है। अब आप मन है अपन सवाल के जल्दी जल्दी जवाब ल खोजाओ और हमला झटकुन पठो डरो। देखा बार हमार पता ल लिख लो संगी हो चिट्ठी पाती के माध्यम ले अपन हमला अपन जवाब पठे बार हमार पता है क्रम सवाल जवाब अंक 232 युवाड़ी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ और हमारे पिन कोड है संगी हो 4920001। और आधुनिक पाती माने ईमेल के माध्यम ले अपन अपन जवाब हमारे तीर पठो सकत हो जेकर पर हमारे ईमेल आई डी हाव है youtth9@gmail.com और संगी हो हमारे सब्जेक्ट कोड हाव है सवाल जवाब क्रम सवाल जवाब पर y13 तो संगी हो क्रम सवाल जवाब तो दुर्गा भाई अभी हम जब पर्यावरण देखथन है ना तो बड़ सुघर सुघर कृति है भगवान के है ना और उसने माँ चिड़ै चुरगुन भगवान के बनाए एक ऐसे जीव आए जरा देख के ना बस मया लगते
1: सिरतुन कहा था संगवारी भाई छोटे छोटे पंख ले आगाज के ऊंचाई ला नापना कोनो कम बात थोड़ी ना है
0: यही तो प्रकृति के रंग आए संगी हो सब ला कुछ ना कुछ दे है भगवान है।
1: कतकोन प्रकार के चिड़ै चुरगुन रहते संगी हो हमारा आस पास में देखथन हमन कोनो हरा है तो कोनो करिया तो कोनो सफेद त कोनो सात रंग मा और सबो के अपन अपन अलग अलग खूबी संग ये प्रकृति ला और सुंदर बनावा थे।
0: बिल्कुल भाई सिरतोन मान एकर बोली भाखा तको बर मधुर ससनरी थे जिला सुन के ना अंतस के जम्मो थकान हा मिटा जाते।
1: सुमित थोकन एकदम पेड़ वेड़ रहते ना जंगल टाइप के वैसने जगह हम जावे त एक कूक करके आवाज आते एक ठो चिड़ै के।
0: अब मैं तोला वो कोयली आए से की थो
1: तो अगर ते वाला ओ जिसने आवाज दी वैसने ते भी आवाज देवे ना तब वो भी तोला वैसने आवाज दी माने वो जो आवाज मिलते एकदम प्रकृति ले भरपूर आनंद में सूर ले बांध देते कहे जाए तो
0: बड़ सुघर भाई यही तो हमार प्रकृति के सुंदरता है।
1: तो संगी हो यही लसुरता करत चला आवाज सुनथन सुंदर अकन मनोरंजन खातिर ये सुघर अकन माटी के गीत ला।
5: रेलगाड़ी छुटके

0: संगवारी हो अभी अपन सुनत रहे सुघर अकन गीत ला जेला अपन सुर में सजाए हे गजानंद कन्नौजे और साथी मन
1: और सुने भाई चारिन हमारे संगी मन खैरा गले रविंद्र अग्रवाल पुष्पलता डॉक्टर झन्ना प्रेरणा दीक्षा शिक्षा मनहा भेंड्रा धमतरी ले निर्मल कुमार साहू सरिता साहू अजुल आर्यन साहू मनहा रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा लच्छन पुले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू मनहा पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मनहा टिकारी मांढर विधानसभा ले ब्यास नारायण शर्मा संगीता प्राची पायल शर्मा मनहा
0: भाई दुर्गा ये यहाँ गर्मी माँ कुछ चीज नहीं सुहा है ना
1: गर्मी के मौसम है तो का सुहा ही बता बस पंखा मिल जाए कूलर मिल जाए और खाएगे तो फिर बातें मत कर पानी में पेट भर जाते अब संगवारी हो बात यह है कि पेट ला पानी में भरना है इसे नहीं है खान पान के हमला ध्यान रखना बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल भाई दुर्गा गर्मी में चाह के छोड़ सब ठंडा ही लगते ना विच बात है मतलब बस चाह बस गरम चाहे चाहे कत को गर्मी रहे
1: हाँ बात तो सही है संगवारी हो कही थे ना लोहा ला लोहा हा काटते तक गर्मी में ना चाय पीबे बने लगते कैसे सुन
0: हाँ हाँ ये चाहा प्रेमी मन के गोठ रही थे संगी हो
1: फिर आज ये मोला चाय नहीं पिए इसे
0: बिल्कुल भाई तो संगी हो ये कहात रहे कि बोरी बोरे बासी खाए बेरा माते हैं चाहा के सुरता करबे तो वो बने बात नहीं लगे
1: अच्छा
0: नहीं? भाई पहली की बेरल देखना दुर्गा पहली जब तैया के जमाना रही से ते ये जो मौसम है गर्मी में तेमा साग भाजी नहीं मिलत रही से तो घर वाले मन हा पहली लिए सब सुखसा बना के रखे
1: माने
0: करेला के सूखा मतलब जिन समय मौसम में जिन सब्जी मिला हरा सब्जी तेला घाम में सुखा के वाला सुखसा बना के रखे है चाहे वो पताल हो
1: वाला सुखसल का थे जानते
0: काकी थे
1: खोइला
0: हाँ
1: माने बरी हो गए मतलब अभी जो ठंडा में जो बरी रहते ना के मतलब वो कुम्हड़ा रखिया फड़े रहते
0: बिल्कुल
1: उमल्ला बरी बना के रखते ताकि एमल्ला साग सब्जी नहीं रहा है तो बना के खाया जा सके
0: बिल्कुल भाई हमार गांव डहर ना जैसे सेमी हवा है भाटा है
1: हाँ
0: है इसने बहुत
1: तिवरा भाजी के खोइला चना भाजी के खोइला और टमाटर के घलो खोइला कर
0: बिल्कुल भाई इसने बने खोइला बना के रखते और ये दिन माना वो साग ला बनावा फिर वो समय के जिन खोइला है तेन अभी इतना मीठा हुआ है कि का कहन फिर आपके बेरा में ना वो देखे नहीं मिला काबर अब सुविधा बढ़ गया हवा सिंचाई के बड़े बड़े माध्यम हो गए हवा देखा ना लेके अब बारह महीना बारह सब्जी मिला तरी से
1: एक मतलब है संगवारी हो कि हर मौसम में हर प्रकार के सब्जी ताजा हमला मिल जाते हैं
0: बिल्कुल भाई
1: संगवारी हो ये तो रह गए खान पान के अब खान पान बर हमन हा बाजार के ऊपर रथन कि बाजार में आही तक खाबो कह के
0: बिल्कुल भाई
1: लेकिन हमन चाहन ता अभी के बेरा में

0: ऐसे भी आधुनिकता आहे कि हमन ह घर ला तो पक्की बना रहे हन लेकिन हमन छत में भी सब्जी उगा सकथन।
1: बिल्कुल आधुनिक बेरा है दुर्गा, तो वैज्ञानिक पद्धति लेना बड़ा कन ऐसे हमारे सुविधा हो गया हवे जेकर से हमन हा साग भाजी ला अपन घरे में कर सकत हन और संगे संग बाजार हाट के माध्यम ले भी ना हमला रिंगे चिंगे बहुत अकन सब्जी मिल जाते जेकर से हमर मन के ना स्वाद बढ़ जाते है ना।
0: माने जैविक खेती संगवारी हो आप मन हा जब पौष्टिक आहार खाना है आप मन ला तो आप मन खेत में अनेक प्रकार के भाजी सब्जी जिन आप मतलब पसंद है ओला आप मन लगा सकते हो।
1: भाई दुर्गा ते भारी बारी बकरी के संगे संग ना साग भाजी अतेक गोट कर देस ना कि अब बोला मोला भूख लागल धली है ना। तो खाबो तो फिर अभी चल सुनथन ये सुघर अकन गीत ला।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहे हमन माटी के गीत कुकई काटा जेमा सुर पिरोरी हिन गंगा बाई गेदम और साथी मन
1: अवेलापन सुरमा पिरोही समाजी संगी मन है जिनमन है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक झावेंद्र वर्मा मन है मगर लोडले संगवारी हवय पुन्नू राम साहू राज तेजस्वरी राजश्री राजवीर साहू मन है देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री दतरंगी ले संगवारी मन हवय विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु मन है और करी भदर बालोद ले संगवारी मन हवय देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मी पुरुषोत्तम शारदा कुमारी लोचन विद्यार्थी गीतिका सोनवानी मन है और बिलेगढ़ संगवारी मन हवय रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन मन है और श्यामनगर दुर्ग ले प्रदीप खंडेलवाल नीता खंडेलवाल मन है पहांदा पलारी ले संगवारी हवय निशांत नीतीश ईशांत देवांगन सावित्री बाई देवांगन तनुजा बाई देवांगन मन है और भीमकोच खिलाड़ी ले हवय जी एल साहू सरोज छोटी पिंकी मन है रोहांसी पलारी ले हवय श्यामलाल साहू युवराज साहू मन है और आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष नंदिनी जंघेल मन है और पलारी ले संगवारी मन हवय नितेश देवांगन मन है डोंगरगांव ले हवय राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये मन है और संगी मन हवय श्यामलाल श्यामनगर दुर्ग ले प्रदीप खंडेलवाल नीता खंडेलवाल मन है और ये संगी मन हवय रोहांसी पलारी ले श्याम लाल साहू युवराज साहू लक्षनपुर ले रामजी साहू जीवन लाल रजक नेमी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू मन है ये संगी मन हवय लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी परमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन है गेंदा टोला बाजार चौक ले हवय वीरेंद्र कुमार अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन है कोयलारी कमरधा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद्र पूर्णेन्द्र साहिल चंद्राकर मन है बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल शेर मन है नवागढ़ कटेले संगवारी मन हवय नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा शारदा मयंक वर्मा संगी मन है
0: सुमित गर्मी ते को गोट तो हमन करे छन
1: बिल्कुल भाई
0: फिर हमन देखथन आजकल कि पानी में नल मतलब नल ले पानी ऐसने बोहात रहते
1: बिल्कुल भाई पानी संगे संग समस्या हवे ना दुर्गा तेना बड़ गंभीर हो गए हवे काबर यहाँ मौसम में जिन पानी के जल स्रोत हवे जिन मुख्य रूप से जल स्रोत हम मानथन हमार बोरला है ना तेना एकदम निचले स्तर में जावत हवे कुआं तो ऐसे हो गए कि वह पुरातन विभाग में चल देते ऐसे हो गए
0: संगी हो एकर कारण और एकर जिम्मेदार हम ही मनहरन कैसे अब देखना एक बाल्टी में गाड़ी धोवा सकते लेकिन हमन का करथन बोर के पाइप ला चालू कर देथन और गाड़ी ला मन मारे चालू करके धोवा रखन
1: बिल्कुल भाई
0: अब एकर ले पानी तो सिराते ही लेकिन अब पानी सिरावत है ये समस्या नहीं है आने वाला कल भर पानी के समस्या हो ही ये समस्या है
1: बिल्कुल भाई संगी हो पानी हा जिंदगानी कहे जाते और पानी के महत्व हम सबो जन जानथन और ओखर उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग तीनों जानथन हमन फिर हमन ओखर पर जागरूक नहीं रहन हमला ऐसे लगते कि हमारे घर पानी हवाए पर्याप्त हवाए तो हमला का मतलब फिर हमला ऐसे नहीं करना चाहिए संगवारी हो हमला पानी के महत्व ला जानना चाहिए समझना चाहिए और आने वाला पीढ़ी पर ओला संजो के रखना चाहिए है ना खबर हमार प्रकृति में हमार धरती में तो पानी के भरमार हवे फिर पिए के जिन जल स्रोत है वो सिर्फ 2-3% ही हवे जिन मीठा पानी के स्रोत होते तेना
0: और ये हमार मन पर सौभाग्य के बात है संगवारी हो कि हमार डहर अभी पानी के अकाल उतका नहीं पड़े है और सुदूर एरिया में जाके देखूँ तो पानी के इतना किल्लत हवे कि आदमी मन बड़े बड़े गड्ढा में जाके पानी के निकाला करा
1: बिल्कुल भाई तो समझ आप मन हाँ जल संरक्षण के भूमिका ला निभाव और दूसरा तक प्रेरित करो तब जाए के बेरा हो गया हवे
0: सिरतोन
1: है ना तो काली के कार्यक्रम के बारे में जान लेता हूँ दुर्गा
0: संगी हो काली के कार्यक्रम सजी हिंदी में जेमा आप मन ला सुने बन मिली पत्र मिला और युगल गीत
1: तो संगी हो रेडियो सुनत रहा अपन संगी सुमित तिवारी
0: और दुर्गा साहूला देवा विदा
1: नमस्कार।

0: युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है, अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय है प्रधानमंत्री ला दिन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए और राज्य शासन हा ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई की रही छुट्टी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 पूरा हो गए है। ये मौका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाय प्रधानमंत्री ला सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म एक्स मा बधाई दीन हे। मुख्यमंत्री कहिने कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई में भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में पहुंचा थे। श्री शाह कहिने कि पाछू 12 बच्छर में प्रधानमंत्री हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावना

0: राज्य सरकार ह नगर पालिका और नगर पंचायत के समग्र विकास बर आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करे के घोषणा करे हे। योजना के पहली चरण में प्रदेश के 32 नगरी निकाय के चयन करेगी है। एमा बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 और बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। एमा सड़क, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्र समेत नागरिक सुविधा के विकास करे जाही। योजना के तहत काम के चुनई और निरीक्षण पर संभाग स्तरीय समिति के गठन करे गए है, जौन मला 15 दिन में कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने की आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रदेश के शहरी विकास ला नवा गति और नवा दिशा दे के काम करही। प्रदेश में हुए खरीफ सीजन के तैयारी ला देखत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसान मन के हित में निर्देश दे है। उमन कहने की ट्रैक्टर ले जुताई और सिंचाई पंप पर किसान मन ला जरूरत मुताबिक डीजल के व्यवस्था सुनिश्चित करे जाए, जेखर ले खेती किसानी के काम प्रभावित झन होवे। खबर के मुताबिक राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग ला रोके बर ड्रम और जेरकिन में ईंधन वितरण में लगे रोक में किसान मन ला छूट दे गए है, जेखर ले खरीफ काम बाधित झन होवे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। मिली खबर के मुताबिक श्री सिन्हा बिलासपुर में रखे गए भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होए बर गए रहिन। ये दौरान उखर तबियत बिगड़े में ओमल्ला बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराई गई, जिहां डॉक्टर मन ओमल्ला मृत घोषित कर दिन। रूप नारायण सिन्हा लंबा बेरा ले भाजपा संगठन ले जुड़े रहिन। उखर निधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह समेत भाजपा के बड़का नेता माना शोक जताए। राज्य शासन ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के जम्मू कार्यालय विभाग और सरकारी संस्थान मन में अब 27 के जगह 28 मई के छुट्टी रही। ये फैसला चांद दिखे के संभावित तारीख और तिहार ला ध्यान में राखत ले गए है। राज्यपाल रमन डे का आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के समीक्षा बैठक लेन। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदु पर चर्चा करेगी। राज्यपाल विशेष पिछड़ी जनजाति मन पर मंजूर करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के काम ला जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। ओमन जनजातीय क्षेत्र के रद्दा के खराब स्थिति में नाराजगी जतावत अधिकारी मला गुणवत्ता के संग सड़क बनाए बर कहिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। राज्य शासन है नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसर विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ स्थापित करे ला मंजूरी दे दे है। एकर तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डहर ले 10 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के निर्माण करे जाही। नवा रायपुर में बनैया ये विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात ला बढ़ावा दे के संगे संग नवा निवेश आकर्षित करे और छत्तीसगढ़ ला वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला ले जोड़े में विशेष भूमिका निभाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिने कि सेमीकंडक्टर तकनीक भविष्य की जरूरत है। उमन कहिने कि नवा रायपुर में राज्य के पहली सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित होए ले छत्तीसगढ़ के तकनीकी भविष्य की नींव मजबूत होही, संगे संग युवा मन ला रोजगार घलो मिलही। राज्य सरकार बस्तर संभाग के जिला में चलत बांचे 506 बिना भवन के आंगनबाड़ी केंद्र मन पर भवन मंजूरी के कामला तेज कर दे है। मुख्य सचिव स्तर में 16 मई के रखे गए समीक्षा बैठक में बस्तर संभाग के हरेक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन निर्माण ला शासन के प्राथमिकता बतावत संबंधित जिला कलेक्टर मल्ला निर्देश जारी करे गए है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर हरेक भवन पर 11,69,000 रूपया की राशि निर्धारित करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने की सरकार के लक्ष्य नक्सल मुक्त घोषित जिला मनमा आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कराना

0: करना हे। ओमन अधिकारी मन ला निर्माण काम ला गुणवत्ता के संग करे के निर्देश दीन हे। बीजापुर जिला के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आगी लगे ले करीबन 10 करोड़ रुपया ले ज्यादा के तेंदुपत्ता जल के राख हो गए। ये घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर ला करीबन 2 ले 3 करोड़ रुपया के नुकसान हो है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी बताए हैं कि गोदाम में 8 फड़ में राखे गए तेंदुपत्ता में काली आगी लग गई। उन्होंने बताए हैं कि घटना की जानकारी मिलते ज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संगे संग बड़का अधिकारी मौका में पहुंचे, फिर अभी आगी लगे के कारण के पता नहीं चल पाए। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मन जांच में जुट गए है। मिले खबर के मुताबिक करीबन 27,400 स्क्वायर फीट में फैले ये गोदाम में लगे आगी में 24 घंटा के बाद घलो काबू नहीं पाए गए है। बिलासपुर पुलिस है डिजिटल अरेस्ट के मामला में 2 झन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। दोनों आरोपी मन हा एक झीन सियान माइलोगिन ला आतंकवादी संगठन के आदमी बता के आने आने खाता में 1,04,00,000 रुपया ले ज्यादा के पैसा जमा करा ले। पुलिस दोनों आरोपी मन ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। आरोपी मन ढाले बउरे गए 900 आने आने बैंक खाता के पता चले है। ये जम्मो खाता में कुल मिला के 30,00,000 रुपया जमा है। जिला होल्ड करवाए गए है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 ले 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। ये महोत्सव में कृषि मंत्री रामविचार नेताम हा किसान और आम उत्पादक मल्ला संबोधित करही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सामला तत्वाधान में राखे गए ये महोत्सव में आम के आने किस्म के प्रदर्शनी लगाए जाही। प्रदर्शनी हर दिन मझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक लोगन मन पर खुला रही। अब थोड़ी समाचार सार में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलोग्राम के बढ़ोतरी करेगी है। नवा कीमत आज ले लागू हो गए है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के टीम है मनेन्द्रगढ़ चिनमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइन मैन ला 9,500 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। उन्हें बेमेतरा में एसीबी है जमीन के बटांकन और खाता विभाजन करके ऋण पुस्तिका बनाए के एवज में रिश्वत मांगे के आरोप में पटवारी ला गिरफ्तार करे है। अकलतरा पुलिस है पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल ला खाता धारक मन के खाता ले 19,21,000 रुपया के गबन के आरोप में गिरफ्तार करे है। और रायपुर पुलिस है कोलकाता और हरियाणा में दबिश दे की आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगैया 26 आरोपी में गिरफ्तार करे है। इकतीस ले 17,00,000 रुपया नगद चार पहिया गाड़ी समेत आने आने सामान बरामद करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बछर पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है प्रधानमंत्री ला दीन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। और राज्य शासन है ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई के रही छुट्टी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रतिक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः राजस्थानस्य सांचो सीमास्थाने गतवान। राज्यस्य सीमक्षेत्रेषु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इत्यस्य आरंभम अकरोत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाः प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर 1 क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान देशस्य विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिव मार्को रूबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। सभायाः अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसंबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः क्वाड राष्ट्रेषु सहयोगं सुदृढीकरणाय परस्परं साहाय्यं कर्तुं च अवधानं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् क्वाड देशाः मुक्त समाजाः सन्ति, ये समृद्धेः, विकासस्य च अन्वेषणे, नवान्वेषणे च सृजनात्मकतां पोषयन्ति।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विक वृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्। सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतंत्र रूपेण, बहुवादी समाज रूपेण, आपण अर्थव्यवस्था रूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतंत्रं मुक्तञ्च हिंद प्रशांत प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्तराज्यम् अस्य वर्षस्य अन्ते क्वाड सहभागिभ्यः ईंधन सुरक्षा मञ्चस्य कृते आतिथेयत्वं करिष्यति, येन अस्य विस्तारः अधिकं भवेत्। क्वाड देशाः दृढमूल्यानि सम्बद्धहितानि च धारयन्ति इति कथयित्वा सचिवः रूबियो अवदत् यत् क्वाड सहभागितायाः कृते अमेरिका देशः गभीरतया प्रतिबद्धः अस्ति। जापान देशस्य विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी इत्येषः स्वस्य संयुक्त वक्तव्ये हॉर्मुज जलसंधौ स्वतंत्रं सुरक्षितं च नौ परिवहनं सुनिश्चेतुं तथा पश्चिम एशिया देशे स्थिरतां आनेतुं कूटनीतिक प्रयासानां महत्वं प्रतिपादितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्री पेनी वोंग अवदत् यत् क्वाड इत्यनेन क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप इत्यस्य माध्यमेन क्वाडतः प्रशांत प्रदेशं प्रति अद्य पर्यन्तं प्रबलं प्रतिबद्धतां घोषितमस्ति। क्वाड देशाः अपि विधि प्रशासनस्य, सार्वभौमत्वस्य, प्रादेशिक अखण्डतायाः च रक्षणार्थं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तः। क्वाड विदेश मंत्रिणां सभया संयुक्त वक्तव्ये उक्तं यत् क्वाड देशाः पश्चिम एशियायाः स्थित्यां चर्चयन् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य कूटनीतिक प्रयासानां समर्थनम् अपि च चिरस्थायि शान्तेः आशां च पुनः दृढीकृतवन्तः। नौपरिवहन अधिकारिणां स्वतंत्रतायाः विषये संयुक्त राष्ट्र संघस्य समुद्र विधि सम्मेलनस्य अनक्लोस इत्यस्य प्रतिबिम्बता अन्ताराष्ट्रिय विधि पालनस्य महत्वं, हॉर्मुज जलसन्धिं तथा रक्तसमुद्रस्य माध्यमेन वैश्विक वाणिज्यस्य, सुरक्षायाः अविराम प्रवाहस्य च महत्वं ते पुनरुद्घाटितवन्तः। भारत प्रशांत ऊर्जा सुरक्षायाः विषये स्वस्य वक्तव्ये भारतं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका च सुसाक्रियमानं, स्थिरं, पारदर्शिकं, सुरक्षितं, स्थितिस्थापकत्वं च ऊर्जा आपणं सुनिश्चेतुं दृढ़ प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां, दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं, खननं, प्रक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवस्य मार्को रूबियो इत्यस्य च मध्ये दिल्लीनगरे ऐतिहासिक समन्वयस्य आदान प्रदानम् अभवत्। विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् इयं संरचना स्थितिस्थापकान्, विविधाः च आपूर्तिश्रृङ्खलाः सुदृढां करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये सीमा सुरक्षा बलस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अनेन सैन्यबलेन न केवलं सीमायाः रक्षणं कृतम् अपि तु सीमवर्ति जनपदेषु निवसतां जनानां मनोबलम् अपि वर्धितम्। सीमा सुरक्षां पूर्णतया सुदृढां कर्तुं सीमा सुरक्षाबलेन प्रशासनं नागरिकान् च संयोज्य चतुस्तरीय ग्रिड इत्यस्य निर्माणाय श्रीशाहेन विशेषम् अवधानं प्रदत्तम्। श्रीशाहः अवदत् यत् अद्य बीकानेर नगरे नगरस्य समीपे सीमा सुरक्षाबलस्य सांचु पोस्ट इत्यत्र आयोजिते प्रहरी सम्मेलने सम्बोधयनासीत्। सः अवदत् यत् अस्याः चतुस्तरीय ग्रिड व्यवस्थायाः साहाय्येन सीमायाम् उद्भूतानां विभीषिकानां पूर्णशक्त्या प्रतिकारः भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां गंगटोक नगरं सम्प्राप्तवती। स्वकीया यात्रावधौ राष्ट्रपतिः महिलानां कृते समर्पितं पिंक बस यानानां उद्घाटनं करिष्यति, यस्योद्देश्यं राज्ये सुरक्षितं सुलभं परिवहन सौकर्यं इत्यस्य परिष्कारः भवेत्। सा सिक्किम राज्यस्य समृद्धिं पारिस्थितिकं पुष्प परंपरां च द्रष्टुं रिड्ज पार्क इत्यस्य आर्केडियम अपि गमिष्यति। पश्चात् दिने सा नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी इत्यत्र गमिष्यति, यत् दुर्लभाः पांडुलिपीनां बौद्ध सांस्कृतिक कलाकृतीनां च संरक्षणाय प्रसिद्धः अस्ति। भारतं समेत्य समग्र विश्वात् कोटिशः जनाः अद्य सऊदी अरेबिया देशे हज यात्रां कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः पञ्चदिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रायाः आरम्भः लक्षशः हज तीर्थयात्रिणः मीनानगरे रात्रिं व्यतीतवन्तः। अधुना ते अराफात क्षेत्रे मुख्य हज अनुष्ठानार्थं प्रार्थनार्थं च समागच्छन्ति। ते तत्र पूर्णदिनं यापयन्ति प्रार्थयन्ति च। तीर्थयात्रिणः निमरा मस्जिद इत्यत्र खुत्बाय हज अर्थात हज प्रवचनं श्रुतवन्तः। ततः सायंकाले ते मुजदलीफा नगरं प्रति प्रस्थानात् प्राक् अपराह्णे सायंकाले च संयुक्तरूपेण प्रार्थनां कुर्वन्ति। भारत ऋतुविभागेन अद्य दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता। राष्ट्रियराजधान्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः श्वः पर्यन्तं यथावदेव भविष्यति इत्यपेक्षते, यत्र अधिकतमं तापमानं 44 46 डिग्री सेल्सियस परिमितं यावत् भविष्यति। अद्य हरियाणायां चण्डीगढे पूर्वी मध्यप्रदेशे पंजाबे उत्तरप्रदेशे विदर्भे तथा पश्चिम राजस्थान राज्ये च तीव्र उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति भारत ऋतुविभागेन पूर्वानुमितम्। अत्रान्तरे अद्य श्वः दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः केरलराज्यं प्राप्स्यति इत्यपेक्षते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायाम् गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:30 में है, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। प्रिय श्रोताओं, दहेज का अर्थ उस राशि वस्तुओं से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर अपनी इच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव में या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा वर पक्ष को उपहार देना दहेज है। दहेज एक प्रथा नहीं है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ जी, रुको अभी आती हूँ।
0: अरे कल किरण को देखने वाले आएंगे और तुम बाजार से बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना, और सुनो पंकज को पैसे दे देना और वो मिठाई ले आएगा।
1: ठीक है जी।
0: आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
2: अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका मकान सही जगह पर बना हुआ है, फिर पता पक्का हो तो कौन भटकता है।
0: सही कहा आपने। लीजिए भाई साहब मिठाई खाइए। लो बेटा आप भी ले लो ना।
2: जी भाई साहब, ये है हमारा लाडला बेटा जो कि इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है और 50,000 महीने की तनख्वाह है इसकी।
0: अच्छा बेटा, प्रमोद कौन सी कंपनी में हो?
3: जी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ।
0: हमारी बिटिया किरण भी बीए कर रही थी, लेकिन उस दौरान वायरल बुखार के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाई।
4: अरे कोई बात नहीं भाई साहब, परीक्षा ही तो नहीं दे पाई, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर परिवार को संभाल ले और बड़ों की इज्जत करे। पर भाई साहब बिटिया नजर नहीं आ रही।
0: जी अंदर ही है बिटिया, अभी बुलाते हैं।
4: आओ बिटिया यहाँ बैठो। भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी तुम क्या क्या काम कर लेती हो?
5: जी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है।
4: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब तो खूब निभेगी हमारी, हमें तो भा गई हो आप। क्यों बेटा प्रमोद?
3: माँ आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है।
2: अरे बेटा शादी तो तुम्हें करनी है, तुम आपस में बात कर लो। शादी से पहले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहता है।
1: हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जमाना बदल गया है। किरण जाओ बेटा अंदर और दोनों आपस में बात कर लो।
4: बहन जी अभी कुछ दिनों पहले मेरे चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपनी बिटिया को खूब सोने से लाद कर भेजा था और दान दहेज भी खूब सारा दिया था।
2: भाई साहब सुनिए, दहेज तो आशीर्वाद होता है जो बिटिया अपने साथ लाती है, और सभी माँ बाप ये सब तो करते ही हैं।
0: जितना हमसे हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कमी थोड़ी करता है।
4: हम तो साफ कहते हैं कि लेन देन की बात पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जिक जिक सही नहीं लगती।
0: बहन जी हमसे जितना बनेगा हम जरूर करेंगे।
2: भाई साहब वैसे तो हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, एक तो 5 लाख रुपए और साथ में गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन मेरे मित्र लालू ने तुम्हारी बिटिया के बारे में बताया, और लालू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
0: जी वो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन भाई साहब हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा।
2: अरे भाई साहब लड़की गाड़ी तो लाएगी ना साथ में?
0: भाई साहब अभी हमारा एक बेटा भी है, उसके बारे में भी तो सोचना है ना।
4: अरे भाई साहब आप अपने लड़के की चिंता मत करो, आपके लड़के को भी तो दहेज मिलेगा और अभी तो वो बहुत छोटा है।
0: भाई साहब ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए नगद और गाड़ी कर देंगे।
2: अरे ऐसी कोई चिंता नहीं है, 2 लाख रुपए बाद में दे देना, अब तो हम समधी बनने ही वाले हैं।
6: श्रोताओं इन सब बातों के चलते दोनों परिवारों की सहमति हो गई और अंदर से किरण और प्रमोद बाहर आते हैं।
4: लो बच्चे भी आ गए, तो बताओ प्रमोद बेटा।

0: लड़की कैसी लगी?
1: माँ, मुझे लड़की पसंद है, आप एक बार किरण से भी पूछ लीजिए।
2: अरे बेटा, किरण से क्या पूछना, वो हमारी बात कभी नहीं टालती।
0: अरे नहीं, फिर भी बिटिया की राय भी जरूरी है, बोलो बेटा।
3: जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
4: ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। बिटिया की कुंडली भिजवा देना, हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे।
3: और फिर किरण की माँ और पिता महेश जी के परिवार को छोड़ने के लिए गेट पर जाते हैं। और उस दिन किरण की माँ बहुत ही खुश थी। किरण की माँ महेंद्र जी किरण के कमरे में जाते हैं और किरण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले,
2: बेटा तुम्हें लड़का कैसा लगा?
5: ठीक है माँ, अगर आप लोगों की पसंद है तो मेरी भी पसंद है।
6: मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली, लेकिन एक चिंता मुझे सता रही है, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा?
2: देखो जी, लड़का अच्छा है और कमाता भी है और नशा भी नहीं करता, भला आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। और रही दहेज की बात, वो तो बेटी के बाप को देना ही पड़ता है, समाज वालों को भी तो मुंह दिखाना है, गांव की जमीन गिरवी रख देते हैं और बाकी इंतजाम बाद में कर लेंगे।
6: तुम ठीक ही कह रही हो, भला बेटी का बाप होना आसान नहीं है, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे भी किरण को घर परिवार अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छा बीतेगा।
3: प्रिय श्रोताओं, कुछ दिन बाद किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब काम अच्छे से निपट गए। और किरण के जाने के बाद घर की रौनक चली गई, घर में जो चहल पहल थी उसकी जगह घर अब सूना सूना हो गया। किरण के पिता रोज अपनी बेटी को याद करते थे और कहते थे, जब इस घर में किरण थी तो इस घर में कितनी रौनक थी। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक उठे।
2: देखो जी, जब से किरण गई है, जब भी किरण को फोन करो तो उसकी सास फोन उठाती है और फिर थोड़ी बात होती है तो बात खुलकर नहीं हो पाती है।
4: हेलो हेलो, अरे भाई साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो वो पैसे नहीं दिए अभी तक, क्या इरादा है, अपनी जुबान से फिर गए क्या?
6: अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो पैसे आपको देने थे वह छोटे बेटे की बीमारी में लग गए, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारे घर की हालात ठीक नहीं है।
4: भाई साहब, ये सब नहीं चलेगा, अपनी बेटी को ले जाओ, आपकी बेटी इतनी कमजोर है कि ना तो घर के कोई काम करती है और ना ही टाइम से उठती है, उसके भी रोज के नखरे हैं।
6: अरे भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, शादी की है हमने अपनी बेटी की, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, हमारी मजबूरी समझिए ना।
4: हमें कुछ नहीं सुनना, बहाने नहीं चलेंगे, पहले ही कहा था हमने कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने शादी कर ली।
6: हेलो हेलो, लगता है बिटिया हमने गलत घर में बिहा दी है, मुझे लगा था कि वे भले लोग हैं, हमारी मजबूरी समझेंगे, लेकिन वो तो बिटिया को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं।
2: अरे ये तो बड़े लालची निकले, हमारे घर की हालात भी नहीं समझते। तुम ऐसा करो, किरण को ले आओ, एक तो किरण से काफी महीनों से बात नहीं हो पाई, पता नहीं हमारे किरण वहाँ खुश है भी या नहीं।
0: बेटा प्रमोद, अब तो हमारे सब्र का बांध भी टूट गया है, तू किरण को कहता क्यों नहीं कि उसके बाप ने जो हमसे वादा किया था, जो उन्होंने हमें दहेज में देने की बोली थी, और अब वो रोज बहाने बना रहे हैं।
7: माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ किरण को। किरण किरण जल्दी बाहर आ।
8: जी बोलिए।
7: मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कह दे वो पैसे भेज दें।
8: सुनो जी, अभी तो हमारी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा और मेरे भाई के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, वो आपको इतने पैसे कहाँ से देंगे?
7: अच्छा, जुबान चलाती है।
8: मुझे मत मारो।
0: प्रमोद एक काम कर, अंदर से तेल लेकर आ और लगा दे आग इसको।
7: ठीक है माँ, रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा।
8: नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी, बचाओ कोई।
9: अरे ये प्रमोद की घर से कैसी आवाजें आ रही है, चल के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो किरण को आग लगा रहे हैं। उसको बुलाता हूँ।
10: हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ, हमारे पड़ोस में एक बहू को उसकी सास और उसका पति

0: मिलकर आग लगा रहे हैं। आप जल्दी आइए।
1: ठीक है, हम अभी आते हैं। अगर हमें सही समय पर जानकारी ना मिलती तो आज आपने तो इसे मार ही दिया था। इसके लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
2: अरे किरण, ये क्या हो गया बेटा?
3: पापा, पापा, पापा, पापा।
0: अरे भाई साहब, मैंने तो किरण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी।
4: अरे कारण तो बताओ कि क्या हुआ है।
5: सर, हमने कुछ नहीं किया, किरण ने खुद आग लगाने की कोशिश की है।
1: क्या किरण, तुमने सच में आग लगाने की कोशिश करी है क्या?
3: सर, मेरे पति ने और मेरे सास ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है सर इन पड़ोसियों का, जो मेरी आवाज सुनकर इन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला। मेरे पति को मेरे पापा गाड़ी नहीं दे पाए और मेरी सास को नगद कैश।
1: हवलदार, इन सबको अरेस्ट कर लो और अब इनको थोड़ा हवालात की हवा खिलाओ। और माताजी, अगर इस जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवलदार, डालो हथकड़ी और ले चलो इनको।
6: और इस घटना के बाद किरण के पिता किरण को अपने घर वापस ले जाते हैं और किरण अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रमोद और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

0: दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश का कानून व्यवस्था भी इस प्रकार के मामलों में बहुत सख्ताई बरत रहा है। दहेज अधिनियम 1961 सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी और कुछ सालों की सजा सुनाई जा सकती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।

0: स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस समिति में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर समीका रवि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक तरीके से होने वाले डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बिगड़ी चुनौती होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, निर्णायक और जन केंद्रित नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश किया है।
8: 12 वर्षों तक उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर गरीब कल्याण योजना चलाकर सारे गरीबों के लिए नए भारत का निर्माण उन्होंने किया है।
7: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रालय में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद विमानतल से सीधे मंत्रालय पहुंचे और इस बैठक में शामिल हुए। राज्य शासन ने नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसरे विषय आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में बनने वाला यह विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने और छत्तीसगढ़ को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 तथा बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हों। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जरीकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है, जिससे खरीफ कार्य प्रभावित न हो। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का आज निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा बिलासपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूप नारायण सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कराने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरी ईद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया है। इस घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर को करीब 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी ने बताया कि गोदाम में 8 फड़ में संग्रहित कर रखे गए तेंदुपत्ता में कल आग लग गई। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम जांच में जुट गई है।
1: आठ समिति के यहाँ पर लगभग 50,000 बोरे के आसपास यहाँ रखे जाने थे और अभी ट्रांसपोर्ट जो हुआ था लगभग 25,000 के आसपास तक हो पाया था। तो 25,000 बोरे के लिए हमारे सारे प्रभारी यहीं थे। यहाँ पे किसी तरह का कोई आग से खाना बनाने का, कोई बिजली कनेक्शन, ये सारी चीजें नहीं रखी जाती यहाँ पर। तो ये पूरी एहतियात बरती गई है, लेकिन अब कारणों का पता लगाया जाएगा, इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो आग बुझाने की कार्रवाई अभी ट्रकों से हो रहा है, इसके बाद हम लोग फिर पूरी तरह से इसमें जांच में लगेंगे।
7: जानकारी के अनुसार करीब 27,400 स्क्वायर फीट में फैले इस गोदाम में लगी आग पर 24 घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री चौहान के सार्वजनिक जीवन, आत्मीय संबंधों और कार्य अनुभवों पर आधारित है।

0: इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री चौहान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुंचाना एक प्रेरणादायी पहल है। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,00,000 रुपए से अधिक जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर 30,00,000 रुपए जमा है, जिसे होल्ड करवाया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करणों और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 29 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नई दर आज से लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा में नवनिर्मित मित्र मिलन चौपाटी का लोकार्पण किया और राज्य के विभिन्न जिलों में सीएम हेल्पलाइन योजना के संबंध में अधिकारियों को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH पर भी सुन रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर का लिखा यह गीत, जिसे संगीत दिया जतिन ललित ने, और फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आप सुन रहे हैं अपने रेडियो और मोबाइल सेट पर आकाशवाणी रायपुर और सरायपली केंद्रों का प्रसारण। और लीजिए आप सुनिए चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म बाजी से। गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत है अनु मलिक का। तो लीजिए सुनिए बाजी, इस फिल्म का ये गीत।

ए हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना नवाब आरजू का लिखा ये गीत, जिसे संगीत दिया था दिलीप सेन और समीर सेन ने, और फिल्म का नाम था हकीकत। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये आखिरी गीत लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में। रानी मलिक का लिखा ये गीत है, जिसे संगीत दिया अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है टक्कर।

प्यार की। टक्कर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में, और इसी गीत के साथ श्रोताओं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं 8:00 और 9:15 पर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 7:21 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम लक्ष्मीकांत भाई,
1: राम राम लाल जी भैया, संगे संग चौपाल सुनैया हमर जमो संगी संगवारी मल्ला हमर दोनों के राम राम, राम, राम। भैया बताओ भाई, तुम्हार कति गर्मी कते खावा है और का काम बुत चलत है?
0: लक्ष्मी भाई देख, ऐसो के गर्मी है तो बीते बछर के जम्मो रिकॉर्ड ला तोड़ दे जी। बिहनिया के जिहा 9 ले 10 बजीस तहन घर ले बाहर जाए के थोरको मन नहीं करे, अब एकरे सेती बड़े फजल ले उठ के खेत जाथन, काटा खुट्टी ला बिन के मेड़ पार के तैयारी करत, घंटा दू घंटा काम करके घर में आराम चलत है भाई।
1: सिर तो गोठिया थस, अब भैया गर्मी के मौसम में सब परेशान हो जाते हैं, कहूँ आए जाए के हो गए तो बिहनिया ले निकलन है ना, अपन संग में पानी बाटल जरूर रखन, रास्ता में गन्ना रस आम पना है ना मही मिला थे छाछ मिला थे तो हम लेके वाला पी लेवन, काहे देखे कर ले हमार शरीर है ठंडा रही और गर्मी ले लड़े के हमार जो शरीर है वाला क्षमता मिली, थोड़ी भी चक्कर आते बुखार आवत है तो लू होए के जो संभावना हवा में तो ऐसे में हम डॉक्टर तीर जाके अपन जाँच करा सकथन।
0: और देख लक्ष्मी भाई, ऐसे है कि गर्मी के असर है मनखे संग में पशु पक्षी है, रुख रही है, साग भाजी है और हमर खेती में घलो देखेल मिलते
1: हैं।
0: कतकुन किसान संगी मन अभी ये साग भाजी के संग में खीरा है, ककड़ी है, कर खेती में लगे हवे, अब ये सब लभी लू ले बचाना बहुत जरूरी है, तभी तो हम खेती ले आमदनी पा सकबो, और यदि इनकर देखभाल सिंचाई के व्यवस्था बने नहीं करबो तो फिर भारी नुकसान घलो झेले पड़ सकते
1: हैं। और सिंचाई पानी के संग संग शेड नेट है ना, ये घलो लगावन जेकर गर्मी के जो सीधा असर पौधा मन ऊपर हवे झन पड़े, और पौधा हर झुलसे ले बांच जाते इसे हम शेड नेट के उपयोग करथन, ता संग में बीच बीच में हम पोषक तत्व के जो छिड़काव हवे वहू ल करत रहन हमार जो अनुशंसित हवे हमार विशेषज्ञ मन कति ले होकर हिसाब ले हम प्रमुख रूप ले जब हम क्यारी के तैयारी करथन ता पौधा हर छोटे है तो ओकर ऊपर हरा रंग के नेट लगावन जे हर गर्मी या तेज जोन प्रकाश हवे तेकर असर 30 से 40% तक कम कर देते, ऐसे हमारे विशेषज्ञ मन तो बताबे करते हैं। और नवा पौधा पर यह ठीक भी रही थे, एक जोन असर होते कि पौधा मन झुलसे ले बांच जाते भाई
0: बांचते। और देख का है लक्ष्मी भाई कि माटी में नमी बनाए खातिर मल्चिंग घलो करना चाहिए,
1: तो
0: जेकर ले जड़ हर ठंडा बने रहा है, और एकर बर पौधा मन के बीच में पेरा है, सूखा पत्ता है
1: या पुराना
0: पौधा के अवशेष है, एकर एक परत लगा देना चाहिए ताकि पौधा के जो न जड़ है निचला स्तर कहना चाहिए उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बने रहे।
1: सही समय में सिंचाई करथन तो ओकर बड़ लाभ भी हवे भैया, बिहानिया थोड़ी की जल्दी सिंचाई करन है ना, दोपहर के सिंचाई करे ले माचन संगवारी हो, काहे कि हमार जोन गर्मी के समय हवे तो अधिकतर जोन पानी हवे हमार सिंचाई करथन ते हर भाप बन के उड़ सकते, पौधा के जड़ तक भैया पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंची अगर हम गर्मी में सिंचाई करथन तो ओकरे बर संगवारी मन भी कहथन वैसने संझा के बेरा दिन ढले के बाद सिंचाई करना ठीक रहते या बिहनिया बिहनिया हम उठ के कर लेवन, यदि सिंचाई में टपक पद्धति या स्प्रिंकलर के प्रयोग करथन हम गर्मी दिन है कहके, वैसे तो सामान्य हमेशा हमार जो सतही सिंचाई की तुलना में टपक सिंचाई स्प्रिंकलर विधि में बड़ पानी बांचते कि हमारे विशेषज्ञ बताबे करते हैं हमला, हाँ फिर हमला हमेशा हर मौसम में एक उपयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभ के है, फिर गर्मी में विशेष पानी के बड़ कमी रही थी और ऐसे में हम एक उपयोग करते हैं तो पौधा मन ऊपर पर्याप्त पानी पड़ते और मन उपयोग भी करते हैं।
0: अब ऐसे है भाई कई टपक पद्धति का है कि पानी सीधा टपक के पौधा के जड़े तक जाते हैं है ना, अब इसने स्प्रिंकलर है तो पानी यहाँ जड़ के माध्यम से पौधा तक पहुँचते, लेकिन स्प्रिंकलर है का है कि ऊपर लघलो गर्मी ले बजाते
1: हैं,
0: और लू ले जब पौधा बाँची तभी तो बढ़िया फल फूल दी भाई है ना, और पौधा लग गर्मी ले हो या नुकसान ले बचाए खातिर हमला ये कुछ उर्वरक के भी उपयोग करना चाहिए, जैसे पोटास है जिसमें SOP MOP NPK के घोल है, एकर 2% छिड़काव हमेशा करना चाहिए, एकर ले का है कि फूल के झड़ना कम होते और फूल हर नहीं झड़ी त फल ज्यादा लगही और पैदावारी में वृद्धि होई। संग में एकर प्रयोग ले फल के आकार में घलो वृद्धि देखे जाते
1: हैं। और खेत के उत्तर पश्चिम दिशा में हम बड़े और घना पेड़ लगा सकथन हा, जेकर ले कि तेज हवा चलत है या लू चलत है वह है ना, तो संग में जो भारी गर्मी हवा एकरो ले हमला बचाव हो जाही।
0: बिल्कुल
1: गर्मी के मौसम में फसल ला गर्मी ले बचाए खातिर अतिरिक्त जोन की कीड़ा बीमारी हवा एकर जोन प्रकोप हवा ओकरो ले बचाना बड़ जरूरी हवा। एकर बर हमला ऐसे रसायन के प्रयोग करना चाहिए जेकर असर हर जल्दी समाप्त हो सके। ज्यादा समय वाले जोन रसायन हवा वह पौधा ला जहरीला बना देते जेन हमारे शरीर में जाके कत्तो कन रोग बीमारी ला जोन जन्म दे सकते।
0: वैसे है भाई कि जहाँ रोग रही लगीस और खास तौर पे गर्मी के जो मौसम है एमे कोई रोग रही लगीस ना तो जो कीड़ा रहते ओ मन हा फल के भीतर में खुसर जाते। और खुसरे के बाद का है कि गर्मी के देखा तो हम मन नहीं निकले, जैसे शुरू में बात करत रहे हैं कि ज्यादा गर्मी रहते तो हम मन ला घरे में रहना चाहिए ऐसे कह के, तो ओ मन भी अपन बचाव करते गर्मी ले और ओमे बैठे बैठे जो है पूरा फल खा देते नुकसान पहुँचाते। और वैसे तो कोनो भी मौसम होए चाहे ज्यादा धूप पानी कीड़ा बीमारी हर हमेशा हानिकारक होते हैं ना। जब हम खेत की तैयारी करत हन तो ऐसे ढाल नुमा खेत बनावन ताकि अतिरिक्त पानी हर आसानी ले खेत ले बाहर निकल जाए।
1: हाँ, पौधा मन के जो जड़ हवा वो हर सड़े ले बांच जावे और खेत में हम ढंग ले काम कर पाने से।
0: और संग में का है कि बेरा बेरा में अपन निंदाई गुड़ाई करत रहन ताकि जो बन बूटा है वो फसल ला नुकसान झन पहुंचाए। पौधा के स्वास्थ्य के ध्यान के संग थोड़ी भी कीड़ा मकोड़ा या बीमारी नजर आईस तो उकर बेरा राहत उपचार करना बहुत जरूरी होते।
1: भैया गोट बात आगू करबो फिर ये संदेश सुन लेते हैं।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: भैया अब हम गोठियात रहें, गर्मी ज्यादा हवा है, तब हमर जो रुख रही हवा है, हमर फसल हवा तेला कैसे बचावन, और हम बिहनिया बिहनिया काम बुता करत हन, मझनिया तो निकले ही नहीं सकत हन, क्योंकि अभी जुलाई आई तो हाँ पानी गिरे के चालू हो जाई हाँ, तो बरसात के मौसम में हम सुग्घर ढंग ले पेड़ पौधा लगा सकथन।
4: बिल्कुल,
3: तो हम ओकर खातिर अभी ले तैयारी भी कर सकथन है ना, कोनो काम ला करे पहले ही तैयारी करे पड़ते। तो अभी ऐसे है कि हम पेड़ पौधा के जो कटाई हवा हो कुछ न कुछ कारण ले होत हवा है, चाहे शहरीकरण आड़ लेके होवे, चाहे और कोनो जिनिस कारण ले होके हैं, तो हम ये कहथन कि गर्मी है दिनों दिन बढ़ात हवा, हर साल 1-2 डिग्री हमारे जो तापमान हवा ते बढ़ जाते हैं, तो हम कोशिश करन कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दाई बरसात में हम लगाबन हाँ। और देख गोट बात करत हमारे बेरा हो गए हमारे किसानवाड़ी के प्रायोजक हमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम है भारत के किसान, हम
1: किसान, हम
2: किसान।
3: लक्ष्मी भाई।
4: हाँ भैया।
3: आज के दिन क्रम होते हेलो किसान वाणी के, तो हमर किसान संगी मन लगलो गोरो होई अपन फोन कार्यक्रम के, है ना। तो आज क्रम होते हेलो किसान वाणी के, जेमे आप मन के प्रश्न के जवाब मिलते। और आज के विषय है खरीफ पूर्व कृषि यंत्र के रख रखाव संबंधित योजनाएं। और विशेषज्ञ है डॉक्टर विनय कुमार नायक, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे, गोट बात करे हैं हमर लक्ष्मीकांत भाई, तकनीकी सहयोग अंजू विजयन और प्रियंका डिक्सेना के।

0: किसान संगवारी हो। किसानवाड़ी मा हमर मंगलवार के क्रम होते हेलो किसानवाड़ी के, जेमा हमला बेरा के जोन हमर जो प्रश्न है ओकर सुघर समाधान मिलते। ता आज हमर हेलो किसानवाड़ी मा विषय हावे खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रख रखाव और संबंधित योजनाएं। आप मन के जिज्ञासा के समाधान खातिर हमर बीच विशेषज्ञ हावे डॉक्टर विनय कुमार नायक जी। आप मन विषय वस्तु विशेषज्ञ हावे कृषि अभियांत्रिकी के कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्गम। सबले पहले डॉक्टर साहब आप मन के कार्यक्रम में स्वागत करत हैं। राम राम।
1: राम राम भैया।
0: हेलो किसानवाड़ी।
2: हेलो किसानवाड़ी जी। राम राम भैया।
0: राम राम भैया, कहाँ ले बोला था?
2: मैं मदनपुर कवर्धा के श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: जी साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज मोर प्रश्न इसे कृषि उपकरण पर सब्सिडी कहाँ कहाँ से मिलही ओखरे बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी देते।
0: जी आप मन के प्रश्न बड़ सुघर है और हमार विशेषज्ञ हमार बीच हावे, आप मन के प्रश्न के उत्तर देवत है।
1: बहुत अच्छा सवाल करे हो भैया आप मन। हमन हा नया तकनीक के मशीन शासकीय सब्सिडी के माध्यम से लेना चाहतन। एकर लिए हमन कृषि चैम्स जो छत्तीसगढ़ शासन के जो पोर्टल है ओमे और सब मिशन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के नाम से भी आते जो हा एग्रीकल्चर मशीनरी वेब पोर्टल में जिमें केंद्र सरकार के माध्यम से भी आप मन एकर पंजीयन करके अपन समय से जो भी आप मतलब मशीन चाहिए ओकर बारे में आप मन हा क्रय कर सकत हो। एकर लिए आप ला और अधिक जानकारी चाहिए तो अपन संबंधित जो कृषि विभाग है ओकर ब्लॉक ऑफिस में अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से भी ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हो और ऑनलाइन के माध्यम से करना है तो आप सीजी चैम्प्स के या सीजी एग्रीकल्चर पोर्टल के माध्यम से भी जाके चॉइस सेंटर से या स्वयं के माध्यम से भी कर सकत हो। और पंजीयन करे के उपरांत जो है आप मन में अपन जो सामान्य जानकारी है ओला भरना है। एकर साथ साथ आप माला अपन आधार कार्ड लगी आप मन के नक्शा खसा B1 और साथ ही साथ आप जो है इमें अपन जाति प्रमाण पत्र ये सब जानकारी डाले के बाद आप माला एक पंजीयन नंबर मिली। वो पंजीयन नंबर जब आपके वेरीफाई हो जाए तो फिर आप ला अपन मेक और मॉडल के मशीन चुने के भी ऑप्शन मिली और ओला चुन के फिर आप हा हेला मशीन ला क्रय कर सकत।
2: जी जी धन्यवाद।
0: हेलो किसानवाड़ी।
3: हेलो किसानवाणी।
0: राम राम जी।
3: राम राम भैया। राम राम। मैं धनी राम चंद्रवंशी बोला था भैया लखनपुर कवर्धा।
0: जी जी धनी राम चंद्रवंशी जी, आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हैं। बताओ आज के प्रश्न का है अपन के?
3: जैसे खेती किसानी के ट्रैक्टर उक्टर सब ओखर मशीन और आज औजार तिले रख रखाव के लिए कैसे रखे जाए?
0: जी तो चंद्रवंशी जी आप मन बड़ सुघर प्रश्न पूछे है और हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच स्टूडियो में हावे, आप मन के जो प्रश्न है ओकर जवाब देवत हैं।
1: भैया ये समय जो है हमन हा अभी आने वाला जो हमारे खरीफ के मौसम आते है जिनमें हमन हा अपन फसल के बुआई करबो तेकर लिए हमन अपन संसाधन ला कैसे से मतलब सुरक्षित रखा ना ओकर रख रखाव करके फिर ओला अच्छा से उपयोग करें। तो एमे जैसे अगर आप ट्रैक्टर के बारे में करहो तो ट्रैक्टर में ओकर आयल लेवल वगैरह जो एकदम सामान्य है ओकर बारे में है कि हम ओकर आयल लेवल ला चेक करें। अगर आयल लेवल कम है तो ओकर हमन जाँच करे के बाद ओमे आयल रख डालन। ओकर जो फिल्टर है प्राइमरी फिल्टर एयर फिल्टर आयल फिल्टर एला चेक करके एला बदले पर हमन बदलना है। साथ ही साथ हमला बैटरी के जगह ला देखना है कि कहीं ओमे रस्टिंग तो नहीं हो गए है कुछ जम तो नहीं गए है तो ओकर बैटरी पैनल पोर्टला खोल लेथन और ओला सफाई करके ओमे हल्का वेसलिन लगा के ओला फिर से कस देथन जेकर से हमार सेल्फ के जो परेशानी है ट्रैक्टर है चालू हो बंद हो में ये नहीं हो। साथ ही साथ हमला हाइड्रोलिक आयल ला चेक करना दी थे काबर कि हम अभी जितना भी कृषि यंत्र के उपयोग करबो तो में हमारा हाइड्रोलिक आयल सही रहे से हमार मशीन आसानी से उठी कहीं भी हमारा कोई भी कार्य करे में परेशानी नहीं हुए।
3: भैया
1: जी।
0: हेलो किसानवाड़ी।
4: भैया नमस्कार
0: जी। राम राम भैया, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था?
4: नर्मदा धाम

0: राम सुरसुली पोस्ट नांदा जिला बालोम ले कैलाश से बोल
1: जी जी कैलाश भैया अपन के कार्यक्रम में स्वागत करत हन। बताओ आज के विषय जुड़े का प्रश्न है।
0: जैसे भी खरीद आने वाला है मतलब साफ पता चले खेत के कैसे ढंग से करना है ताकि वो किसानी के लिए अच्छा मतलब सुविधा हो ताकि परेशानी मत लगे बारे में जानकारी
1: जी आप मन के जो प्रश्न हवा कर जवाब ला हमारे विशेषज्ञ देवत है।
2: बहुत अच्छा सवाल करे हो भैया आप। ये समय में का है कई बार हमन अपन ट्रैक्टर है या अन्य यंत्र है जेला हमन हा सुरक्षित रख दे रही थन और कई बार सुरक्षित नहीं रखे रहन ढक के या छायेदार जगह में तो कई बार ओकर चलाए के पहली जो परेशानी आते तो ट्रैक्टर के तो बारे में मैं हाँ आप मन जो पूछा तो मैं ये है कि हमला ट्रैक्टर के इंजन ऑयल के लेवल चेक करना है। इंजन ऑयल अगर कम है तो फिर से भरना है ओकर लेवल तक के ओकर प्राइमरी फिल्टर है एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर ये मला चेक करना है। ब्रेक ऑयल वगैरह चेक करना है साथ में साथ हाइड्रोलिक ऑयल भी चेक करना है और हवा ट्रैक्टर के हवा काबर की अभी ऑपरेशन करबो जब मतलब हमन हर खेत में ट्रैक्टर चलाना है तो समय में ट्रैक्टर फिसले मत एक लिए भी हमला ओकर हवाला भी दिए हुए जो उचित मानदंड कंपनी के दे रही थे ओकर हिसाब से ही हमला वो ला पूरा करना है।
1: हेलो किसानवाड़ी।
3: हेलो किसानवाणी।
1: राम राम भैया कौन बोला था?
3: नमस्ते सर जी मैं राजेंद्र कुमार दामले गुठियास सिरमुंदर सर जी।
1: जी जी भैया आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन।
3: धन्यवाद सर। आज के विषय है सर विषय के अनुसार हमला जानकारी एक तो दे देते हो कल्टीवेटर के रख रखाव पर कैसे टाइप से करना है का करना है तेकर हिसाब से तो बता देते हो सर जी।
1: जी आप मन के प्रश्न के जवाब ला हमारे विशेषज्ञ देवत है।
2: बहुत अच्छा सवाल भैया। ये असल में हमन हर खेती के जब तैयारी करथन तो कल्टीवेटर एक बहुत अहम मशीन हरे हमर मन बर किसान भाई मन बर कि हमन ओकर से जोताई वगैरह के पूरा काम लेथन लेकिन हमन सामान्य से उमे बहुत ज़्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं है लेकिन जो ध्यान दे लायक बात है जो कर फाल है कल्टीवेटर के जो फाल है एला हमन ला उपयोग से पहले देखना है कि ये बहुत ज़्यादा घिस तो नहीं गए है टूट फूट तो नहीं है ओकर नट बोल्ट मन सही टाइट है कि नहीं है काबर की एकर कारण से हमारे ट्रैक्टर चालन में भी दिक्कत होते और हमारे ट्रैक्टर में लोड बढ़ते तो अगर आपके फाल टूट गए है या घिस गए है बहुत ज़्यादा तो एला नया बदल दो और साथ ही साथ जितना नट बोल्ट है एला अच्छा से टाइट कर दो। दूसरा साथ ही साथ कई जगह पे कल्टीवेटर जो थे स्प्रिंग लोडेड भी रहते जो में स्प्रिंग लगे रहते तो अगर वो स्प्रिंग के तनाव कहीं कम हो गए है तो ओला भी हम लोग बदलना है यही मतलब सामान्य से जो वो है एकर लिए हमला ध्यान रखना है।
3: हाँ
1: हेलो किसान वाड़ी।
4: नमस्ते भैया।
1: हाँ राम राम जी कौन बोला था?
4: मैं
1: कुमार भैया आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन। बताओ आज के विषय जुड़े का प्रश्न है अपन के।
4: डॉक्टर साहब रोटोवेटर के रख रखाव ब्लड के रख रखाव कैसे करना है जानकारी देते।
2: धन्यवाद भैया। ये जो प्रश्न है रोटावेटर आज के समय में जो है बहुत ही मतलब प्रचलित मशीन है जिन हाँ हम किसी क्षेत्र में उपयोग करत हन चाहे खाद ला मिलाना हो या फिर भूमि के तैयारी करना हो ते में हमन एकर उपयोग करथन। सामान्य तौर पे रोटावेटर में जो ओकर ब्लेड है अगर बहुत ज़्यादा सूखा या उबड़ खबर पथरीला जमीन में चलाथन तो टूटे के डर रहते तो ये ला कर से बचाव करना है। दूसरा मशीन ला सुरक्षित रखे के समय आप ओला छायेदार जगह में रखो या फिर और जब भी ओला खुले जगह में भी रखा तो ओला पॉलीथीन से ढक के रखो ताकि उसमें धूल मिट्टी डस्ट मत आए और जमीन के नीचे छोटा गुटका या रख के थोड़ा उठा के रखना चाहिए ये ओकर रखे के बात हो गए। अब ओकर उपयोग करे से पहले लंबा समय तक मशीन अगर आपके बाहर रखे है ओकर बाद आप लोग उपयोग में लाना है तो सबसे पहले मशीन के साफ सफाई जो धूल मिट्टी अगर वो में थोड़ा दिन रखने के बाद जम गए है ओला हटाओ। हटाए के बाद भैया जो ब्लेड वगैरह के नट बोल्ट मल्ला सबसे पहले देखना है फिर ओकर जितना बेरिंग है वो में हमला ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है ओकर जो गियर ऑयल है गियर ऑयल के जांच करना है जेकर से हमार मशीन है अच्छा से चल सके है ना और हमला भविष्य में जो भी हम ओकर कार्य कर लेवन ओकर से वो में हमला कहीं पर भी कोई तरफ के तकलीफ मत हो।
1: हेलो किसानवाड़ी।
5: हेलो किसान वाड़ी चौपाल में राम राम।
1: राम राम भैया, कौन बोला था?
5: मैं रामेश्वर नगर ले बोला था, जिला सूरजपुर है भैया।
1: आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करा था, बताओ आज के विषय जुड़े का प्रश्न है?
5: खरीफ कृषि यंत्र के बारे में जानकारी बताइए। तो
2: जैसे अभी खरीफ के समय में हमन बुआई करे बर कृषि यंत्र से संबंधित हमन जो बुआई बर यंत्र सीड ड्रिल के उपयोग करथन, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के उपयोग करथन, ये बहुत महत्वपूर्ण मशीन है सूखा बुआई बर। एमे हमन हाँ सीड ड्रिल बुआई, सीड ड्रिल से बुआई करे के कई ठोक जैसे फायदा है कि हमला में कतार से कतार के बीच में हम बुआई करथन, साथ ही साथ एमे बीज और खाद उचित दूरी में उचित मात्रा में गिरते, जेकर से हमार खाद और बीज के भी हमला बचत होते है ना, और पेड़ पौधा के जो है हमार बढ़वार एकदम सही तरीका से होते। एकर बाद हमला अगर वो में दवाई छिड़कना है, निंदा नाशक छिड़कना है, एकर भी हमन सही तरीका से प्रयोग करथन। तो अब आप मतलब सीड ड्रिल के जैसे रख रखाव करना है या उपयोग के पहले ओकर जैसे जानकारी कि हमन ओकर कैसे उपयोग करें, तो सीड ड्रिल से के उपयोग करे पर सबसे पहले हमन ओकर साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। ओकर बाद जो ओकर बक्सा है जेमे हमन एक में बीज डालथन और एक में डालथन खाद, वो बक्सा ला हमला चेक करना है कि कहीं पर जंग वगैरह तो नहीं लगे है। अगर जंग वगैरह लगे है तो ओला थोड़ा वायर ब्रश से है ना, या फिर थोड़ा सैंड पेपर और कपड़ा के माध्यम से साफ करना है। ओकर बाद जो उमे बीज गिराए के जो यंत्र है जेला हमन फ्लूटेड रोलर की थन जो ओकर जांच करना है कि वो आसानी से घूमत है कि नहीं घूमत है, और ओला एडजस्ट करे बर जेन एक ठो लीवर रही थे जेकर माध्यम से हम बीज के मात्रा ला कम या ज़्यादा करथन, तेकर बारे में भी हमला ओला पहले हमला चेक करना है कि अगर सही तरीका से लीवर काम करत है कि नहीं करत है, और हमार बीज जो गिराए के यंत्र है वो सही तरीका से बीज गिरात है कि नहीं। एकर बाद हमला ओकर पाइप जो प्लास्टिक पाइप और रबड़ पाइप जो हमन लगाए रही थन ओला चेक करना है कि ये पाइप कहीं चोक तो नहीं है, पूरा उमे से आसानी से बीज गिरा थे, कहीं फटे तो नहीं है, है ना। और हमर फाल ला भी जहाँ फाल के पास से जहाँ से हमला बीज गिरना है ओला चेक करना है कि वो कहीं टूट फूट तो नहीं हुए है उमे करके। ये इतना सामान्य जो बात है सीड ड्रिल के उपयोग से पहले हमला ध्यान देना है।
5: जी सर।
2: हाँ,
5: जानकारी के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया।
1: हेलो किसानवाड़ी।
6: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम।
1: राम राम भैया, कौन बोला था?
6: मैं नवागढ़ के कई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: जी वर्मा भैया, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत कर रहा था ना, बताओ आज के विषय जोड़े आप मन के का प्रश्न है
6: भैया? जैसे अभी यदि गर्मी के मौसम बने चला था वह उस समय हवा भैया हमारे खरीफ फसल के तैयारी करे के,
1: हाँ
6: तो एकर बार भैया हमन हाँ जैसे खरीफ फसल लेना हमें तो कृषि यंत्र के रख रखाव और एकर ले संबंधित योजना यही जम्मो बात ले पूछे बार मैं डॉक्टर भैया में फोन लगाए हूँ भैया।
1: जी तो आप मन के प्रश्न बड़ सुघर है और हमारे विशेषज्ञ हमारे बिछावे आप मन के जो प्रश्न है ओकर जवाब देवत है।
2: बहुत अच्छा भैया।
6: हाँ डॉक्टर भैया राम राम।
2: राम राम भैया, राम राम। आप मन जो सवाल करते हो एक जागरूक किसान के निशानी है रे कि हमला जैसे खरीफ के मौसम आत है अभी आगे हमला फसल लेना है तेकर बारे में हमन चर्चा करत हैं, और एमे सामान्य भी अगर आप मन सीड ड्रिल से बुआई करथो तो सीड ड्रिल में एक जो है ओकर अंशांकन किथन हमन अंशांकन या कैलिब्रेशन, ताकि ओमे हमन उचित मात्रा में मतलब जितना हमला बीज लाथन ओकर हमन ओमे उपयोग कर सकें। जैसे धान अगर हमला बोना है तो अगर धान अलग अलग किस्म के हिसाब से कोई धान हम 10 से 12 किलो, कोई 15 से 18 किलो, कोई 20 से 22 किलो तक हमन है एकड़ में बुआई करते हैं, तो एकर अंशांकन या कैलिब्रेशन करना बहुत आवश्यक है। और ये करे बर अगर आप स्वयं मतलब अपन खेत में कर सकते हो और नहीं तो नज़दीक में जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के वैज्ञानिक के पास जा कर के आप मन है एकर एक बार कैलिब्रेशन ला सीख सकते हो, जेकर से आप मन के खाद और बीज दोनों के बचत हो ही और उचित मात्रा में खाद और बीज जो है समय से आप मन के खेत में आहे।
6: अच्छा अच्छा भैया, हाँ भैया, बहुत अच्छा जानकारी दे हमारे किसान मन पर, बहुत लाभकारी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भैया।
2: धन्यवाद भैया।
1: हेलो किसान वाणी,
7: जय राम भैया।
1: राम राम जी, कौन बोला था?
7: मैं छोटकू साहू बोलता हूँ, एक्सट्रा हाईस्कूल लोरमी ने।
1: जी जी साहू भैया, अपन के कार्यक्रम में स्वागत करत हन। आज के जो हमारे विषय ले जुड़े प्रश्न हो पूछतो,
7: स्पीयर के रख रखाव कौन ढंग से कर जाए सर?
2: बहुत अच्छा भैया आपके सवाल है, काबर की सामान्य तौर पे कई बार हमन हा ओला उपयोग करे के बाद ऐसी छोड़ देते हैं, तो रख रखाव के मतलब है कि हमला स्प्रेयर ला सही तरीके से रखना, ताकि भविष्य में भी ओकर हम उपयोग कर सकन। एक लिए भैया हमला जब हम स्प्रेयर ला उपयोग होए के बाद ओला साफ पानी से अच्छा से धो के ओकर नोजल ला सामान्य सर्फ और साबुन के माध्यम से धोना है, और हल्का ब्रश से ओला साफ करना है, तार वाले ब्रश से नहीं करना है, नहीं तो क्या होते कि ओकर नोजल के छेद बंद कई बार बढ़ जाते। दूसरा चीज ओकर फिल्टर जो दिथे ओकर हमला ध्यान रखना है कि फिल्टर जो हम जब में दवाई और पानी डालथन घोल डालथन तो फिल्टर लगे थे, वो फिल्टर भी साफ सुथरा रहा है, ओमें भी कोई गंदगी ना जमे रहा है, ओला साफ सुथरा करना है, और पूरा स्प्रेयर ला साफ पानी से अच्छा से धो के सुखा के ओला सुरक्षित रखना है। ये हो गया भैया एक रखाव के बाद कि हमला सुरक्षित रूप से कर रखे हुआ। एक साथ साथ भी जब हमन उपयोग करथन तो हमल एक सामान्य बात याद रखना है कि हमला स्प्रेयर में उपयोग करे पर साफ पानी के उपयोग करना है। कई बार किसान भाई मन एक छोटे से गलती करते कि हम हाँ खेत में जमे पानी या गड्ढा या डबरा में पानी जमे है ओकर हमन उपयोग करथन तो ओकर साथ में कई ठो गंदगी जो है वो खेत में शामिल हो जाते, वो है स्प्रेयर में चल देते, और वो है ताल हमारे स्प्रेयर ला चोक करते है ना, ओकर बाद थोड़ा दिन बाद हमारे स्प्रेयर में प्रेशर भी नहीं बने और किसान भाई कहते कि हमारे स्प्रेयर पंप खराब हुआ थे।
7: सही बात, सही बात है।
2: तो एला थोड़ा से ध्यान रखना है कि हमेशा पानी साफ जगह से उपयोग करना है और छान के उपयोग करना है, ताकि हमारे स्प्रेयर है लंबा समय तक चल सके।
7: चल सके
2: जी, धन्यवाद भैया।
1: हेलो किसान वाड़ी।
8: हाँ किसान वाणी।
1: हाँ राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
8: हमने बालोद से सनत यादव बोला था।
1: जी जी, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत कर रहे, बताओ हमारे आज के विषय जुड़े क्या प्रश्न है?
8: हमने जानना चाहते हैं जैसे कि जो कृषि यंत्र होते हैं, रोटावेटर होते हैं, कल्टीवेटर है, कैसे किया जाए ताकि ज्यादा इंजन के लोड मत पड़े इंजन में।
1: आप मन के प्रश्न बड़ सुघर है, और आप मन के जो प्रश्न के समाधान है हमारे विशेषज्ञ देवत है।
2: जब हम रख रखाव करते हैं भैया तो हमला एक चीज के ध्यान रखना है कि कोई भी धूल मिट्टी ऐसे जो चीज है जो उपयोग के बाद हमन सीधा रख दें और ये सब चीज अगर लगे है तो ये हमारे यंत्र ला खराब करते है ना। सीड ड्रिल में भी कई बार क्या होते कि किसान भाई मन उपयोग करते और बीज और खाद जो है ओकर बक्सा में डले रही थे, तो ये मन का बाद में जो है नमी सोखते वातावरण से और वो में जंग लगाते। तो जब भी हमन ये टाइप के कोई भी यंत्र ला उपयोग करन तो सबसे पहले सब यंत्र ला अच्छा से धोलन, धो के सुखा दें, सुखाए के बाद वो अच्छा से पोछ के जिन जगह हमन ये लगा थे कि उमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है तो ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है, साथ ही साथ कुछ जगह पे हम पुराना ऑयल के उपयोग करके भी ब्रशिंग कर सकते हैं ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगे, और पूरा नट बोल्ट ला टाइट कस के रखना है, और उपयोग के पहले फिर से वही चेक करना है कि हमारे कल्टीवेटर के फाल है टूटे तो नहीं है, हमारे रोटावेटर के फाल घिस तो नहीं गए है, ओकर गियर जो बॉक्स है उसमें गियर ऑयल है कि नहीं है, ओकर बेयरिंग में ग्रीसिंग हुए है कि नहीं हुए है, ये छोटे छोटे सामान्य से बात है ना। सीड ड्रिल के उपयोग करना था तो कर चेन स्पॉकेट वगैरह ला पूरा चेक करना है, ग्रीसिंग करना है उसमें है ना, और कोई यंत्र कोई भी अगर कोई पार्ट टूटे है तो वो पार्ट ला हमला बदलना है ना, जेकर माध्यम से हमन अपन यंत्र ला पूरी तरह से उपयोग कर सकन।
1: हेलो किसान वाड़ी।
9: लक्ष्मीकांत भैया नमस्कार।
1: राम राम भैया।
9: मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा
1: हूँ। जी जी मानवेंद्र साहू जी, कार्यक्रम में अपन के स्वागत कर रहे, और बताओ विषय ले जुड़े आज के हमारे क्या प्रश्न है?
9: पेडी ट्रांसमीटर है ना सर, पांटर जिन कथे मशीन है, तो कर उपयोग कैसे करण का महत्व है कर बारे में जानकारी लेना
1: है। जी आपन के प्रश्न सुघर है, हमारे विशेषज्ञ आप मन ला बतावत है।
2: धन्यवाद भैया, आप जो सवाल करे हो ये है आधुनिक कृषि के महत्वपूर्ण यंत्र हरे आज के समय में, जैसे हम समय के साथ में हमला मजदूर नहीं मिले और हमारे थरहा समय पे नहीं लग पाए, तेकर लिए हम मन पैडी ट्रांसप्लांटर के उपयोग करथन और ये हा एक बार में 4 से 6 कतार में बुआई करते और अलग अलग साइज में आते भी। ये यंत्र जो है एकल ये थरहा जो है हमला चटाई नुमा थरहा तैयार

0: तैयार करे लगथे। एमे हमन जो है कीचड़ वाले जो थर है वो उपयोग नहीं करें, है ना। ये यंत्र के अगर आपला प्रैक्टिकल आपला देखना है तो अपन नजदीक जो भी कृषि यंत्र सेवा केंद्र है या फिर नजदीक जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी आके आपन एकर पूरा जो है विस्तार से जानकारी ले सकते हो कि कैसे मोला थरहा तैयार करना है और का का सावधानी रखना है, मशीन किस प्रकार से कार्य करते, ये पूरा चीज वहां पर आपन ला उपलब्ध हो जाए।
1: जी जी जी ठीक है सर, जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया
2: जी। डॉक्टर साहब आप मन हमर कार्यक्रम में आयो, हमर संग संग हमर किसान संगवारी मन के जो समस्या है जो प्रश्न रही से ओकर सुघर समाधान करे हो। आप मन आए, आप मन के आए ले हमर कार्यक्रम सुघराते, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसानवाणी क्रम हेलो किसानवाणी में खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रख रखाव एवं संबंधित योजनाएं ए विषय में सुघर हमला सलाह मिली, हमर प्रश्न के समाधान मिली। विशेषज्ञ रहिन डॉक्टर विनय कुमार नायक, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्गले, और प्रस्तुतकर्ता रहिन शशि प्रकाश पांडे। गोट बात हमर तीर माने आपमन के लक्ष्मीकांत भाई तीर होवत रही संगवारी हो, तकनीकी सहयोग रही से अंजु विजय और प्रियंका डिक्सेना की।

0: लक्ष्मी भाई।
1: हाँ भैया।
0: अब हमर किसान संगी मल्ला अगोरा हो ही आज के प्रश्न के, तो बता देथन आज के प्रश्न संगवारी हो लिखो। कृषि यंत्र के उपयोग के बाद ओकर रख रखाव कोन ढंग ले करन, प्रश्न एक बार सुनो। कृषि यंत्र के उपयोग के बाद ओकर रख रखाव कोन ढंग ले करन। पाछू हफ्ता आज के दिन पूछे गे रही से कि श्री विधि से धान के उत्पादन बर प्रति हेक्टेयर धान के कतका बीज लागथे, और जेकर सही जवाब रही से 5 से 8 क्विंटल। और सही जवाब भेजे है संगी मन के नाम बता दे लक्ष्मी भाई।
1: सही जवाब भेजे है संगवारी मन बठेना पाटन जिला दुर्गले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा मन है। गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू मानवेंद्र और राकेश साहू हैं। लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा और पुष्पराज ऋषभ मरावी हैं। परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया खुमेंद्र और तुषारणी मसिया मन है। संगवारी हो सही जवाब खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई
0: लक्ष्मी भाई।
1: हाँ
0: अब बेरा हो गए गीत संगीत के, तो सुनथन गीत जिला स्वर देहे गंगा बाई गेदम और साथी मन।

0: गंगाबाई गेदाम अउ साथी मन ले सुघ्घर गीत ल सुनत रहिन संगवारी हो। ए रहिस किसानवाड़ी, प्रायोजक रहिन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। जाए के बेरा होवत हे, बता देथन काली के कार्यक्रम काली संझा चौपाल क्रम में होही चिट्ठी मिलीस, जिन में आप मन के जोन हमर कार्यक्रम ल सुने के बाद आप मन हमला जोन बधाई संदेश भेजता ओकर प्रसारण करे जाही। गीत संगीत घलो होही संगवारी हो, सुघर सुघर जानकारी मिलही। त देव विदा, कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ल लक्ष्मीकांत अउ
1: लाल जी के
0: राम राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए लाइफ इन अ मेट्रो, इस फिल्म का एक गीत जिसे गाया है के ने। गीत लिखा है सईद कादरी और संदीप श्रीवास्तव ने और संगीत है प्रीतम का। तो लीजिए सुनिए लाइफ इन अ मेट्रो, इस फिल्म का ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाज़ों में अभी आपने सुना समीर प्रिया पंचाल का लिखा यह गीत, जिसे संगीत दिया था सचिन जिगर ने और फिल्म का नाम था शोर इन द सिटी। और श्रोताओं, चित्र पर संगीत का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिटी लाइट से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, गीत लिखा है रश्मि सिंह ने और संगीत है जीत गांगुली का। तो लीजिए सुनिए सिटी लाइट, इस फिल्म का ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तक सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुनील कुमार सोनी और उनके साथी, तो लीजिए सुनिए उनकी आवाजों में ये लोकगीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सुनील कुमार सोनी और उनके साथी। दीजिए सुनिए इनके स्वरों में ये लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे सुनील कुमार सोनी और उनके साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में फिर आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियार पन्नीर सेल्वम ने रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीते। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को कुश्ती के दांव पेचों के साथ, जहां वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। जानते हैं आज किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहुंचकर तिरंगा लहराया।
1: मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के ओस्कोनबाई एक अब्दिस आमतोव को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की येरखान अबिल को 7-6 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 92 किलोग्राम कैटेगरी में पुनीत कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वे फाइनल में किर्गिस्तान के उलुगबेक सोरोनबेकोव के हाथों 12-1 से हार गए। 125 किलोग्राम वर्ग में लकी को भी रजत पदक मिला, जबकि सचिन मोर ने 86 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के बोबुरवेक रजिम्बोएव को 4-1 से परास्त कर कांस्य पदक जीता। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि लगातार वियतनाम में भारतीय पहलवानों का दबदबा जारी है। और अब कुश्ती के रिंग

0: के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। लीग के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और आज पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 12वें ओवर में 3 विकेट खोकर 115 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आप सभी जानते हैं कि इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता के साथ एक और मौका मिलेगा फाइनल के लिए अंतिम दांवपेच लगाने का। आईपीएल के एलिमिनेटर में कल सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे और दूसरे क्वालिफायर में प्रवेश के लिए अपने जोर आजमाते नजर आएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं दोनों टीमों की तैयारियों का आकलन करती हमारी ये रिपोर्ट।
1: आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस नॉकआउट मुकाबले का विजेता आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगा। अगर दोनों टीम के इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो एसआरएच लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर थी, जिसमें टीम ने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते थे। वहीं आरआर 14 मुकाबलों में से 8 में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो हैदराबाद का पलड़ा काफी भारी है। दोनों टीमों का अब तक 23 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 बार बाजी हैदराबाद ने मारी है, जबकि 9 बार राजस्थान के हाथों जीत लगी है। वहीं इस सीजन के दोनों मुकाबलों में राजस्थान को हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो हैदराबाद की मुख्य ताकत उसकी बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने बल्ले से इस सीजन में खूब धूम मचाई है। क्लासन अब तक इस सीजन में 606, ईशान किशन 569 और अभिषेक शर्मा 563 रन बना चुके हैं और शानदार लय में हैं। इनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन और अनिकेत वर्मा मध्यक्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस के कंधों पर है, जिनको हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स को सबसे अधिक उम्मीद अपने एक्स फैक्टर युवा वैभव सूर्यवंशी से होगी। वैभव इस सीजन में अब तक 232 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भी वैभव का भरपूर साथ देते आए हैं। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में टीम को इस सलामी जोड़ी से बहुत उम्मीदें होंगी। कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमेयर और अनुभवी रविंद्र जडेजा से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर टीम के गेंदबाजी क्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब तक इस सीजन में 21 विकेट झटक चुके हैं, जिनको इस मैदान पर रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे से भरपूर साथ मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर पर सबकी नजरें होंगी, जो मजबूत बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो लीग राउंड के बाद अब आईपीएल तैयार है नॉकआउट के अपने जलवे के लिए, जहां पर देखना होगा कि कल वैभव जीत का सूर्योदय करते हैं या फिर हैदराबाद जीत का अभिषेक करता हुआ नजर आएगा। और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं चेस के काले सफेद खानों के बीच चली जा रही चालों में, जहां राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक जीता, जबकि ब्लिट्ज प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिक वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उधर नॉर्वे में नॉर्वे शतरंज 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई, जहां आर प्रज्ञानानंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने अपने मुकाबलों को ड्रॉ के साथ शुरू किया।
2: भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मा गेडन ट्राई ब्रेकर में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेन जुन को शिकस्त दी। प्रज्ञा नंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, जबकि गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। कार्लसन पे फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित

0: हुई। महिला टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेन जुन को दिव्या देशमुख ने टाई ब्रेकर में हरा दिया। वहीं बीबी सारा असो बाएबा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर एक खिलाड़ी कुनेरू हम्पी को मात दी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में भी अपनी चालों के बीच तमाम नतीजे लेकर के आते हुए, और अब बात करते हैं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो आज से शुरू हो गया है। जानते हैं आज प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
2: स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज पांचवी वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी को सीधे गेम में हराकर सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का अगला मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष डबल्स जोड़ी भी शुरुआती दौर में चेन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ की अमेरिका की जोड़ी को 26-28, 21-15, 21-13 से हराकर अगले दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी अगले दौर में ली झे हुई और यांग पो स्वान की चीनी ताइपे की जोड़ी तथा ली यू यांग और हुआंग डी की चीन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी 65 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स मुकाबले में विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ 21-11, 14-21, 12-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्नति हुड्डा भी महिला सिंगल्स में टोमोका मियाजाकी के हाथों 14-21, 10-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महिला डबल्स में भारत की कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी भी पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिग्स की जोड़ी से हारकर बाहर हो गई। अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम भी चांग चिंग हुई और यांग चिंग टुन की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने पुरुष डबल्स में भारत के हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को हराया, जबकि मिक्स डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे पहले दौर के मुकाबले में यांग पो हान और हु लिंग फांग की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैंस।
1: और बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की, जहां इस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डोमिनेनर ने कॉन्स्टेंटिन फ्रेंडजेन और रॉबिन हस की जोड़ी को 6-3, 4-6, 6-3 से हरा दिया है। महिला सिंगल्स में आर्यन सबालेंका का मुकाबला जैसिका के बीच रहा, जिसमें आर्यना ने 6-4, 6-2 से बाजी मारी। भारत के यूकी भावरी और माइकल वीनस की जोड़ी अब से कुछ देर बाद टेनिस कोर्ट में नजर आएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत की 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। यह खेल 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। इस विश्व चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 114 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल है। श्री मांडविया ने विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि योगासन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक खेलों का हिस्सा होगा।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
1: ये थे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और अब रुक करते हैं रांची का, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 कल समाप्त हो गई। सुनते हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
4: Please start there. Gurinder Veer Singh goes blazing. It is Gurinder Veer Singh. It is Gurinder Veer Singh. He blazes away. This is not finished yet. That's what he says.
5: गुरविंदर सिंह इस प्रतियोगिता के सबसे चर्चित नाम रहे। गुरविंदर सिंह रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। गुरविंदर की तरह ही अपनी रफ्तार से ऐसा ही एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विशाल टीके ने।
4: So now the first 10 meters, Vishal TK will push himself. Look out for lane number 4 once again, Vishal TK. He's taken that lead out here. This is going to be a national record, 45.12. He's going blazing away. Vishal, and Vishal it is who takes it away. 44.98.
5: विशाल दिग्गज एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 मीटर में 45 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। विशाल ने 44.98 सेकंड के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड टूटा पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में, जहां देव मीणा और कुलदीप कुमार ने एक रोमांचक मुकाबले में एक साथ 5.45 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक होने का गौरव प्राप्त किया।
4: And it's a national record. It's a national record at 5.42 meters. It's a national record once again out here at the Birsa Munda Stadium. No emotions at all from this boy. Into the runway like a 707. There he goes into the skies and he knows that the national record is his.
5: इन तीनों कीर्तिमानों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में न सिर्फ भारत की बढ़ती हुई धाक को साबित किया है, बल्कि ये बता दिया है कि अब इन खिलाड़ियों की विश्व के कई और स्थापित कीर्तिमानों पर नजर है। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: तो अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर सट चुकी है ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के पोडियम की तरफ। और श्रोताओं, अब समय भी हो गया है आपसे विदा लेने का। आप इस कार्यक्रम पर अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
8: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
7: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
9: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
6: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
10: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
11: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
10: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
6: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
12: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
13: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
12: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
6: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: the high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the High Level Committee on Demographic Change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आपने सुना राम संपत की आवाज और संगीत में तलाश, इस फिल्म का ये गीत जिसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, और चित्रपट संगीत का आखिरी गीत लीजिए सुनिए कुणाल गांजावाला की आवाज और श्रेया घोषाल की आवाज। इन दोनों की आवाजों में सईद कादरी का लिखा यह गीत है, संगीत अनु मलिक का है और फिल्म का नाम है फरेब। श्रोताओं आपको बता दें, रात 10 बजे आप सुन सकते हैं श्रोताओं की यानी आपकी पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का ये आखिरी गीत कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म फरेब से। गीत लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है अनु मलिक का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आदिवासी जनजातीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकसुधा। इसमें सुनिए हल्बी गीत और कमार गीत। कलाकार हैं दाऊ सिंह पोया और उनके साथी, और कमार गीत में कलाकार हैं राम सिंह मरकाम और उनके साथी। पहले सुनिए हल्बी गीत दाऊ सिंह पोया और उनके साथियों के स्वरों में।

आप सुन रहे हैं आदिवासी जनजातीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक सुधा, और इसमें सुन रहे हैं आप दाऊसी पोया और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे हल्बी गीत दाऊ से पोया और उनके साथियों के स्वरों में, और कार्यक्रम लोकसुधा में लीजिए अब सुनिए राम से मरकाम और साथियों के गाए कमार गीत।
1: नारे नारे ना ना ना ना ना ना नारे नारे नारे नारे ना नारे हो मसाई बलायो ना मसाई बालो न बाला दे दायरे ही ओ मसयो गलायो तो दुई लोग ठा दे ना दुई लोग ठा दे दायरे यो दायो मसयो गलायो तो एक ठाई से कुलना जाते काय दुई लोग चोयो दाय गोठ बात होलो यो जे क्लाइ सड़ी होई दी
2: डाल को
1: हे ओ दाय ना।

आठ दिन नव रात मसीहा कायो दघरे ठा दे भगवान। पानी ने पसया पानी ने पसया नायो यो मसया चो देव यार गलाय। मुरहा पुरटाना भगवान यो मसयो गलाय काय करता। घरे कुहवाना भगवान बसती वाला मरिया काटिया बालन हला कन करत। बालन मसयो ना यो दाय माने सोच देर भगवान। एक हाथे टेकनो मसयो यो दाय तो धरिया न दाई। परची के थे भत मसयो थर थर लड़ लड़ निकला दे रो तो। घरे होने ना मसयो माने सो मसी माने सोचा दे रे मसई। इसकोलेला यान हो मसी मन तो ने सोच तो। आठ दिन नव रात होलो मसयो के नाही देखू बलत मसई। माने सोच दे योदाय निकल योदाय गंपा चोर योदाय पेन काज बल दे। गंपास चो योदाय पुस्तक परची योधन मसई। लिखाई पढ़ाई करत मसया चो सन सो चोरे मारे। हे वही के देखिया मसई योदाय तो झकले नजर पड़यो। यमचो

0: बापू का न देला भगवान ई था पियावाते सफाय दिखता दिल लगायो दैना मसया जावे हुन सिन्हार भुद को एक कासेलो पसया एक कासेलो पसया मसई धरया तटी चोरियो की जावे लागे दी भगवान यो दायो सिन्हार भद को काये जालो ना काये जालो ना मसिया बालु न मसी पूछा दियो तो काय हो तो ना हो मसी आम है मारूं दे आठ दिन वेलो यम हमर देना यम है मारूं दे बालु न मसियो यो दा मसी केरे भगवान कांधे के दारुन मसई का गागु लागे दीरे मसयो यमचो मसयो ना यमचो ये मसयो ना भगवान मर दे यमचो मसयो जायो कौन राजे लहवा पालुन मसई का यो दाय टोटरा के पोटारन गागु लागे दीरे भगवान
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से इस वक्त आदिवासी जनजातीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकसुधा। पहले आपने सुना दाऊसी पोया और साथियों के गाए हल्बी गीत और अभी आप सुन रहे हैं राम सिंह मरकाम और साथियों का गाया कमार गीत। लीजिए सुनिए राम सिंह मरकाम और साथियों के स्वरों में ये कमार गीत।
0: सोए बलियाना पसया के पियाया मसई सहाय मरतारे मसयो माने सोचा दे मसई धावत ये दे होए ना याम है जावाना याम है जावाना यायो महाप्रसाद काया करियो बल ईसा बाला दे हो तो यो मसई गलाए भगवान पेटी चोए पैसा मसई कायो दाय कुछ केर धरया बागे बागे यो दाय मसई काय पसु लागयो तो पसिया नायो दाय पसिया नायो दाय मसई काय करता यो दाय पैसा धरया 3,000 धरया ते हो काय 6,00,000 धरया रे मसई यो दाय जा देना मसियो एका महासमुद ठेसन गला बाग पहरा पोवा भगवान यो मसिया के तयवा चावा बलत मसई ठेसाने गला मसई यो दाय रिक्शा वाला के पूछ कतका किराया लगबे ये रिक्शा वाला बलून बल दी 25 रुपया हावे बहनी 25 रुपया हावे बहनी दिन भर के किराया बल रिक्शाए वालो रिक्शाए बासुन मसई लागे सिन्हा बुदुड़ो भगवान ये लाता ले यो दाय मसया के मसई पायो न धरियाओ तो पायलाया ने ना मसी काय रिक्साए बसावा देरे मसिया के मसी ठाते या ने हो या मचो या जीवे माच ये दीवल जावे लागे दी यो दाय तीने लगे महासमुंद यो दाय ठेसन महासमुंद ठेसन ना महासमुंद ठेसन यो दाय मसे अमरुण तो नीलाय गाड़ी काय करता यो दाय ओ तो उहे होने ये धीर गाड़ी राज परमान गाड़ी राज परमान गाड़ी भगवान का नेटर बाबू यो दाय यो भाकरन यो तर यो ये कने तर बाबू बलत यो दायो मसी गलाय हो तो मसिया के जगाया ना मसिया के यो दाय भगवान दुई लोग धरे यारी कसाए होने गला गाड़ी बसे चाघाया यो दाय नी गाउन नीला रायपुर यो यो दाय जाले रायपुर तो ने गला रायपुर तो ने गला हो तो कई लोग यो दाय डॉक्टर मोला जार ठाय दी को नए डॉक्टर घर जावा बलन बला देर मसई
1: आदिवासी जनजाति संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा में अभी आज आपने सुने हल्बी गीत जिसमें कलाकार थे दाऊ सिंह पोया और उनके साथी और कमार गीत जिसमें कलाकार थे राम सिंह मरकाम और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोकसुधा में लीजिए सुनिए चंदन कश्यप के स्वर में ये आदिवासी जनजातीय गीत।

आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे दाऊसी पोया और उनके साथी, रामसी मरकाम और उनके साथी, और चंदन कश्यप और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और आपकी पसंद पर पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है। कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा। हरदेवलाल पारावार सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। वेड़ी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवेंकर और धीरज सवासेरे। भाटापारा से आप हैं नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु और आरती। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। और पावर हाउस भिलाई जामुल से आप हैं विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। तो आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में कुछ कुछ होता है इस फिल्म का ये गीत।

रात के 10:06:38 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप ही की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और लीजिए, आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इतिहास। इस फिल्म का एक गीत जिसे गाया है ए हरिहरन और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत है समीर का, माफ़ कीजिएगा, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का, और फरमाइश आप सभी की है। सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृषकांत सारथी, आप बेमित्रा से, गेंद्रलाल मिश्रा, चंद्रकांति मिश्रा, अर्चना मिश्रा, धनंजय मिश्रा, आप हैं गरियाबंद, धवलपुर गरियाबंद से, बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत ब्रिगू, विनय ठाकुर, आप हैं भाटापारा से, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फेज खान, आप हैं भाटापारा, शांतिनगर भाटापारा से, और बिल्हा से आप हैं शेख नासिर, महजबेन बानो, हथनीपारा भाटापारा से ही आप हैं चौवा राम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, धरसीवा से छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोष नगर से रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव, रुआ बांदा शनिश्री बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन, और बाजार पारा पे

तरह से आप हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और ए हरिहरन की आवाज़ों में समीर का लिखा यह गीत, जैसे संगीत दिलीप सेन और समीर सेन ने। फिल्म का नाम है इतिहास।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण, और इसमें आप सुन रहे हैं आप ही की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और लीजिए अब सुनिए सड़क, इस फिल्म का एक गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने, गीत लिखा है रानी मलिक ने, समीर ने, और संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने, ग्राम अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रिंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, धामनी मनोरा से आप हैं तुलसी राम डेरे, मायावती, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे, दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु, हटोद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल, मुंगेली गोल बाजार खपरीकला से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, नेहुल पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, खुशी, पुलकिता, लल्लू पांडे और भूषण सोनी, महाराष्ट्र बीट शहर से आप हैं प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, और आप हैं रामनिवास अग्रवाल, यहीं से ही आप हैं, छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। तो लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क, इस फिल्म का ये गीत।

सड़क इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, गीत लिखा था रानी मलिक ने और संगीत था नदीम श्रवण का। और आपकी पसंद में अब लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, संगीत है आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। और इससे पसंद किया इस गीत को रामनगर रायपुर से राजेश बांदे, शशिकला और पूजा बांदे, जिनवाड़ी रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से श्रीमती सविता जैन, मोनिका जैन, गांव परसाटोला जिला अम्बागढ़ चौकी से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, तुषानी मसिया और खुमेंद्र मसिया, दिल्ली शहर मेरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, पूजा छुटकी आप हैं धमतरी से, बनिया पारा धमतरी से, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु, कोटा रायपुर से आप हैं अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन। तो लीजिए सुनिए कयामत से कयामत तक इस फिल्म का एक गीत उदित नारायण की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में कयामत से कयामत तक इस फिल्म के गीत, और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सादा सरगम की आवाज़ में फिल्म विश्वात्मा से। गीत लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, संगीत है विजू शाह का और पसंद आप सभी की है। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी से आप हैं चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और लखीर श्रीवास्तव। जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरडी गाथापार से आप हैं श्रीमती धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, श्रीमती बिंदेश्वरी साहू, नागेश्वरी, श्रीमती चमेली, भूमिका कुमारी, मोनिका और पूनम साहू। सीतानगर से आप हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित, मोहित और प्रतीक आर्य। चांदी चौक गणई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन और वहीं से आप हैं खुशी रौनक सेन। साकरा राजनांदगांव से आप हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतिन साहू, दिवेंद्र कुमार, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, रजनी देवी, मास्टर प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू और बस इतने ही हैं हमारे श्रोता जो सुनना चाहते हैं विश्वात्मा फिल्म का ये गीत। जो ये गीत है ये आखिरी गीत है इस कार्यक्रम का, तो लीजिए सुनिए साधना सरगम की आवाज में विश्वात्मा फिल्म का ये गीत। और इसी गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।

श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देश। इसमें सुनिए आलाप और दो गतें मध्यलय गत 3 में और द्रुत गत 1 में निबद्ध है। तबले पर संगति की है रहमान खान ने। तो लीजिए सुनिए पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देश।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देस सुन रहे थे। तबले पर संगतकार थे रहमान खां। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 11 बजने को है समाचार, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही
3: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the